0: चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
1: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
0: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
1: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
0: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
1: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
2: उत्तर प्रदेश में कावड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
1: कावड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
2: कावड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
1: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
3: PM सूर्यघर.gov.in पर
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेनदेन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
6: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत पात्र CGD कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
5: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4-स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। NTA के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। परीक्षा एजेंसी ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं।
7: सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया TDPL द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर SIT की जांच और जारी CID जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर JSSC CGL परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की CID जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
5: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि निविदा प्रक्रिया में कथित तौर पर ऐसी तकनीकी विशिष्टताएं और शर्तें शामिल की गई थीं जो एक विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में थीं। इससे प्रतिस्पर्धा सीमित हुई और एक चयनित निजी इकाई को अनुचित लाभ पहुँचा। जाँच में यह भी सामने आया है कि निजी व्यक्ति कथित तौर पर कुछ सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों के साथ संपर्क में थे ताकि निविदा प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। एसीबी के अनुसार इससे विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में निविदा की शर्तों को प्रभावित करने के लिए निजी व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के बीच कथित साठगांठ के संकेत मिलते हैं। जांच में पूरे धन के लेन देन और कथित अपराध से अर्जित आय की भी जाँच की जा रही है। अनुपम और आनंद के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ होती साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यामानाशी प्रांत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ये दिखाती है कि इस साझेदारी का भारत के राज्यों और क्षेत्रों तक तेजी से विस्तार हो रहा है।
8: जापान के निवेशक और वहाँ पे नवाचार से जुड़े हुए लोग उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हैं। यामाची और उत्तर प्रदेश के बीच ये जो साझेदारी है इससे बड़े पैमाने पे निवेश आएगा, ढेर सारे लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे।
5: इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अलनीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6

0: सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मलेशिया से एक कुख्यात गिरोह के 3 आरोपियों को भारत लाने में सफलता हासिल की है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि इन आरोपियों के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध थे। हत्या, जबरन वसूली, विस्फोटक रखने तथा हाल में लुधियाना में हैंड ग्रेनेड विस्फोट की साजिश से जुड़े कई मामलों में इनकी तलाश थी। हरियाणा पुलिस ने पंजाब के एक परिवार और उसके सहयोगियों से जुड़े अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना परगट सिंह को पंजाब के मुक्तसर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने अब तक देश भर में 50 नवजात बेचे हैं। बहादुरगढ़ के पुलिस उपायुक्त मयंक मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक गिरोह से जुड़े 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि होटल में आग से बचाव और अग्निशमन की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानव जीवन की सार्थकता अन्य प्रणालियों के कल्याण और भलाई के लिए अनवरत काम करने में ही है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमताओं, धन, बुद्धि और वाणी का इस्तेमाल परहित और कल्याणकारी कार्यों के लिए करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा प्रसिद्ध शिक्षाविद, कानूनविद और कुशल राजनेता थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश हो सकती है। उधर उत्तरी उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों में उफान से 6 जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
1: भद्रक में भंडारी पोखरी और तिहिड़ी ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है, जहां बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जाजपुर, केंद्रापड़ा, बालेश्वर, केवंझर और मरभज में भी बाढ़ जैसा हालत है। ब्राह्मणी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से संकट और गहरा हो गया है, जबकि अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एहतियात के तौर पर कई स्कूल बंद रखे गए हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों और किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: संयुक्त अरब अमीरात ने इलाके में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन को स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामिली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। अमीरात ने यह घोषणा ईरान की ओर से खाड़ी में 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के दागे जाने के बाद की। हालांकि अमीरात ने यह भी कहा कि वो शांति और स्थिरता के बीच बातचीत, सहयोग और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति संकल्पित है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 2 मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। भारत ने वेल्स को हराया है और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में गोल क्रिकेट टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन आज श्रीलंका की टीम अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगी। भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए अभी 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत श्रृंखला की जीत से केवल 6 विकेट दूर है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कॉलिन फिलिमोन को हराया, वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद फरहत। झारखंड में परीक्षा रद्द होने से 2000 से अधिक नौकरियां खतरे में, 6 में से 3 प्रदर्शनकारियों ने खत्म किया अनशन। जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। जंतर मंतर पर

0: पुलिस सख्ती के आरोपियों की जांच सर्वोच्च न्यायालय की उच्च स्तरीय समिति से कराए जाने का फैसला कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से इनकार करने का भी समाचार दिया है। 2 अक्टूबर से बैंकिंग फॉर यूथ अभियान दैनिक जागरण के आर्थिक पन्ने की खबर है। पत्र लिखता है, युवाओं को बैंकिंग सुविधा की जानकारी देने के लिए युवा कियोस्क और युवा बैंकिंग मित्र बनाएंगे सभी बैंक। 16 साल बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने, पुरुष हॉकी विश्व कप में शीर्ष दो में जगह बनाने पर नजरें, अमर उजाला की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पन्ने पर विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान पर शोध की प्रक्रिया शुरू होने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, भारतीय ज्ञान परंपरा को मिली महत्ता। भारतीय ज्ञान की खोज हमें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कराने के लिए, विकसित भारत के लिए ज्ञान लोग गढ़ने वाली भी है। अंतरिक्ष में उगाई सरसों से बनाई सबसे स्वादिष्ट स्पेस डिश, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और उनकी साथी जेसिका विट ने किया कारनामा। बीज और खेती की सामग्री पृथ्वी से पहले ही भेजी गई थी। राजस्थान पत्रिका ने आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर दुनिया के पुरस्कृत फोटोग्राफ को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पत्र लिखता है, अंधेरे में शिकार को झपटने को तत्पर बार्न उल्लू। ये तस्वीर इंग्लैंड के नॉरफॉक की है और तस्वीर ली है विंस बर्टन ने। पत्र ने आइसलैंड में डेनियल विने गार्सिया द्वारा क्लिक की गई तस्वीर भी साझा की है, जो ज्वालामुखी से बहते गर्म लावा का विहंगम चित्र है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेन देन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है श्रोताओ, बिंदास मॉर्निंग शो में। और समय की बात करूँ तो 8 बजकर यानी कि 26 मिनट हो चुके हैं। जहाँ से धूप निकलती है वहीं से नई सुबह की शुरुआत होती है। जब मौसम भी एकदम सुहाना और सुबह बन जाती है और भी बिंदास, तो तैयार हो जाइए अपने दिन की शानदार शुरुआत के लिए, क्योंकि बिंदास मॉर्निंग शो शुरू हो चुका है। सुबह की ताजी बातें, मस्ती, मनोरंजन और आपके अपने पसंदीदा गाने सिर्फ एक ही जगह मिलने वाले हैं। तो मैं कहती हूँ जी, मुस्कुराइए, आवाज बढ़ाइए, रेडियो का वॉल्यूम बढ़ाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ, यानी कि FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाती रहे, गुनगुनाते रहे, क्योंकि आरजे रीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई है बिंदास मॉर्निंग शो में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और राम राम जी, सत श्री अकाल। बिंदास मॉर्निंग शो में आरजे रीना के साथ सुनते रहिए। एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद आप सभी के साथ कनेक्ट होंगे श्रोताओं, और फिर अपना जो ये शो का सिलसिला है जारी करेंगे। ढेर सारी बातें करने वाले हैं आप सभी के साथ, बस कहीं नहीं जाना है आपने, आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहना है। और समय की बात करूँ तो 8 बजकर यानी कि 27 मिनट हो चुके हैं, तो कनेक्ट रहिए हमारे साथ, ढेर सारी बातें करेंगे। यानी कि 2 घंटे के लिए मैं आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई हूँ, ठीक है जी। चलिए गाना सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होती हूँ मैं आप सभी के साथ। आज की तारीख यानी कि 19 अगस्त,

0: You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

भी बहुत से सोच रहे कि अरे यार थोड़ी देर और सो लेते हैं उसके बाद उठते हैं, लेकिन सूर्य भगवान जी यानी कि प्रकट हो चुके हैं और ये कहा जाता है कि सूर्य भगवान के उठने से पहले हमें उठ जाना चाहिए। लेकिन क्या है ना कि हम रात को तो लेट सोते हैं तो सुबह उठेंगे कैसे, है ना। और बहुत से ऑफिस के लिए तैयार हो रहे होंगे, किन्हीं का यानी कि लंच छूट जाता है, कोई चाय मांगता है, भी जल्दी दो, नहाने में लेट हो रहा है ना, क्योंकि सुबह का काम होता है ना वो बड़ा हैटिक वाला हो जाता है, बहुत जल्दबाजी वाला हो जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि हम टाइम पर नहीं उठ पाते हैं। और देखिए सुबह का टाइम इतना सुहाना होता है, अगर आप सुबह उठते हैं तो आपका पूरा दिन पॉजिटिव जाता है। और सुबह के टाइम देखिए खुद के लिए अपने लिए टाइम निकालिए, सुबह योगा कीजिए, कम से कम यानी कि आधा घंटा खुद के लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस भाग दौड़ की दुनिया में ना हम अपने आप को भूल ही जाते हैं कि हम अपने लिए कितना टाइम निकाल रहे हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। इसीलिए दिन की शुरुआत करने से पहले योगा से करिए, वॉक करिए, सेहत का भी ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपकी सेहत ठीक रहेगी तभी आप भी ठीक रहेंगे। अक्सर हम बॉलीवुड के एक्टर्स को देखते हैं तो कहते हैं यार ये तो यानी कि 52 की हो गई है फिर भी जवान है। वो जवान इसलिए हैं क्योंकि वो अपने ऊपर काम करते हैं, योगा करते हैं, खाने का ध्यान रखते हैं, ऑयली चीज़ नहीं खाते। वो भले ऐड क्यों ना करें कि ये चिप्स खाओ, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, लेकिन वो खुद कभी नहीं खाते। वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए दिखाते हैं आपको, शो अप करते हैं आपको। तो हम क्या करते हैं, नहीं यार इसने ऐड करा है, ये पक्का अच्छा होगा, ये ब्रांड इसका बहुत सुनहरा होगा, चलो इसे ही हम खरीद लेते हैं। इसमें लोकल माल तो होगा ही नहीं असली, क्योंकि भाई बॉलीवुड के एक्टर ने ऐड कराया ना इसका, तो हम भी खरीद लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है। और ऑफिस के लिए जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए, जहां आपको लग रहा है कि थोड़ा लेट हो जाते हैं वो थोड़ा जल्दी उठिए और अपने समय पर यानी कि ऑफिस के लिए निकल जाइए, क्योंकि सुबह का जो मौसम यानी कि पॉजिटिव वाइब होता है ना, और किसी ने आपको बोला कि डांट दिया तो फिर मजा नहीं आता है। इसीलिए अपना काम है वो समय पर करिए, जितने भी आप काम है, और ऑफिस पहुंचिए, ऑफिस का भी काम अच्छे से करिए ताकि आपका पूरा दिन पॉजिटिव जाए। और इसके बाद हम बात करने वाले श्रोताओं, यानी कि आज है 19 अगस्त, और 19 अगस्त की जो हिस्ट्री है वो क्या कहती है। समय की बात करूँ तो 8:00 यानी कि 36 मिनट हो चुके हैं, और आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं अगर आप ऑन द वे हैं, ऑफिस के लिए निकल चुके हैं, तो एक ही बात कहेंगे। सुबह देखिए सुबह के टाइम भी ट्रैफिक आपको जाम मिलने जाता है अच्छा खासा, क्योंकि इस टाइम ऑफिस वाले निकल चुके होते हैं। तो आपने मैसेज करके बताना है, नंबर है 9823789689 कि आप ऑफिस के लिए निकल गए हैं और कहीं पर ट्रैफिक जाम है, तो वो भी बता सकते हैं। और चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं। आप देखिए ट्रैफिक में होंगे तो ये वाला गाना तो बनता ही है, वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा बस, ठीक है जी, चलिए।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 7055070552।
4: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: them.
1: बिल्कुल जी, हम तुम तो आपके साथ ही हैं और आप हमारे साथ कनेक्ट है. गुड वाली मॉर्निंग है आज मॉर्निंग शो में. और समय की बात करूं श्रोताओं तो 8:48 हो चुके हैं. गुड वाली मॉर्निंग है मुरादाबादी, उठ जाइए और जल्दी जल्दी बताइए कि आपको गर्म चाहिए ठंडा चाहिए. वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप गर्म लेना चाहते हैं या ठंडा लेना चाहते हैं. बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगी यार गर्म ये ठंडा क्या होता है. उससे पहले हम इतियानी यानी कि इतिहास के पन्ने की तरफ बढ़ते हैं. आज की तारीख यानी कि 19 अगस्त इतिहास के पन्ने क्या कहते हैं. 1600 यानी कि अकबर ने अहमदनगर पर अपना अधिकार किया. यानी उस समय मुगल साम्राज्य का असर बढ़ रहा था. यह घटना इतिहास में अहम मानी जाती है. 1666

में छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा में औरंगजेब की कैद से निकल गए। कहा जाता है कि वो, आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे निकले थे, वो फलों की टोकरी के जरिए निकले थे, यानी कि जिस टोकरी में फल रखा जाता है वो उस टोकरी के अंदर बैठे हुए थे और उसके जरिए वो बाहर निकले वहां से। उनका साहस आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। अगर मैं बात करूं यानी कि 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1 रुपए का सिक्का ढाला था, यानी कि आज जिस रुपए को हम रोज इस्तेमाल करते हैं, इसके इतिहास, अगर पुरानी कहानी आपको सुनाऊं तो इसके भी इतिहास बहुत ही लाजवाब है। 1919 में अफगानिस्तान ने ब्रिटेन से अपनी आजादी की घोषणा की थी, यानी कि इसीलिए अफगानिस्तान में आज के दिन यानी कि वहाँ इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है बड़ा ही धूमधाम से। 1960 में यानी कि दो कुत्ते बेलका और स्टेलका अंतरिक्ष में गए थे। वे अंतरिक्ष की यात्रा करके सुरक्षित यानी कि धरती पर लौटे थे। इंसानों से पहले जानवरों ने अंतरिक्ष की राह आसान करी थी, मदद की थी। हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि नहीं यार, अंतरिक्ष की यात्रा ना यानी कि इंसानों ने की है सबसे पहले, लेकिन गलत है। अंतरिक्ष की यात्रा सबसे पहले जानवरों ने की, यानी कि दो कुत्तों ने की है। चलिए भाई, आप सभी के मैसेज भी आ गए हैं, वो भी शामिल कर लेते हैं। राजेश जी यानी कि बेंगलुरु से कनेक्ट हो गए हैं हमारे साथ। अगले मैसेज की बात करूं तो रानी नांगल से रिहाना गुड मॉर्निंग पहुंचाती है, कैसी हो? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसी हैं। विक्की सागर जी कनेक्ट हो गए हैं गुड मॉर्निंग के साथ। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होते हैं श्रोताओं। तब तक के लिए आप भी कनेक्ट हो जाइए और मैसेज करिए, क्योंकि आप अगर आप ऑफिस की तरफ निकल चुके हैं तो बिल्कुल मैसेज करके बता सकते हैं सुबह की ब्रेकफास्ट आपने की है या नहीं की है, या फिर भूल गए। यार क्या करें, उठते लेट है तो भूल जाएंगे ना। अगर आप भूल गए तो बिल्कुल मैसेज करके बताइए, लेकिन सुबह सुबह आपने बाहर जाके ऑयली खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है, अवॉइड करना है, ठीक है जी।

हाय हाय, अब बात करने वाले श्रोताओं यानी कि आज का स्पेशल डे क्या है, बहुत ही खास है जिसके बारे में बात करने वाले। फिलहाल ये गाना भी बहुत ही लाजवाब है। आय हाय,

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।

जल्दी जल्दी मैसेज करके बताइए कि चलते हैं क्या 9 से 12 घूमने के लिए पहाड़ों में, क्योंकि आज का दिन भी बहुत ही खास है। आज की तारीख यानी कि 19 अगस्त गर्द वाली मॉर्निंग है जी बिंदास मॉर्निंग शो में श्रोताओं। और समय की बात करूं तो देखिए दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है यानी कि 9:05। अरे भाई आज कैमरा उठाइए और फोटो खींचने का बहाना ढूंढिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं फोटो खींचने का बहाना क्यों बता रही आपको, क्योंकि देखिए हम अक्सर कहीं भी जाए लेकिन फोटो ना खिंचवाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। कुछ भी खाए, कुछ भी करे, किसी को स्नैप ना भेजे तो दिन की शुरुआत नहीं होती है, एक गुड मॉर्निंग का मैसेज ना भेजे तो दिन की शुरुआत नहीं होती, और जिस दिन गुड मॉर्निंग का मैसेज ना आए उस दिन लगता है यार क्या हो गया है आज। एक सेल्फी तो आज बनती है और सुबह सुबह ये भी होता है कि हम सेल्फी भी खींच कर भेजते हैं, स्नैप भेजते हैं कि देखो मैं उठ गई हूँ। अभी ये काम करते हैं। आई नो मुझे पता है कि डेली स्नैप जाता है भैया कि मैं उठ गई हूँ, गुड मॉर्निंग। तो वेरी गुड मॉर्निंग मुरादाबादी, आप मुझे कहीं से भी सुन रहे हैं आप सभी को गुड वाली मॉर्निंग है जी, राम राम है जी। मगर की हाल चाल है मेरा कुछ कुछ तो देखिए जी आज मनाया जाता है यानी कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे जी, इसीलिए मैंने बोला कि उठिए और फोटो खींचने का बहाना ढूंढिए। अब सवाल ये है कि ये डे मनाया क्यों जाता है, है ना। अक्सर कोई भी डे हो लेकिन हमारे दिमाग में ख्याल तो यही आता है कि आखिरकार ये डे है वो क्यों मनाया जाता है, यानी कि फोटोग्राफी ने हमारी यादों को और भी संजो का रखता है। अब देखिए शादी हो और शादी में फोटोग्राफी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। सोचिए अगर ये फोटो खींचने वाले और कैमरे वाले भैया नहीं होते और कैमरा नहीं होता तो क्या जो पुरानी यादें हैं वो ताजा हो पाती, क्या हम पहले कैसे दिखते थे अब कैसे हैं हम समझ पाते, बिल्कुल नहीं। अक्सर अभी भी हम जब अपने पुरानी तस्वीरें देखते हैं तो कहते हैं यार ये मैं ही थी या कोई और था, खुद को पहचान नहीं पाते हम। क्योंकि बचपन की तस्वीरें और अब की तस्वीरें में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है, यानी कि बचपन में इतने हम सीधे होते हैं कि भैया कुछ भी हमें नहीं पता होता है, लेकिन जैसे बड़े होते जाते हैं यार ये फोटो अच्छी नहीं आ रही है, थोड़ा अच्छे से अच्छे एंगल से खींचना चाहिए था, यानी कि फोटो खींचने वाले को भी हम परेशान कर देते, खासकर लड़कियां, उनको 10 फोटो खींच कर दे दो एक भी समझ नहीं आता भैया जब तक उनके पसंद की फोटो एक भी ना खींची जाए। तो यानी कि 19 अगस्त को यानी कि फोटोग्राफी की शुरुआत यानी कि 1829 में हुई थी फ्रांस में जी, फ्रांस वालों ने की थी और ये दिन तभी से शुरुआत हुई और आज तक यानी कि हमारे कैमरे की गैलरी में एल्बम में होते हैं जिनको हम हमेशा याद करते हैं और खुश होते हैं कि, और जब भी हम फोटो देखते हैं ना पुरानी वाली तो बिल्कुल उसी मोमेंट पर हम घूम जाते हैं, उसकी वाइब आपको आने लग जाती है, कनेक्ट करने लग जाती है कि यार ये दिन कैसे थे ना, ऐसे थे, ऐसे घूमा करते थे, एंजॉय किया करते थे। तो फोटो ना देखिए किसी के साथ भी आप खींचे, इंसान आपके साथ हो ना हो लेकिन तस्वीर आपके साथ हो तो वो पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाती हैं। तो आज आपने खुद से वादा करना है कि एक फोटो खींचिए, इंस्टा पर स्टोरी लगाइए और बोलिए कि मैं सबसे बेस्ट हूँ और मैं अच्छे फोटो खींचती हूँ, ठीक है जी। लेकिन ये कैमरा वाले भैया से ना बच कर रहना शादियों में, भैया खाना

वेरी गुड मॉर्निंग जी. जनकपुरी जनकपुरी सहारनपुर से कनेक्ट होते हैं जोन रोजेस पलवलील जी, और ये कहते हैं हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन मेरे कल से बेहतर हो, और हर रोज भगवान को शुक्रिया करो कि आपने सुबह का किरण है, जो सुबह का वेदर है, वो मुझे देखने के लायक आपने बनाया. क्योंकि देखिए, हमें एक हर एक उगता हुआ सूरज भगवान को हमें शुक्रिया जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम सुबह के किरण देखते हैं और कल को सोचते हैं कि और भी बेहतर बनाए, और भी अच्छे से काम करें. लेकिन वही बात है, पॉजिटिव के साथ मन में 70 सवाले चलेंगे तो नहीं कर पाएंगे. इसीलिए जो नेगेटिव थॉट है उसको कहिए बाय टाटा. अगले मैसेज की बात करूं तो गुड मॉर्निंग रीना जी, कैसी हैं आप? आयुब जी रामपुर से कनेक्ट हो गए हैं. जय श्री राम. गुड मॉर्निंग रीना जी. ये कनेक्ट होते हैं हमारे साथ दुर्गेश सैनी कल्याणपुर मुरादाबाद से. आपका शो बहुत ही आप शो बहुत ही बिंदास कर रही हैं. थैंक यू सो मच जी. अगले मैसेज की बात करूं तो जी गुड मॉर्निंग दी, कैसी हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसी हैं. निकट फातिमा जी कनेक्ट होती हैं. दी आपको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है और मौसम भी बहुत ही अच्छा है. क्या बात है जी, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है. ओ मेरी मैया, बारिश हो रही है. आज मैं सुबह सुबह देखिए नहा के कपड़े भी धोकर आई हूँ, छत पर मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे. बट जिस एरिया में मैं हूँ वहाँ बारिश नहीं हो रही है, ये अच्छी बात है. अगर हो रही होगी तो भैया कोई लाइन बारिश के पास से हैं तो मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइए कि आज बारिश आ रही है बाहर या नहीं आ रही है. अदरवाइज मुझे देखना पड़ेगा, वेदर अपडेट जरूर चेक करना पड़ेगा मुझे. उसके बारे में भी तो बात करनी है ना. चलिए फिलहाल एक गाना सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होंगे श्रोताओं और फिर करेंगे आपसे बातें. और ये वाला जो गाना है ना, मोहब्बत दिल का सुकून है, ये गाना सुनते हैं. मैं कहती हूँ रेडियो के वॉल्यूम बढ़ाइए, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तभी मजा आएगा जी. और आप मुझे चाहते हैं कि मैं रेडियो के अलावा और भी कहीं आपको मिलूं, तो मैं आपको आरजे रीना के नाम से इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी और मैं शाम को भी मिलती हूँ, यानी कि इवनिंग मस्ती शो में शाम 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक.

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

हाँ जी भैया, जिनका बालम थानेदार है ना, उनको ये गाना डेडिकेट था जी। गज वाली मॉर्निंग है जी, बिंदास मॉर्निंग शो में एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। दिस साइड आज रीना, और समय की बात करूँ तो 9:21 हो चुके हैं। भैया आपका ध्यान किधर है, मेरे टाइम भी देख लो जी। हाँ जी, यानी कि रक्षाबंधन के मौके पर देखिए, यानी कि बस सेवाएं हैं वो तो फ्री है, यानी कि 26 तारीख से लेकर 31 अगस्त तक आप आराम से फ्री सेवाएं हैं उसका आनंद ले सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दूं कि बाजार भी गुलजार हुआ है, यानी कि जब भी आप बाहर जाएंगे ना, हर जगह आपको दिखेंगे राखी, और राखी भैया राखी ही राखी राखी दिखने वाली है। यानी कि जो मार्केट है, दुकानें हैं, वो लाल गुलाबी हर तरह के कलर से आपको सजी हुई दिखेंगी। मतलब एक त्योहार हमारे लिए कितना मायने रखता है ना, और जब भी त्योहार आता है उसकी तैयारियां हम यानी कि 10 दिन पहले से ही कर देते हैं, डिसाइड करते हैं कि ये वाला ड्रेस पहनना है, ये वाली राखी भाई के लिए है, ये भाभी के लिए है, ये भतीजे के लिए है, हर किसी के लिए हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। और एक त्योहार एक दिन के अंदर ही खत्म हो जाता है, मतलब तैयारियां इतने दिनों से और एक दिन में एक त्योहार खत्म हो जाता है। मतलब हर त्योहार एक अलग ही रौनक लेकर आता है, जिसकी तैयारियां, जो हमें एहसास कराता है कि एक दूसरे से हम कितने ज्यादा कनेक्ट हैं। और साथ ही साथ श्रोताओं, यानी कि कल की तारीख थी 18 अगस्त, यानी कि विराट कोहली ने क्रिकेट की दुनिया में 18 साल पूरे कर चुके हैं, यानी कि उन्होंने 18 अगस्त 2008 में श्रीलंका के खिलाफ ODI में डेब्यू किया था। और कल की तारीख थी 18 अगस्त 2026 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर में, यानी कि 18 साल वो पूरे कर चुके हैं। लेकिन आज की तारीख है भैया 19 अगस्त, कंफ्यूज नहीं होने का बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक बसों के बारे में, जो कि कहा जा रहा है कि पॉल्यूशन फ्री, यानी कि हमारे इंडिया भी अब पॉल्यूशन फ्री होने वाला है। भाई देखा जाए तो गाड़ियां इतनी ज्यादा है ना कि भाई हर किसी को पॉल्यूशन, बाहर जाएंगे तो खांसी जुखाम, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है भैया वो तो बाहर जाते हैं, उनकी हालत ही खराब हो जाती है। इसी चक्कर में यानी कि ट्रेन बसें भी हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक अब शुरू कर बनाई जा रही है, जिसकी सेवाएं अब उपलब्ध होने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या, अरे म्यूजिकल ब्रेक तो बनता है ना जी। लेकिन एक और हरियाणवी गाना आप सभी को मैं सुनाऊंगी आप सभी के लिए, क्योंकि पहले के टाइम में ना कबूतर, हम चिट्ठी लिख के कबूतर को भेजते थे कि चिट्ठी लेकर जाओ, लेकिन ये गाना एक कबूतर वाला है, हरियाणवी ट्रैक सुनिए, उसके बाद आते हैं लौट के।

0: गुड वाली मॉर्निंग में श्रोता मॉर्निंग बिंदास मॉर्निंग शो में और समय की बात करें तो 9:31 हो चुके हैं। ऑफिस के लिए रास्ते में है तो वेल डन, सीट बेल्ट और हेलमेट जरूर लगाइए। ऑफिस आराम से पहुंचिए पॉजिटिव वाइब के साथ, वॉल्यूम बढ़ाइए तभी मजा आएगा। आरजे रीना आप सभी के साथ कनेक्ट है श्रोता बिंदास मॉर्निंग शो में। जी तो अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक बसों के बारे में। अब सोचिए रास्ता वही, सफर वही, बस वही, लेकिन धुआं बिल्कुल भी नहीं और मजा आपको डबल आने वाला है। यानी कि ये कहा जा रहा है दिल्ली में 200 नई बिजली से चलने वाली बसें शुरू की जाएंगी, जो कि दिल्ली से लेकर करनाल के बीच चलने वाली है इलेक्ट्रिक बसें में, और धीरे धीरे यानी कि पूरे देश में ये चलने लग जाएंगे। श्रोताओं अभी तो इसकी शुरुआत है, यानी कि आप सभी को पता है कि दिल्ली में कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले चले जाइए, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन आपको दिखेगा। इसीलिए सरकार ने ये फैसला लिया है कि इलेक्ट्रिक जो बसें हैं ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि यानी कि हमारा जो पर्यावरण है वो भी स्वस्थ रहेगा और जो इंसान है वो भी स्वस्थ रहेंगे, उनको भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। जब यानी कि धुआं ही नहीं निकलेगा तो परेशानी किस बात की, आराम से समूद होगी सफर भी और वातावरण भी शुद्ध। और यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए 56 खास बसें यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चलने वाली है। तो मैं तो कहती हूँ भैया यानी कि टिकट लीजिए, बिंदास अपना सफर कीजिए और कहिए चल भाई बस बिना धुएं वाला
1: घर तेरा होगा।
0: चलिए श्रोताओं और इसी के बीच यानी कि मैसेज भी हैं वो भी शामिल करते हैं और फिर लेकर आती हूँ आप सबके लिए कड़क सवाल, तो लेकर आऊंगी लेकिन और भी बातें हैं देश दुनिया की, वो भी तो करनी है। जी आप सभी के साथ अमित वर्मा जी कनेक्ट हो गए हैं हिमगिरी मुरादाबाद से। गुड मॉर्निंग रीना जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर।
1: हो गया
0: हर हर महादेव। रीना जी क्या हाल चाल है आपके? हमारे हालचाल तो काफी अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है जी। बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से कनेक्ट
1: मेरा हो गया।
0: हेलो खुशी मैम, अरे मेरी मैया, अरे खुशी मैम तो नहीं है सर, आरजे रीना है आप सभी के साथ और इनका कहना ये कनेक्ट होते हैं मोहम्मद सलमान जी
1: से। मेरा हो गया तो मेरे ख्वाबों का अंबर
0: पाक बड़ा से। लेकिन सर अभी इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी कि हमारा गाना प्ले कर दीजिए, लेकिन सर आपने गलत टाइम देख लिया है, अभी समय होता है 9:34, अभी 10 नहीं बजे हैं, थोड़ा सब्र कीजिए सर, उसके बाद आपके गाने भी प्ले हो जाएंगे। जिला मुरादाबाद संभल से

0: हमारे साथ कनेक्ट होते हैं आकांक्षा सैनी। गुड मॉर्निंग सर। धत तेरी की, सर नहीं मैडम है, मैं हूँ जी आरजे रीना। आनंद सर जल्दी आप सभी के साथ कनेक्ट होंगे, बस थोड़ा सा इंतजार करिए। वो थोड़ा परेशान है और क्योंकि उनके फादर साहब अभी मिले नहीं हैं, उन्हीं के चक्कर में वो थोड़ा परेशान हैं। तो हम सभी को मिलजुल कर ही काम करना होता है श्रोताओं, तो वो परेशान है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका बिंदास शो नहीं आ पाएगा। बिल्कुल हम सब है आप सभी के साथ और आप भी हमारे साथ है। भगवान जी से ब्लेसिंग कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि उनके फादर साहब जल्दी मिल जाए। मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट हो गए हैं। शुभ बुधवार आपको और FM मुरादाबाद सुनने वाले श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आज से मेरी
0: मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट हो गए हैं। इनके परम मित्र है सैयद शारिक अली जी। गुड मॉर्निंग रीना जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे जी, बिंदास मॉर्निंग शो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और एंड गाने भी बहुत अच्छे प्ले कर रहे हैं।
1: ओ तेरी बिजली का जो बिल है आज से मेरा।
0: ये गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं मान स्वरूप बिलासपुर रामपुर से।
1: मेरे पिन कोड का नंबर आज से तेरा।
0: आनंद सर के पिताजी के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी पता नहीं चला है। अगर पता चल जाता तो वो बिंदास मॉर्निंग शो में वही होते, अभी पता नहीं चला है इसी वजह से वो थोड़ा परेशान है। और बस यही है, भगवान से कामना है कि जल्दी मिल जाए उनके पिताजी। और फिलहाल आप बने रहिए आरजे रीना के साथ, FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहिए जी। चलिए एक और गाना सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होते हैं, और भी मैसेज है उनको भी।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
5: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।

0: गुड वाली मॉर्निंग है जी, बिंदास मॉर्निंग शो में। और समय की बात करें श्रोता, तो 9:00 यानी कि 43 मिनट हो चुके हैं। आप आज रीना के साथ कनेक्ट हैं।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM।
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: हाँ जी आरजे रीना आप सभी के साथ कनेक्ट है। श्रोताओं और समय की बात करूँ तो 9:44 हो चुके हैं और कहते हैं ना, अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये बिल्कुल सच बात है, अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद के अंदर नहीं है तो आप ऑल इंडिया घूम लीजिए, कहीं नहीं मिलने वाले भैया। लेकिन अब हम बात करते हैं वेदर के बारे में, यानी कि अभी मुरादाबाद के टेम्परेचर की बात करूँ तो 29 डिग्री सेल्सियस आज का टेम्परेचर है और पूरे दिन यानी कि हल्की धूप उमस वाली गर्मी रहने वाली है आज। और आज की तारीख 19 अगस्त ये कहा जा रहा है आज यानी कि यूपी बिहार दिल्ली तक यानी कि झमाझम बारिश आने की संभावना भी जताई जा रही है। साथ ही साथ ये बारिश यानी कि पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली और अनेक यूपी के कई राज्यों में बारिश मूसलाधार बारिश बताई गई है। साथ ही साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में भी अत्यधिक बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो बस मौसम का आनंद लेना है आपने और एंजॉय करते रहना है और साथ ही साथ तला भुना चीजें हैं वो बिल्कुल अवॉइड करनी है आपने। मौसमी फल खाइए, घर के बनी हुई जो भी खाना है वो खाइए, क्योंकि जितना आप घर का खाना खाएंगे, सादगी वाला खाएंगे, उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे, अदरवाइज बीमार पड़ जाएंगे। और ऊपर से बरसात का मौसम है, साथ ही साथ अपने आस पास गमलों की भी सफाई रखें और कूलर अगर आप चलाते हैं तो उसका पानी है यानी कि डेली चेंज करें। और अगर आप पानी सोचते हैं, आप ये चाह रहे कि हम बिना पानी के चलाएं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप पानी डाल के भी चला रहे हैं तो डेली आपने चेंज करना है, क्योंकि इस टाइम मच्छर बहुत ज़्यादा पनपते हैं। डेंगू मलेरिया की जो फीवर है वो बहुत सारे केसेस अब देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें आपने संभल कर रहना है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है, साथ ही साथ अपने आसपास पानी बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं होने देने हैं। अगर आप पानी रखते भी है सुबह के लिए तो उसको अगर बाल्टी टब में अगर आप रखते हैं तो पानी को कोशिश करिए कि ढक कर रखें। एक्चुअली हमारे दिमाग में यही आता है ना कि मच्छर रात को बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन सुबह के टाइम भैया और भी ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो कानों के आगे भिनर भिनर कहते हैं कि भैया उठ जाओ हमें भूख लगी है। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। चलिए श्रोताओं, फिलहाल कुछ यानी कि कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है, उसके बाद हम आप सभी के साथ कनेक्ट होंगे और लेकर आने वाले कड़क म्यूजिक, जिसको आपने पहचानना है कि आखिरकार गाने का क्या नाम है।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
3: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
2: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
3: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
2: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
4: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
5: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 20% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है जी बिंदास मॉर्निंग शो में। और समय की बात करूं तो 9:00 श्रोताओं यानी कि 52 मिनट हो चुके हैं और इसी बीच में आप सभी के लिए लेकर आ गई हूं कड़क म्यूजिक, जिसको आपने सुनना है और बताना है कि इस जो म्यूजिक मैं प्ले करूंगी उस गाने का क्या नाम है और ये जो गाना है किस मूवी से है, वो अपने नाम बताना है हमें। यानी कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9823789689 पर आपने मैसेज करके बताना है श्रोताओं आज की सुबह यानी कि कौन सा म्यूजिक प्ले किया जाएगा आप सभी के बीच। चलिए तो देखते हैं, बाकी आर यू रेडी बताने के लिए आप? आई नो, मुझे पता है कि आप रेडी है। तो चलिए म्यूजिक प्ले करते हैं, आपने सुनना है और बताना है, गैस करिए।

जी किथे ध्यान है जी, मैं क्या जल्दी जल्दी मैसेज करिए, नंबर है 9823789689 कि आखिरकार जो मैंने म्यूजिक प्ले किया है गाने का नाम बताना है और कौन सी मूवी से है वो भी नाम बताना है जी। चलिए वन सेकेंड एक बार और रिपीट कर देंगे।

और देखिए जी, गाना बीच में से नहीं बताना है, बिल्कुल जो नाम है गाने का आपने वही बताना है। पता चले बीच में से आपने बता दीजिए नहीं इस गाने का ये नाम है, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बिल्कुल आपने स्टार्टिंग से बताना है कि इस गाने का क्या नाम है। सोचिए और मैसेज करिए, एक बार और सुनते हैं, उसके बाद एक और गाना आप सभी के बीच प्ले करते हैं।

हाय हाय, सोचिए जी सोचिए, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए कि आखिरकार जो मैंने म्यूजिक प्ले किया है आपके बीच, यानी कि गाने का क्या नाम है और किस मूवी से है, वो आपने गेस करना है जी। चलिए, एक मौका और आपको मिलेगा यानी कि सोचने के लिए।

0: चलिए जी, लास्ट मौका था आप सभी के बीच, यानी कि सोचने के लिए सोचिए, एक और गाने के बाद लौट कर आते हैं आप सभी के बीच।
1: मेरा पुत्र रब करके तनु परिया वर्गी होटी मिले।
2: अच्छा मम्मी जी।
1: अच्छा है इस बारी। अच्छा अच्छा ठीक है, तो व्हाट्सएप चेक करके दसी।
2: ओके मम्मी,
1: बाय बाय।
2: बाय बाय मॉम।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

गुड वाली मॉर्निंग है जी। समय की बात करूँ तो 10:03 हो चुके हैं और जो मैंने म्यूजिक प्ले किया था एक बार और आपको सुनवाते हैं और आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं।

जी चलिए देखते हैं फिलहाल किन का मैसेज आ गया है। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं कश्मीर से मिराज उद्दीन जी, और कहते हैं आपकी आवाज दिल को छू गई, मैं कह सर कलेजे फेफड़ों को छू ही नहीं हूं मैं, वरना अटैक ही बढ़ जाता। जस्ट किडिंग, बट आप जो मैसेज करते हैं बहुत अच्छा रहता है। थैंक यू सो मच कि आपको मेरी आवाज अच्छी लगती है। अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, यानी कि आज के विनर हैं।

0: यानी कि आज हमारे शो के विनर बनती है. हेलो गुड मॉर्निंग, मेरा नाम नीतू सिंह है, लाइन पार से कनेक्ट होती हैं. रीना कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी. आप बताइए कैसी हैं? जो आपने म्यूजिक प्ले किया है वो है मुझसे शादी करोगी कब तक जवाने छुपाओगी रानी. यानी कि नीतू जी आज यानी कि बिंदास मॉर्निंग यानी कि बिंदास शो के विनर बन गई हैं. क्या बात है जी, बल्ले बल्ले, खुश होइए और एंजॉय करिए क्योंकि आज यानी कि बिंदास मॉर्निंग शो के आप विनर बन गई हैं. यहाँ पर हमारे पास बबलू जी का भी राइट आंसर आया है, कब तक जवानी छुपाओगी रानी. नवनेश कुमार जी भी सर राइट आंसर के साथ कनेक्ट हुए हैं. प्रिय मित्र आरजे रीना जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. मुझसे शादी करोगी ये कनेक्ट हो गई है. लक्ष्मी जी लाइन पार से,
1: छुपाओगी रानी,
0: फिल्म का नाम है मुझसे शादी करोगी कब तक जवानी छुपाओगी रानी.
1: कवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी.
0: डॉक्टर सुरेश कुमार जी कनेक्ट हो गए हैं लाइन पर मुरादाबाद से, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं. वेरी गुड मॉर्निंग सर, दिल लुटिया बट ये गाना आई, ये तो गलत आंसर है सर.
1: शादी करोगी
0: मुझसे शादी करोगी. फिलहाल हमारे पास वॉइस मैसेज में आए, उनको भी सुनवाते हैं. आप सभी को क्या कहना चाहिए.
2: रीना मैम गुड मॉर्निंग, मैं जिला मुरादाबाद संबल रोड बस्तौर से कान से बात कर रही हूँ. मूवी है मुझसे शादी करोगी सॉन्ग है.
0: ओके
3: आरजे रीना जी, आपने जो सवाल किया है उसका जवाब है कवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी. मुझसे शादी करोगी ओ मुझसे शादी करोगी, फिल्म का नाम भी मुझसे शादी करोगी है.
0: अगले मैसेज की बात करूं, कब तक जवानी छुपाओगी रानी. लेकिन सर आपने मैसेज नाम नहीं बताया, गलत बात है. इनके लास्ट नंबर है यानी कि 4 डिजिट है 0200.

0: कब तक जवानी छुपाओ गिरानी मुझसे शादी करोगी मूवी का नाम है और बिंदास मॉर्निंग शो में आज सारे गाने बिंदास है जी, लेकिन आपका नाम क्या है? अरे भैया सर अपना नाम भी बताइए यार कृपया, तभी तो हमें पता चलेगा कि आपका नाम क्या है। इनके 4 डिजिट है नंबर के 8527। दुर्गेश सैनी जी कनेक्ट हो गए हैं कल्याणपुर मुरादाबाद से, इनका कहना है कि कब तक जवानी छुपाओगी रानी, आप करेक्ट आंसर के साथ।
1: जवानी छुपाओगी रानी, कवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी।
0: चलिए जी टेक्स्ट मैसेज की तरफ बढ़ते हैं।
1: करो
0: अमरोहा से नेहा कनेक्ट होती हैं, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे जी, गाना प्ले कर दीजिएगा। जी बिल्कुल कर देंगे, टेंशन मत लीजिए, बिंदास रहिए आप। सीमा जी कनेक्ट होती हैं, रीना जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी, नाइस गाने आप प्ले करती हो। ओके आज पता चल गया मेरे को कि मैं गाने अच्छे प्ले करती हूँ। अगले मैसेज की बात करूं तो मुस्कान जी कनेक्ट हो गई है और इनका कहना है कि कब तक जवानी छुपाओगी रानी। हेलो मैम, नेहा जी कनेक्ट होती है फ्रॉम मुरादाबाद से और इनका कहना है कि ये भी राइट आंसर के साथ कनेक्ट होती है। चलिए श्रोताओं इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। हम आपको मिलने वाले हैं यानी कि इवनिंग मस्ती शो में शाम 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, वहां भी धमाल करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, कनेक्ट होना बिल्कुल मत भूलिए और सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। और आज की कहानी है इस शहर की, जहां आस्था की गहराई भी है और विकास की नई रफ्तार भी। जी हाँ, बात हो रही है गोरखपुर की।
1: बिल्कुल, गोरखपुर जहां की मिट्टी में परंपरा की खुशबू है, तो वहीं आज के बदलते दौर में मेहनत, हुनर और उद्यमिता की नई पहचान भी दिखाई दे रही है। शहर की गलियों से लेकर छोटे छोटे कारोबार तक बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर यहां साफ नजर आती है।
0: और इस बदलाव के पीछे है विकास की ऐसी सोच जिसमें रोजगार के अवसर बढ़े हैं, स्थानीय प्रतिभा को मंच मिले और अपने पैरों पर खड़ी होने का सपना सच हो।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और दूरदर्शी सोच में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ऐसे प्रयास कर रही है, जिससे युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं।
0: गोरखपुर में भी इस प्रयासों का असर उन चेहरों पर दिखता है जिन्होंने अवसर को अपनी मेहनत से सफलता में बदलना है।
1: तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं एक ऐसी महिला उद्यमी की कहानी जिनके लिए कारोबार सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का रास्ता है।
2: नमस्कार, मेरी यात्रा 2014 में एक साइकिल से शुरू हुई थी और आज मैं जिस जगह पर बैठी हूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आज मैं उद्यमी के रूप में आप लोगों के बीच आऊंगी। तो ये सब संभव हुआ हमारे प्रयास और सरकार की योजनाओं से।
3: आप अभी इस समय सिद्ध विनायक पैकेजर्स नामक जो आपका संस्थान है, इसके माध्यम से थोड़ा सा और विस्तार में हमको बताएं कि इसको यहाँ तक पहुँचाने के क्रम में आपको किन किन योजनाओं का लाभ मिला, आपके साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनको आपने किन किन योजनाओं का लाभ दिया और जिससे आपके साथ जो भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनका जीवन स्तर जो सुधरा हुआ है। तो जो विकास की यात्रा है वो आप अपने मुंह से खुद बताएं कि आपके साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनको आप किन किन योजनाओं से लाभान्वित कराया है।
2: पहले तो जब मैं अकेले इस मुहिम में निकली थी तो मैं अकेली थी और साइकिल से मैंने यात्रा को तय किया और उन दिनों कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि मुझे एक डूडा का जो लोन होता है वो भी नहीं मिल पाया। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, मुझे PNGP से 50 लाख का लोन मिला मुझे आगे काम बढ़ाने में, और मैंने अपने साथ साथ जो मेरी संस्था है वुमेन स्ट्रेंथ सोसाइटी, उसके माध्यम से मेरे साथ हजारों महिलाएं जुड़ी हैं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जुड़ी हैं। तो मैं जिस तरह से मैं यात्रा में अकेले निकली थी, तो मैं ये नहीं चाहती थी कि हमारी बहनों को भी संघर्षों का सामना करना पड़े। इसीलिए मैं अपनी बहनों को जोड़ के, और आज हमारे सरकार की तमाम योजनाएं हैं जो युवाओं के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, उन अपने तो मैं लाभान्वित हुई ही, और अपने साथ साथ मैं अपने संस्था से जुड़ी और भी जितनी बहनें मेरे पास आती हैं उनको सरकार की योजनाओं से मैंने स्वयं लाभान्वित किया, युवाओं को, महिलाओं को। तो सरकार की तमाम योजनाएं हैं जिससे हमारी बहनें जुड़ी हैं, CM युवा से जुड़ी हैं बहनें, ODOP के माध्यम से, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से महिलाएं सम्मानित हो रही हैं और उन्होंने अपना स्वयं का व्यापार शुरू किया। तो मशीन सरकार से मिलती है और सिलाई का काम उन्हें मैं दे देती हूँ। ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिनसे हमारी बहनें आत्मनिर्भर बनी हैं और इससे हमारी बहनें भी चाहती हैं, हम भी ये चाहते हैं कि UP गवर्नमेंट जब से उत्तर प्रदेश में आई है तब से महिलाओं का और युवाओं का बड़ा विकास हुआ है। जो कहीं नौकरी के लिए जाते थे, आज युवा और महिला स्वयं 10-20 लोगों को रख के समूह के ही माध्यम से अपना व्यापार चला रहे हैं और आत्मनिर्भर बने हैं। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ जिस तरह से मैंने अपने व्यापार को बढ़ाया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमें एक 8 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारी संस्था को मिला जो ग्रामीण क्षेत्र में लगने वाला है, जिसमें करीबन 300 महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के मुख पर ये मुस्कान कि हम कहाँ जाते रोजगार के लिए शहर में। आज हमारे सरकार की ये देन है, ये उपलब्धि है कि ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने ऐसे अवसर दिए।
3: दिव्याली दीदी, आपसे एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, जो मैं जानता हूँ, जो मेरे सुनने में आया है कि आपसे जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं

0: तो हम लोगों का ये लगता हुआ ब्लॉक चरगावा है, तो चरगावा ब्लॉक के अंतर्गत उस विकास खंड के अंतर्गत जो वहाँ के वीडियो साहब हैं उनसे लाइजनिंग करके, उनसे बातचीत करके तमाम बहनों को आपने जो सरकार द्वारा अन्य जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे आपका जो है आयुष्मान कार्ड हो गया, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इस प्रकार की जो अन्य जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इनसे भी आप से जुड़ी जो महिलाएं हैं, अन्य महिलाएं हैं, उनको भी आप वीडियो साहब से बातचीत करके जोड़ने का प्रयास करती हैं, तो थोड़ा सा उसको भी आप बताना।
1: बिल्कुल, वीडियो साहब से हमने प्रयास, क्योंकि महिलाएं कोई भी काम होता है तो मेरे पास आती हैं, तो वृद्धा पेंशन और आयुष्मान कार्ड जिन महिलाओं के नहीं बन पाते हैं, हम लोग जाती है, हमारी टीम, हम भी जाते हैं। तो आज महिलाएं आयुष्मान कार्ड के साथ साथ वृद्धा पेंशन, आवास योजना और आवास के लिए तो ऐसी महिलाएं जुड़ी हैं जो बिल्कुल ऋणी थी, उसकी जरूरत थी, वैसी महिलाओं को आवास मिला है इस सरकार में। तो वो सारी महिलाएं हमारे साथ इसीलिए जुड़ी हैं कि मैं सरकार की योजनाओं से उन्हें जोड़ पाती हूं और उसका लाभ उनको सीधे अधिकारियों के संपर्क के द्वारा उनको हम लोग देते हैं। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, चूंकि मैं सभी अधिकारियों से मिलती जुलती हूँ, जाती हूँ, आज हमारे सरकार की बहुत योजनाएं हैं, योजनाओं की बाढ़ है और इससे लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं, लेकिन मेरा एक ये भी कहना है कि जितना हो रहा है उससे भी अधिक हो सकता है। तो इसके लिए जो हमारे अधिकारी गण हैं, वो युवा और महिलाओं को कहीं भी देखें तो उनको अपने बुलाएं और उनसे बात करें और उनकी समस्याओं का समाधान करें।
0: बिल्कुल संगीता जी, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी महिलाओं को आपने जो है सरकार की अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा है और साथ ही साथ उद्योग जगत से भी उन लोगों को जोड़ा है, उनका रोजगार का सीजन हुआ है, उनका जीवन सुखमय हुआ है, तो क्यों न हम एक साथ बोले कि विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। धन्यवाद उत्तर प्रदेश सरकार, धन्यवाद पूज्य महाराज जी।
1: धन्यवाद तो उत्तर प्रदेश सरकार को है ही, और ये मैं ही नहीं कह रही हूँ, ये तमाम महिलाएं जो अपने घर के चार दीवारी में कैद थी, उसको समूह के ही माध्यम से हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने बाहर निकाला और उनको ये अवसर दिया कि वो स्वरोजगार से जुड़ी, आत्मनिर्भर बनी। तो इसके लिए धन्यवाद उत्तर प्रदेश और धन्यवाद हमारे माननीय महाराज जी को, हम सभी महिलाओं की तरफ से और हम सभी युवाओं की तरफ से।
0: बहुत बहुत आभार संगीता पांडे जी, आपने जो है अपना कीमती समय दिया और सरकार की योजनाओं का लाभ किस प्रकार से लोग ले रहे हैं, किस प्रकार से आपने इसका लाभ उठाया है, तो विकास का प्रदेश
1: उत्तर प्रदेश।
2: सुना आपने, जब सरकारी सहयोग अपने हुनर और मेहनत का साथ मिलता है तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़ी मिसाल बन सकता है।
3: और यही कहानी गोरखपुर के एक और लाभार्थी की है, जहां विकास का मतलब सिर्फ रोजगार या कारोबार तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए जीवन में बेहतर सुविधाओं और सुरक्षा का विस्तार भी है।
4: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश अभियान के अंतर्गत हम आ पहुंचे हैं यहां से लगे हुए गांव घोसीपुरवा में, जहां पर तेजू प्रसाद जी का घर है। उनसे हम जानेंगे कि सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है। तो विकास की कहानी लाभार्थी की जुबानी। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे।
5: हमारा नाम तेजू प्रसाद है।
4: तेजू जी, सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ आपको प्राप्त हुआ है?
5: उनको घर का पैसा मिला, घर बन गया है, आयुष्मान कार्ड का हो गया, राशन कार्ड भी चलता है, माँ का रह गई वृद्धा पेंशन में, और बाकी जो सरकार की तरफ से वो ठीक ही चल रहा है।
4: आपका घर ठीक नहीं था, सरकार की तरफ से आपको आवास मिल गया है?
5: मिल गया, आवास मिल गया, घर बन गया।
4: आपकी माता जी को वृद्धा पेंशन भी मिल रही है, तो फिर भी आप संतुष्ट हैं सरकार की योजनाओं का लाभ पाकर?
5: हाँ, एकदम संतुष्ट हूँ।
4: अभी जिन योजनाओं से आप लाभान्वित हो रहे हैं उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे?
5: उनका धन्यवाद, हमारे लिए इतना कुछ किए, अब उससे अधिक कुछ करें तो और अच्छा ही लगेगा।
4: तो ये थे हमारे साथ तेजू प्रसाद जी, जो यहाँ से लगे हुए गांव घोसीपुरवा के निवासी हैं। हम देख रहे हैं, इनसे भी बात करके हमने जाना और आप भी सुन रहे हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है, संतुष्ट है। कुछ कमियां हैं, वो भी पूरी होंगी, जैसे सरकार ने अभी तक विकास की इस कहानी को विस्तृत किया है। हम आशा करते हैं कि बाकी जनता भी जो लाभान्वित होने से अभी वंचित है, उसको भी इन सभी योजनाओं का भरपूर लाभ मिलेगा और तेजू प्रसाद जी की तरह बाकी जनता भी हमारी सरकार से ऐसी संतुष्ट होगी और उनके द्वारा संचालित योजनाओं का इसी तरह से लाभ प्राप्त करती रहेगी।
2: यानी एक और मेहनत से आगे बढ़ने का अवसर, तो दूसरी ओर परिवार के लिए सामाजिक सुरक्षा का सहारा, यही योजनाओं का असली असर है।
3: मुख्यमंत्री आवास योजना से परिवार को अपने घर का सहारा मिला, आयुष्मान कार्ड से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की उम्मीद मजबूत की, राशन कार्ड ने परिवार की रोजमर्रा की जरूरत में मदद की, वृद्ध पेंशन ने बुजुर्ग सदस्य के जीवन में आर्थिक संबल जोड़ा।
2: मतलब सरकारी योजनाएं जब जरूरतमंदों पर सीधे पहुंचती हैं, तो उनका असर सिर्फ कागजों पर नहीं रहता, वो घर की चौखट से लेकर फिर खुशियों तक दिखाई देता है।
3: और यही तो विकास की वह तस्वीर है जहां एक परिवार अपने आज को संभालते हुए बेहतर कल की ओर कदम बढ़ाता है।
2: वाकई इन अनुभवों में सिर्फ सफलता की कहानी नहीं बल्कि बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी दिखाई देती है।
3: और इस बदलाव को जमीन पर किस तरह गति मिल रही है, योजना का लाभ लोगों तक कैसे पहुंच रहा है, इसे लेकर अब सुनते हैं संबंधित अधिकारी की बात।
6: मेरा नाम उज्जवल सिंह है और वर्तमान में मैं जनपद गोरखपुर में डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट के रूप में कार्यरत हूँ।
4: सबसे पहले जानना चाहूंगी गोरखपुर जनपद में सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो प्रभावी रूप से संचालित हो रही हैं?
6: वर्तमान में प्रदेश सरकार के द्वारा कई सारी जो है योजनाएं एमएसएमई विभाग के द्वारा जो है संचालित है। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन कुसीन स्कीम अभी लॉन्च की है। इसके अतिरिक्त जो है ODOP मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, CM युवा जिसे हम लोग मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान कहते हैं, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ODOP टूल किट योजना, इसके अतिरिक्त जो है MSME 2022 और टेक्निकल अपग्रेडेशन, ऐसी तमाम योजनाएं जो है संचालित हैं जिनका जो है लाभ समाज के विभिन्न तबके के लोग जो है उठा रहे हैं।
4: जो संबंधित व्यक्ति हैं इस योजनाओं के, वो किस प्रकार से लाभान्वित हो रहे हैं?
6: जो विभाग के द्वारा योजनाएं संचालित हैं उसमें उनको जो है ट्रेनिंग देने से लेके, यानी कि उनको कौशल उन्नयन से लेके और उनको कैसे जो है स्वरोजगार तक ले जाने के जितने भी चरण होते हैं, हर एक चरण पे जो है हमारी जो विभागीय योजनाएं हैं सरकार के द्वारा जो संचालित हैं उसका लाभ लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे यदि कोई व्यक्ति प्रशिक्षित नहीं है किसी विधा में, तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत जो है दर्जी, लोहार, नाई, टोकरी बुनकर, ऐसे तमाम जो है जो विधाएं हैं उसमें उनको जो है प्रशिक्षण उनको प्राप्त होता है। ODOP के अंतर्गत जो है टेरा कोटा और रेडीमेड गारमेंट से संबंधित जो है प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ऐसे लोग जब प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं और साथ ही अन्य लोग जो इस काम में इच्छुक हैं, कोई अपना काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए जो है ऋण स्कीम है, लोन स्कीम है, उदाहरण के लिए ODOP मार्जिन मनी स्कीम है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, CM युवा जिसे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान कहते हैं, इसके अतिरिक्त एक जनपद एक व्यंजन स्कीम जो भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लॉन्च की गई है, इनके माध्यम से वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो MSME की इकाइयां हैं उनके लिए MSME पॉलिसी 2022 है, उसके तहत उनको लाभ प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जो है बहुत सी इकाइयां जो अपने यहाँ टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रही हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की स्कीम है। कुछ लोग जो समूहों में काम करना चाहते हैं, क्लस्टर बेस काम करना चाहते हैं, उनके लिए क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो ODOP CFC की योजनाएं हैं, साथ ही गवर्नमेंट द्वारा जो है भारत सरकार द्वारा MSCCTP योजना भी राज्य सरकार द्वारा जो है वो भी लागू है। तो काफी बड़े कैनवास पे जो है कई स्कीमों के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि हर व्यक्ति जो है सरकार की विभिन्न विभागीय योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके।
4: हमारी आधी आबादी महिलाएं, युवाओं के लिए और जो जन समूह में जो लोन करते हैं, इन लोगों के लिए क्या क्या योजनाएं हैं, किस तरह से ये लाभान्वित हो रहे हैं उसमें?
6: सभी स्कीमों में जो है विशेषकर महिलाओं के लिए विशेष जो है प्राविधान किया गया है, चाहे हमारी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हो, चाहे CM युवा हो, चाहे ODOP हो और चाहे MSME पॉलिसी 2022 हो, हर स्कीम में महिलाओं के लिए विशेष प्राविधान किए गए हैं। और जहां तक युवाओं की बात है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा CM युवा स्कीम जो लॉन्च की गई है वो विशेषकर युवाओं को ही फोकस करते हुए लॉन्च की गई है और जिसमें युवाओं के द्वारा बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया जा रहा है। इसमें 21 से 40 उम्र के जो भी युवा हैं वो अगर अपना कोई उद्यम स्थापित करना चाहते हैं तो विभागीय योजना के माध्यम से वो लाभान्वित हो सकते हैं। और युवाओं को ही दृष्टिगत रखते हुए भी एक जनपद एक व्यंजन जो स्कीम है, क्योंकि ये खान पान से संबंधित है और मुझे लगता है कि युवाओं के द्वारा जो है बढ़ चढ़ के इस तरह से जो व्यंजनों से संबंधित उसमें काफी उनकी रुचि भी होती है, तो उस क्षेत्र में भी वो कार्य कर सकते हैं।
4: कोई व्यक्ति जो इन योजनाओं का लाभ लेना चाह रहा है किन्हीं कारणों से नहीं ले पा रहा है, क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए उसे?
6: सबसे पहले तो लाभ अगर उसको नहीं मिल पा रहा है तो सबसे पहले हमारे जो ऑफिस है, हमारे ऑफिस में किसी भी कार्य दिवस में वो आ सकता है। यहाँ पे उनको जो है जो भी स्कीम का वो लाभ लेना चाहते हैं उससे संबंधित उनको स्कीम के बारे में बताया जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो है विभाग के द्वारा जो भी योजनाएं हैं हमारी वो सारी पोर्टल पे ऑन बोर्ड की गई है, तो पोर्टल के माध्यम से भी जाके वो स्कीम के बारे में समझ सकते हैं। तो दोनों ही तरीके हैं, अगर चाहे वो ऑनलाइन मोड में या फिर अगर वो अगर इतने डिजिटली अवेयर नहीं है, लगता है कि शायद चीजें हम पोर्टल के माध्यम से नहीं समझ पाएंगे, तो किसी भी कार्य दिवस में ऑफिस में आके स्कीम्स के बारे में जान सकते हैं।
4: योजनाएं सिर्फ टेबल तक ना रह जाए, कागजों तक ना रह जाए, आम जनमानस तक जाए, प्रभावी रूप से संचालित भी हो, इस पे क्या पैनी नजर है?
6: जितनी भी स्कीम्स हैं सभी स्कीम्स का यही मकसद होता है कि अंतिम पायदान के व्यक्ति तक वो स्कीम पहुंचे। और हमारी जितनी भी स्कीम है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जितनी भी संचालित स्कीम है विभाग के द्वारा जिनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, बढ़ चढ़ के लोगों के द्वारा उसमें हिस्सा लिया जा रहा है, चाहे वो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना हो, चाहे वो DUP स्कीम हो, चाहे CM युवा हो, तो सभी में ही बहुत ही मतलब ग्रास रूट लेवल पे भी जो लोग हैं वहां तक वो स्कीम पहुंच रही
4: है। अंत में हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे?
6: मैं दर्शकों से यही अनुरोध करूंगा और मेरा यही कहना है कि विभाग और सरकार के द्वारा बहुत सी अच्छी स्कीम्स आपके लिए लॉन्च की गई हैं और ये स्कीम आपकी ही है, और बढ़ चढ़ के जो है इन स्कीम्स का फायदा लेते हुए और उत्तर प्रदेश की आर्थिक तरक्की में आप लोग जो है सहभागी।
4: बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्री उज्ज्वल सिंह जी। हमें पूरा विश्वास है कि सरकार के द्वारा आयोजित ये इन योजनाओं का संबंधित व्यक्ति अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
2: यानी गोरखपुर की ये कहानी बताती है कि विकास सिर्फ बड़ी इमारतों और बड़ी परियोजनाओं का नाम नहीं,
3: बल्कि विकास वो है जब किसी के हुनर को अवसर मिले, किसी के कारोबार को सहारा मिले और किसी परिवार को आवास, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाओं का संबल मिले।
2: यही है नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर, जहां परंपरा के साथ प्रगति है और अवसर के साथ आत्मनिर्भरता।
3: और गोरखपुर इस बदलती तस्वीर का एक जीवंत अध्याय है।
2: इसी के साथ विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश के आज के एपिसोड गोरखपुर की गाथा में हमें दीजिए इजाजत।
3: जुड़े रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में ऐसी कई कहानियां अभी बाकी हैं।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
0: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
0: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 7055070552। अब पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल रामपुर रोड मुरादाबाद।
0: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। एंड ब्यूटीफुल मॉर्निंग है आज, वेडनेसडे मॉर्निंग है। और बताती हूँ मैं आपको, समय हुआ है एवरीवन 10:32। शो का नाम है मॉर्निंग मसाला। और बाहर की वेदर की अगर बात करें तो बाहर का जो मौसम है, अभी बादल भी हो रहे हैं हल्के हल्के, और हल्की फुल्की धूप भी है।

और तारीख है आज 19 अगस्त की। आज के दिन क्या कुछ स्पेशल है सब आपको पता लगेगा। पूरे वर्ल्ड में हमारे यूपी में क्या चल रहा है सब आपको इन्फॉर्मेशन आरजे खुशी यहाँ पर देने वाली है। तो दोस्तों आप भी मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837896896। इस नंबर पर आप भी अपने थॉट अपने विचार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपने दिल की बात जो आप हम तक शेयर करना चाहते हैं। तो फटाफट से मैसेज कीजिएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ। और एक खूबसूरत से गाना हम आपको सुनवा देते हैं। और दोस्तों लेकिन उससे पहले एक बहुत ही खूबसूरत सा विचार जो अभी मैंने पढ़ा था कि खुद से इतना वादा कर लो कि हालात जैसे भी हों तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारी अच्छाइयाँ कभी कम नहीं होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि देखिए सिचुएशंस लाइफ में होती हैं, कभी उतार चढ़ाव चलते रहते हैं ज़िंदगी में, सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन अपना अच्छा स्वभाव अच्छा नेचर कभी भी नहीं चेंज करना चाहिए। जैसे आप हैं वैसे ही आप रहिएगा, अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छा व्यवहार रखिएगा, सब कुछ ठीक होगा। दोस्तों अच्छे विचार अच्छा व्यवहार और सच्चे कर्म ही जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। इसीलिए पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए एंड हैप्पी रहिए। मैं लौट कर आती हूँ अभी एक प्यारे सी गाने की उस पार। आप कहीं मत जाइएगा, यूं ही मुस्कुराइए और अपने मैसेज हम तक पहुँचाइएगा। मैं इंतज़ार कर रही हूँ। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी।

हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना विशाल ददलानी, साथ में पायलदीप नेगी जी की, बहुत ही पायलदीप जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज। दोस्तों जरा सोचिएगा, हमारे देश के हर शहर, हर जिले और हर क्षेत्र की अपनी खास पहचान होती है और इसी पहचान में वहाँ का खान पान भी अहम भूमिका निभाता है। इसी खूबसूरत विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक खास पहल की है, वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन यानी ODOC योजना। इस पहल के तहत उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के पारंपरिक और खास व्यंजनों को पहचान दिलाई जा रही है। इसका उद्देश्य सिर्फ इन व्यंजनों को संरक्षित करना ही नहीं बल्कि उन्हें बेहतर ब्रांडिंग, अच्छी पैकेजिंग और बड़े बाजारों से जोड़कर देश और दुनिया तक पहुंचाना है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 2008 के पारंपरिक व्यंजनों की पहचान की गई है, यानी उत्तर प्रदेश के 208 पारंपरिक व्यंजनों की पहचान की गई है। यानी अब यूपी का स्वाद सिर्फ स्थानीय बाजारों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसे राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है। इस पहल के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के 2026 से 2027 के बजट में 75 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। सोचिए, हमारे घरों और शहरों में वर्षों से चली आ रही कोई पारंपरिक रेसिपी अगर देश दुनिया तक पहुंचे तो ये सिर्फ खाने की बात नहीं होगी, ये हमारे सांस्कृतिक परंपरा और विरासत को पहचान मिलने में विरासत को पहचान मिलने की कहानी होगी और साथ ही इसे स्थानीय कारीगरों, छोटे जो कारोबारी हैं और युवाओं के लिए रोज़गार और नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। तो दोस्तों अगली बार जब आप अपने शहर का कोई ख़ास पारंपरिक व्यंजन खाएं तो सिर्फ उसका स्वाद मत लीजिए, उसके पीछे छिपी पीढ़ियों, पुरानी कहानियों और हमारी मिट्टी की खुशबू को भी महसूस कीजिएगा, क्योंकि सच ही है दोस्तों, जिस मिट्टी की खुशबू खाने में घुल जाए उस स्वाद की पहचान कभी मिटती नहीं है। और आप सभी के यहाँ पर खूबसूरत मैसेज भी आ रहे हैं लगातार बैक टू बैक, तो उनको भी मैं जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं गुल अंसारी जी एंड ये ट्रैक सुनना चाहते हैं फ्रॉम द मूवी अवारापन 2 से। श्योर सो, हम पूरी कोशिश करेंगे इसको प्ले करने की। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, आदरणीय प्रसारक जी को हमारा प्यार भरा आदाब, कबूल कीजिएगा आप, आपको भी आदाब सर। ये मैसेज अपना पहुँचाते हैं दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान जी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी, क्या हाल है आपके? सर बहुत ही अच्छे हैं। और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं मोहम्मद शान लुधियाना पंजाब से। श्योर सर, आपने जिस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है हम ये ट्रैक प्ले करने का पूरा प्रयास करेंगे, बट थैंक यू सो मच, आपने हमें मैसेज पहुंचाया है। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, जिला मुरादाबाद चौराहा गोविंदपुर खुर्द से रजा हुसैन जी अपना मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी, कैसी हैं आप? मेरा नाम नीतू सिंह है और ये लाइन पार से हमारे साथ कनेक्ट हुई है मैम, थैंक यू सो मच मैम, बस आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए और प्रभु की कृपा बस ऐसे ही बनी रहे, सब कुछ ठीक हो जाए।

0: ओके अनस जी भी हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच सर। एंड मैम आपने अपना मैसेज हमें पहुंचाया है। काफी लॉन्ग टाइम के बाद नीतू जी आपने मैसेज किया है, बहुत अच्छा लगा जब हमारे पुराने लिसनर्स भी हमें मैसेज करते हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है। हाय खुशी जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं मोहम्मद सलमान जी। एंड और भी बैक टू बैक मैसेज आप सभी के आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन, आप बस ऐसे ही जुड़े रहिएगा, मैं बस वापस आती हूँ अभी कुछ म्यूजिकल ब्रेक की उस पार। एंड दोस्तों आप भी अपने संदेश हमें पहुँचा सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837896896। और आज कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं वो सब खुशी आपको अपडेट देने वाली है। तो लुफ्त उठाइए कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक का एंड उसके बाद करेंगे आपसे बातचीत। और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मुस्कुराते भी रहिए।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

0: करो।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
0: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 शो का नाम है मॉर्निंग मसाला और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 11:02 राइट नाउ और अभी आपने एक ट्रैक सुना बहुत ही खूबसूरत सा, वो लड़की बहुत याद आती है और इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी चंडीगढ़ पंजाब से, हमारे पास यहाँ पर आई थी, आई रिमेम्बर लुधियाना पंजाब से हमारे पास ये इस गाने की रिक्वेस्ट भेजी थी मोहम्मद शान जी ने। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं वापस आऊंगी तो आपको बताऊंगी कि आज कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो दोस्तों आज 19 अगस्त को एंड टुडे इज़ वेरी स्पेशल डे क्योंकि आज मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस। जी हाँ, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे एंड एक ऐसा दिन जो तस्वीरों की कला, इतिहास और उन अनकही कहानियों को समर्पित है जिन्हें एक तस्वीर बिना कुछ कहे बयां कर देती है। फोटोग्राफी सिर्फ कैमरे से तस्वीर खींचना नहीं है, ये एक पल को हमेशा के लिए यादों में कैद करने का खूबसूरत तरीका है। कभी किसी की मुस्कान, कभी परिवार के साथ बिताया हुआ पल, कभी किसी खूबसूरत जगह का नज़ारा, तस्वीरें समय गुजर जाने के बाद भी उन पलों को हमारे पास संभाल कर रखती हैं।

और अगर इस इतिहास की बात करें तो 1839 में फ्रांसीसी सरकार ने डाइग्रोटाइप फोटोग्राफी प्रक्रिया की घोषणा की थी और इसी ऐतिहासिक घटना की याद में हर साल 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य सिर्फ फोटोग्राफी की कला को सेलिब्रेट करने का नहीं बल्कि उन सभी फोटोग्राफर्स को सम्मान देने का भी है जो अपने कैमरे के जरिए दुनिया को अलग अलग नज़र से दिखाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, एक तस्वीर सिर्फ एक पल को कैद नहीं करती है बल्कि उस पल से जुड़ी पूरी कहानी को अपने अंदर समेट लेती है। तो आज विश्व फोटोग्राफी दिवस पर आप भी अपनी कोई एक ऐसी फेवरेट तस्वीर ज़रूर देखिएगा जिसे देखते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अगर चाहें तो हमें बताइए कि आपकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर कौन सी है और उसके पीछे की क्या कहानी है। शॉर्ट में हमें ज़रूर अपना मैसेज पहुंचाएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896 और यहाँ पर बहुत सारे मैसेज भी आए तो उनको भी मैं जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। वैसे आप भी फ़ोटो खिंचवाने के शौकीन हैं ना, कहीं भी आप जा रहे हैं तो सबसे पहले आपका मोबाइल आपके हाथ में आना चाहिए, मतलब पॉकेट में, पर्स में फटाफट से फ़ोन आप निकालते हैं और कहते हैं कि चलिए यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ पर हम फ़ोटो लेते हैं। या फिर आप कहीं भी जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं फंक्शन में गए हैं, कहीं भी, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, वहाँ की डेकोरेशन देखते हैं, वहाँ का एरिया देखते हैं कैसा है। पहले सबसे पहले आप खाना वाना कुछ नहीं खाते हैं, सबसे पहले आप फ़ोटो क्लिक कराते हैं कि नहीं पहले फ़ोटो क्लिक करो ना। और अगर जैसे किसी दोस्त के साथ हम फ़ोटोज़ वगैरह आप क्लिक करा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलते होंगे? मतलब मेरा ऐसा मानना है कि आप पहले उनको बोलते होंगे कि नहीं देखो भाई, खाना वाना बाद में खाएंगे, पहले ना आप मुझे फ़ोटो सेंड कर दो क्योंकि मुझे स्टोरी लगानी है, मुझे स्टेटस लगाना है, ऐसा आप बोलते होंगे ना। कई दोस्त मेरी तरह भी होंगे जो बोलते होंगे कि हाँ भाई फ़ोटो जल्दी से भेज दो, चाहे खाना खाओ या मत खाओ लेकिन फ़ोटो सबसे पहले सेंड करो, ऐसा होता है ना, समझ सकते हैं हम। एंड अभी हमारे पास जो मैसेज आए हैं मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए हैं अंसार हुसैन जी का, एंड ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं दौलत बाग मुरादाबाद से। एंड गुड मॉर्निंग हमें पहुंचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। और ये गाना सुनना चाहते हैं, निगाहें क्यों बहकती हैं, कदम क्यों डगमगाते हैं, सुनवाएंगे सब आपको। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आए हैं, जय श्री राम खुशी मैम, गुड मॉर्निंग, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं दुर्गी सैनी जी कल्याणपुर मुरादाबाद से। और ये दोस्ती के ऊपर गाना सुनना चाहते हैं तो हम ये ट्रैक आपको सुनवाएंगे सब, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अभी हम गाना सुन लेते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक जो पेंडिंग में है, एंड इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजिए नीतू सिंह जी ने लाइन पार से। तो ये गाना सुन लेते हैं, कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक है। तो सुन लेते हैं अरिजीत सिंह जी की आवाज़ में, उसके बाद मैं लौट कर आने वाली हूँ अभी।

गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वैसे तो मैं भी आपके संग में ही हूँ, आपके साथ ही हूँ, और आप चाहे कार में हैं या फिर आप घर पर हैं या शॉप पर हैं, जहाँ भी आप हैं, खुशी आपके साथ है। क्योंकि हमें, हमारे जो लिसनर्स हैं, वो एप्लीकेशन के माध्यम से भी हमें सुन रहे हैं, एंड जो मुरादाबाद में रहते हैं वो रेडियो पर हमें सुन रहे हैं, और जो मैम अभी राइट नाउ किचन में हैं, खाना बना रही हैं या कोई काम कर रही हैं, तो रेडियो को अपने पास रख लेती हैं और काम भी करती रहती हैं, आराम से हमें सुन लेती भी रहते हैं। एंड इससे क्या होता है, एंटरटेनमेंट भी होता है, इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, और काम में मन भी लगा रहता है ना। और ये प्यारा सा ब्यूटीफुल सा ट्रैक अभी आपने ये सुना, अरिजीत सिंह साथ में शिल्पा राव की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़, फ्रॉम द मूवी लाल सिंह चड्ढा। और इस बेहतरीन ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी दरक्षा फातिमा जी ने, और साथ में की दोस्त भी हैं रुकैया फातिमा एंड अफरोज फातिमा, लाइबा एंड खुशी मैम। ओके, थैंक यू सो मच, आपने हमें भी शामिल किया। आज की मॉर्निंग मैंने आपसे बहुत सिंपल सा एक बात पूछी थी, सवाल नहीं था, मैंने आपसे पूछा था कि आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो मैंने आपसे मालूम किया था कि आप भी अपनी कोई ऐसी फेवरेट तस्वीर ज़रूर देखिए जिसे देखते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और अगर चाहें तो हमें बता भी सकते हैं आपकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर कौन सी है और उसके पीछे की क्या कहानी है। तो हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, एंड हमारे पास यहाँ पर पल्लवी जी का मैसेज आया है मुरादाबाद से, कहती हैं हाय खुशी जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और पल्लवी जी कहती हैं कि मेरी फेवरेट तस्वीरों की तो पूरी गैलरी भरी पड़ी है मैम, लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं कहीं वेडिंग में जाती हूँ तो सबसे पहले फ़ोटो क्लिक करती हूँ, मुझे फ़ोटो खिंचवाना एंड फ़ोटो खींचना दोनों ही बहुत पसंद है, मेरे मोबाइल में कम से कम 4000 फ़ोटोज़ हैं, ओ माय गॉड, लेकिन एक फ़ोटो ऐसी है जिसमें मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है, जब भी मैं उसे देखती हूँ तो लगता है कि इससे खूबसूरत मोमेंट तो शायद कोई और ही हो, लेकिन वो सबसे स्पेशल मोमेंट है जब हम पूरी फैमिली के साथ उस फोटो में हैं, और वो फोटो मैंने बहुत संभाल के रखी है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास रोहित जी का आया है दिल्ली से, और रोहित जी कहते हैं हेलो खुशी जी, गुड मॉर्निंग, मेरी फेवरेट फ़ोटो है मेरे दोस्त के साथ कॉलेज टाइम की, उस समय हम चारों दोस्त बिना किसी प्लानिंग के घूमने निकल जाते थे और रोड साइड दुकान वाले भैया से हमने फ़ोटो खिंचा ली थी ऐसी रैंडमली, एंड आज सब अपने अपने कामों में बिजी हो गए हैं और मिलना भी बहुत कम होता है, लेकिन वो फ़ोटो देखते ही वही पुरानी मस्ती याद आ जाती है, और सच में कुछ फ़ोटोज़ की वैल्यू समय के साथ और बढ़ जाती है। एग्जैक्टली सर, आई एग्री विद यू रोहित सर। एंड उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर नेहा जी का मैसेज आया है रामपुर से, और नेहा जी कहती हैं खुशी जी गुड मॉर्निंग, मुझे फ़ोटो क्लिक करना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो सबसे पहले मैं फ़ोटो लेती हूँ, और फिर लेकिन मैम मेरी सबसे फेवरेट फ़ोटो मेरी मम्मी जी के साथ है, वो बहुत सिंपल सी फ़ोटो है, कोई स्पेशल ओकेज़न नहीं था, हम दोनों बस घर पर ही ऐसे बैठे थे और मेरे भाई ने अचानक से ऐसी फ़ोटो क्लिक कर ली, जब भी उस तस्वीर को मैं देखती हूँ तो चेहरे पर अपने आप स्माइल आ जाती है, बहुत सुकून मिलता है उस फ़ोटो को देख कर। एंड उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट मैसेज अमित जी का आया है मुरादाबाद से, और ये मैसेज पहुँचाते हैं हाई गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी, और ये कहते हैं कि मुझे भी फ़ोटो क्लिक कराने का बहुत शौक है, एंड आपने फ़ोटो की बात की तो मेरी सबसे फेवरेट फ़ोटो है मेरे पापा जी के साथ, एक बार हम दोनों किसी काम के लिए बाहर जा रहे थे और रास्ते में मैंने उनसे कहा कि पापा जी एक फ़ोटो हो जाए, उन्होंने पहले तो मना किया, बड़ी मुश्किल से मैंने उनको मनाया और फिर हमने फ़ोटो खिंचवाई, आज वो तस्वीर मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि उसमें हम दोनों के चेहरे पर जो स्माइल है ना वो बिल्कुल नेचुरल है, जब भी मैं उसे देखता हूँ तो मेरा पूरा दिन बन जाता है। थैंक यू अमित जी, आपका मैसेज पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है साक्षी जी का बरेली से, और ये कहती हैं हाय खुशी जी गुड मॉर्निंग, हम एफएम मुरादाबाद सुन रहे हैं, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है और आपके जो बोलने का तरीका है ना वो बहुत प्यारा है, थैंक यू सो मच साक्षी जी। एंड ये कहती हैं कि मेरी फेवरेट फ़ोटो मेरी शादी के दिन की है, लेकिन वो मेरी ब्राइडल फ़ोटो नहीं है, मेरी फेवरेट फ़ोटो
वो है जिसमें शादी की सारी रस्मों के बीच मैं अपनी बहन के साथ हंस रही हूँ। उस समय हमें पता भी नहीं था कि कोई फोटो ले रहा है, लेकिन इसीलिए शायद वो इतनी स्पेशल है, बिल्कुल नेचुरल मोमेंट है। आज भी उसे देखकर वही हंसी याद आ जाती है, हमारे चेहरे पर आ भी जाती है और याद भी आ जाती है। थैंक यू साक्षी जी, आपने अपने ब्यूटीफुल मोमेंट हमारे साथ शेयर किए। तो दोस्तों आप भी मुझे अपने मैसेज पहुंचा सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। नेक्स्ट मैसेज हमें यहाँ पर मिला है मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जी का, और ये कहते हैं शुभ बुधवार आपको और सभी एफएम मुरादाबाद सुनने वाले श्रोताओं को भी। एंड एक गाना ये सुनना चाहते हैं, इन्होंने एक थॉट लाइनें भी लिखी हैं कि किस्मत के खेल भी हज़ार हैं, किस्मत के खेल भी हज़ार हैं, जो मिल नहीं सकता उसी से प्यार है, एक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरा जान देने को तैयार है। अरे वाह, तो चलिए दोस्तों बस मैं आती हूँ अभी कुछ ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। आप कहीं मत जाइए और अपने संदेश खुशी को पहुँचाइए, क्योंकि खुशी आपके संदेशों का इंतज़ार कर रही है। और क्या कुछ है सब आपको बताने वाली है खुशी। एंड क्या अपडेट है हमारे वर्ल्ड में, क्या चल रहा है, मौसम अपडेट के बारे में भी हम आपको बताएंगे, वेदर कैसा रहने वाला है। तो बस बने रहिएगा, यूं ही मुस्कुराते रहिए आप।

0: विजिट करो।
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपके दोस्त आरजे खुशी। और वक्त अभी हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 11:40। शो का नाम मैं आपको बता देती हूँ, मॉर्निंग मसाला। और दोस्तों, अब एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी और अयोध्या पुलिस की सूझबूझ की आपको तारीफ का आपके वो मतलब तारीफ भी करने का मन करेगा। दरअसल अयोध्या के सिविल लाइन क्षेत्र में एक महिला के 42,000 रुपए एक बंदर लेकर भाग गया। एंड बीकनपुरी निवासी अंजू देवी सिविल लाइन्स चौक की के पास मौजूद थी, तभी अचानक एक बंदर उनके रुपए लेकर वहां से भाग निकला। आसपास मौजूद लोगों ने बंदर से रुपए वापस लेने की काफी कोशिश की, लेकिन जानवर बंदर भी रुपया छोड़ने को मतलब उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था। मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची। अब यहां पुलिस ने दिखाई अपनी पेशेंस और माइंड यानी मौके की समझदारी। एंड पुलिस ने बंदर को पकड़ने के लिए जल्दबाजी या किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं की, बल्कि एक केले का इंतजाम किया। एंड केला देखकर बंदर का ध्यान रुपयों से हटा और पुलिस ने इसी मौके का फायदा उठाकर पूरे 42,000 रुपए सुरक्षित बरामद कर दिए हैं। एंड इसके बाद रुपये महिला को वापस सौंप दिए गए। तो अयोध्या पुलिस की इस कहानी से एक बात तो साफ है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ ताकत नहीं होता है, कभी कभी थोड़ा पेशेंस, थोड़ी बुद्धिमानी और एक कला, एक केला भी काफ़ी मतलब होता है। देखिए दोस्तों, उन्होंने किस तरह से अपने सरनी दिमाग लगाया और एक ही केले से मैडम जी के 42,000 रुपये वापस करा दिए एक मंकी से। और अयोध्या पुलिस की इस सूझबूझ के लिए वाकई तारीफ तो बनती है दोस्तों। तो हमारी तरफ से क्लैपिंग हम सर के लिए करना चाहेंगे, इतना अच्छा उन्होंने काम किया है। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर कभी भी आप बाहर जा रहे हैं रोड पर और आपको मंकी दिख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अरे वो तो बैठा है, लेकिन देखिए कुछ नहीं पता है मंकी का, तो इसलिए आप अपनी चीज़ों को पहले से ही सेफ करके सेफ्टी से रखिए, क्योंकि कुछ बंदर बहुत नटखट होते हैं। और यहाँ पर आपके भी संदेश आ गए हैं तो उनको भी हम जल्दी से शामिल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए रामपुर से शबनम जी का, साथ में लाइबा काजमी हैं, अफरोज फातिमा जी हैं। गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ मैम। एंड इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत सी लाइनें लिखी हैं कि कलम से लिखना ना सके दिल के अफसाने, कलम से लिख ना सके दिल के अफसाने, हम तो तुम्हें दिल से याद करते हैं, तुम्हारे दिल की खुदा जाने। अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सी लाइनें हैं आपकी मैम, थैंक यू। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया नवीन नगर मुरादाबाद से गौरव टेलर जी का। गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर, जय श्री राम। और इन्होंने भी आज की मॉर्निंग एक थॉट लिखा है बहुत ही खूबसूरत सा कि लोग और वक्त हमें जीवन में किताबों से कहीं अधिक सबक सिखा देते हैं। ये तो है सर, मानना पड़ेगा आपकी बातों को। कभी किताबें वो नहीं सिखाती हैं जो इंसान सिखा देता है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है रानी नांगल से रिहाना जी का। गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। एक और मैसेज हमें मिला है जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी जी का, ये भी अपनी फैमिली के साथ रेडियो सुन रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया, हाय दी कैसे हैं आप? अफरोज फातिमा जी हमें मैसेज पहुँचाती है, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और साथ में इनकी दोस्त भी हैं लाइबा दरक्षा, रामपुर से शबनम जी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है आसिफ जी का इटली से। एंड गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसे हैं आप? आपका प्रोग्राम हम सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरी तरफ से मैम मुझे एक ट्रैक सुनवा दीजिएगा। ओके सर, थैंक यू, आपने हमें मैसेज पहुँचाया है। ये ट्रैक सुनना चाहते हैं गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा।
तो बस मैं अभी वापस आती हूँ, लौट कर आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए और अपने संदेश पहुँचाना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ठीक है,

गुड मॉर्निंग मुरादाबाद, आप सभी का वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी, और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना। एंड दोस्तों, अब हम देते हैं आपको मौसम अपडेट। एंड उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है, और पूर्वांचल के कई इलाकों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं लखनऊ और कानपुर में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। भारी बारिश के चलते कुछ इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की परेशानी हो सकती है। ऐसे में घरों से निकलते समय मौसम का हाल जरूर देख लें और बारिश के दौरान सावधानी बरतें। तो मौसम सुहाना है, लेकिन सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। एवरीवन, और दोस्तों मुजफ्फरनगर से सामने आया एक बारिश का एक ऐसा मंजर जिसने हर किसी को भावुक कर दिया है। भारी बारिश के बाद शिव चौक पर जबरदस्त जल भराव हो गया है। इस बीच डिलीवर करने वाले भैया होते हैं ना, एंड उनके जीप से मोबाइल उनका निकल गया है, और मोबाइल करीबन उनका था 45,000 का, और वो फ़ोन पानी में गिर गया। विशाल ने फ़ोन को ढूंढने के लिए घंटों तक पानी में तलाश की, लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद भी मोबाइल नहीं मिला। आखिरकार उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। सोचिए दोस्तों, रोज़गार के लिए घर से निकलने एक इंसान के लिए हज़ारों रुपए का फ़ोन सिर्फ एक मोबाइल नहीं बल्कि उसकी मेहनत की कमाई भी है। एंड इस घटना से एक ज़रूर सीख भी मिलती है एवरीवन, कि बारिश के समय मौसम, जब आपको बताया कि बारिश के मौसम में बाहर निकलते समय अपने मोबाइल का खास ध्यान रखें। बारिश में मोबाइल को सुरक्षित रखने के मैं कुछ आसान आपको टिप्स बता रही हूँ, एंड आप उसको ध्यान से सुनिएगा और फॉलो भी करना। आप मोबाइल को हमेशा जिप लॉक या पाउच या फिर वाटरप्रूफ कवर में रखिएगा, ताकि अगर वो कहीं गिरे भी तो कोई प्रॉब्लम ना हो। बाइक या पैदल चलते समय मोबाइल को हाथ में लेकर ना चलें। जेब में रखने की बजाय ऐसी जगह रखें जहां पानी पहुंचने की संभावनाएं कम हों। तेज़ बारिश और जलभराव वाले रास्ते में मोबाइल निकालकर इस्तेमाल करने से बचें। अगर मोबाइल पानी में गिर जाए तो उसे तुरंत इस्तेमाल या फिर चार्ज करने की कोशिश ना करें। बारिश में निकलते समय ज़रूरी हो तो वाटरप्रूफ पाउच में फ़ोन के साथ ज़रूरी दस्तावेज़ और पैसे भी सुरक्षित रखें। और सबसे ज़रूरी बात, बारिश में आपकी जान और सुरक्षा की किसी भी मोबाइल से ज़्यादा कीमती नहीं है। जलभराव रास्ते में जानलेवे से बचें, और मौसम ख़राब हो तो थोड़ा रुक जाना ही समझदारी है। तो आपको लगता है एवरीवन कि कहीं अगर मौसम ख़राब है, आपको लगता है कि बारिश तेज़ होने वाली है, तो मुझे लगता है कि घर पर रहना ज़्यादा सेफ है। एंड जब बारिश रुक जाए तब आप कहीं जाइए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। और हमारे पास कुछ मैसेज भी आए हैं। यहाँ पर मैसेज हमारे पास आए हैं, खुशी मैम हर हर महादेव, आपको भी हर हर महादेव। ये मैसेज हम ना पहुँचाते हैं बबलू सैनी जी मुंबई महाराष्ट्र से आज की सुबह। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, और साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं सैयद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी। गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसे हैं आप? सर ठीक हैं, थैंक यू, आपने हमें मैसेज पहुंचाया। एंड हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं, मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग, ये मैसेज अपना पहुँचाती हैं सीमा अंसारी जी। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए हैं, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। इन्होंने नाम तो नहीं लिखा है। नैना जी का मैसेज आया है, मिल गया आपका नाम नैना, और ये एफएम रेडियो को बहुत ज़्यादा सुनती हैं, थैंक यू। तो दोस्तों अब मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं मिलूंगी आपको 3 से 5, तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान। यूँ ही मुस्कुराते रहिए, अपने अपनों के साथ रहिएगा। एंड हमारे पास यहाँ पर राम राम जी पहुँचाते हैं, जीतू जी जय श्री राम आपको भी सर। तो चलिए दोस्तों
मिलने वाले हैं हम 3 से 5 आपको। तब तक के लिए बस अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और नेक्स्ट प्रोग्राम आपके लिए हम विशेष लेकर आए हैं, उसमें आपकी हेल्थ से जुड़ी बातों के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मानसून है और इस मानसून में कैसे मतलब अपना ख्याल रखें साफ़ सफाई का, और बारिश के टाइम में क्या होता है ना, मच्छर बहुत ज़्यादा पनपते हैं, तो इस सीज़न में बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो बारिश के कारण गंदे पानी से मतलब होने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। तो उससे रिलेटेड हमारा एक खास प्रोग्राम हम प्ले करेंगे 12:30 बजे, तो सुनना ना भूलिएगा। और आप अपने फीडबैक भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। आप इस पर भी अपने आप अपने थॉट एंड आप अपने फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपके फीडबैक हमारे लिए।

0: करो।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: You are tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए।

0: सुरक्षित चलिए अपनों के लिए। ये संदेश एफ एम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम सुनते रहिए एफ एम मुरादाबाद।
1: सभी लोग ध्यान दें, आज प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर है।
2: HPV टीकाकरण शिविर लगने वाला है। उन्होंने समझाया कि ये टीका लड़कियों को आगे चलकर एक खतरनाक बीमारी सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। सावित्री देवी पहले तो थोड़ा हिचकिचाई। उन्होंने अपने पति रामलाल से बात की। रामलाल पहले तो बोले, अरे हमारी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, उसे क्या जरूरत है टीके की। लेकिन आशा दीदी ने धैर्य से समझाया, भैया यही सही समय है, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं पहले काम करता है, अगर अभी लगवा दिया तो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचाव हो जाएगा। रामलाल कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने आसपास के लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी के पास पूरी जानकारी नहीं थी, बस अफवाहें थी। तभी एक दिन उन्होंने रेडियो पर एक कार्यक्रम सुना, जिसमें मेरे जैसे ही एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समझा रहे थे कि ये टीका सुरक्षित है और क्यों जरूरी है। उस दिन के बाद रामलाल का नजरिया बदल गया। उन्होंने कहा, अगर एक छोटा सा टीका मेरी बेटी को जिंदगी भर की बीमारी से बचा सकता है तो हम क्यों पीछे रहें। अगले ही दिन सावित्री और रामलाल अपनी बेटी गुड़िया को लेकर कैंप में पहुंचे। वहां कई और लड़कियां भी आई थी। शुरुआत में गुड़िया थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन जब उसने देखा कि बाकी लड़कियां भी हिम्मत से टीका लगवा रही हैं, तो उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा मैं भी लगवाऊंगी। टीका लगने के बाद बस थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन दो दिन में सब ठीक हो गया। धीरे धीरे गाँव में और लोग भी प्रेरित हुए। सावित्री देवी अब खुद दूसरी महिलाओं को समझाने लगी। रामलाल भी पंचायत में इस विषय पर बात करने लगा। कुछ महीनों बाद बड़की टोला में एक बदलाव साफ देखने को लगा। ज्यादा लड़कियां टीका लगवा रही थी। लोग अफवाहों की जगह सही जानकारी पर भरोसा करने लगे थे। और सबसे बड़ी बात, अब बेटियों की सेहत को लेकर गंभीरता बढ़ गई थी। सावित्री देवी अक्सर कहती थी, पहले हम सोचते कि ये सब शहरों की बातें हैं, लेकिन अब समझ में आया कि हमारी बेटियों का भविष्य हमारे ही हाथ में है। ये कहानी सिर्फ सावित्री और गुड़िया की नहीं है, ये हर उस परिवार की कहानी हो सकती है जो सही समय पर सही फैसला ले।
1: अच्छा, लेकिन ये HPV नाम तो बड़ा भारी लग रहा है, जरा खुल के विस्तार में बताइएगा।
2: देखिए, HPV का मतलब है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। नाम बड़ा लग रहा है पर बात आसान है। ये एक ऐसा वायरस है जो अगर शरीर में आ जाए और समय रहते रोका ना जाए तो महिलाओं में आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय के मुंह का कैंसर पैदा कर सकता है।
1: मतलब ये सीधे सीधे जानलेवा बीमारी तक ले जा सकता है।
2: हाँ, और सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हो खुशी जी?
1: क्या सीहतिया जी, अब आप तो थोड़ा डरा ही रहे हैं।
2: डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूँ। इस बीमारी की सबसे बड़ी चालाकी यह है कि शुरू शुरू में इसका कोई लक्षण ही नहीं होता है। ना कोई दर्द, ना बुखार, ना कोई ऐसी परेशानी जिससे लगे कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है।
1: मतलब इंसान को पता ही नहीं चलता।
2: बिल्कुल, और यही वजह है कि जब तक लोगों को इसका पता चलता है तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है, बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है।
1: अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत खतरनाक बात है। तो फिर इससे बचने का कोई तरीका है या नहीं?
2: यही तो अच्छी खबर है आरजे खुशी जी। जहाँ एक तरफ इसका इलाज मुश्किल हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ इसका बचाव बहुत आसान है।
1: सच में? कैसे?
2: HPV वैक्सीन से, एक छोटा सा टीका जो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचा सकता है।
1: जरा इसे और आसान करके समझाइए ना, ताकि हमारे गांव के लोग भी इसे अच्छे से समझ सकें।
2: ठीक है, एक उदाहरण से समझिए। जब हम खेत में फसल लगाते हैं तो क्या करते हैं?
1: चारों तरफ बाड़ लगाते हैं ताकि जानवर अंदर ना घुसे।
2: बिल्कुल, ताकि फसल सुरक्षित रहे। ठीक वैसे ही ये वैक्सीन हमारे शरीर के लिए एक सुरक्षा की बाड़ की तरह काम करता है। ये वायरस को अंदर आके नुकसान करने से रोकता है।
1: ओह, मतलब कि ये बीमारी को शुरू करने से पहले ही रोक देता है।
2: हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई इलाज नहीं है कि बीमारी हो जाने के बाद काम आए, ये तो पहले से ही सुरक्षा देता है ताकि बीमारी हो ही ना पाए।
1: तो फिर ये टीका किस लिए लगवाना चाहिए, कोई खास उम्र होती है क्या?
2: हाँ, इसका सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब इसे सही उम्र में लगवाया जाए। आमतौर पर 9 से 14 साल की लड़कियों को ये टीका लगवाना सबसे अच्छा माना जाता है।
1: और अगर कोई इसे बड़ी उम्र की हो
2: तो भी चिंता की बात नहीं है, ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेकर बाद में ये टीका भी लगवाया जा सकता है, लेकिन जितना जल्दी लग जाए उतना बेहतर है।
1: सिहतिया जी, एक बात मेरे मन में भी आ रही है, ये तो लड़कियों का टीका हुआ, तो इसमें पुरुषों की क्या भूमिका होती है?
2: यही तो सबसे अहम बात है आरजे खुशी, महिलाओं की सेहत सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं होती, इसमें पूरे परिवार की, खासकर पुरुषों की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है।
1: जरा विस्तार से बताइएगा।
2: देखिए, एक पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी को सही समय पर सही जानकारी दे और उसका टीकाकरण करवाए। एक भाई का कर्तव्य है कि वो अपनी बहन को समझाए, उसे डर या अफवाहों से दूर रखे। और एक पति का फर्ज है कि वो अपनी पत्नी को सेहत का ख्याल रखे, उसे हर जरूरी सुविधा और सहयोग दे।
1: सही कहा आपने।
2: अगर घर का पुरुष ही पीछे हट जाएगा या ध्यान नहीं देगा तो आधी लड़ाई वही हारेंगे। इसलिए पुरुषों की भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: मतलब ये सिर्फ महिला स्वास्थ्य का मामला नहीं है?
2: बिल्कुल नहीं, ये पूरे परिवार का मामला है। जब एक महिला स्वस्थ रहती है तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, और जब परिवार स्वस्थ होता है तभी गांव मजबूत बनता है।
1: लेकिन सेहतिया जी, एक बात है, गांव में तो तरह तरह की बातें चलती रहती हैं। कोई कहता है कि टीका लगवाने से लड़कियां कमजोर हो जाती हैं, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आगे चलकर माँ बनने में दिक्कत होती है।
2: देखिए आरजे खुशी, यही सबसे बड़ी समस्या है, अधूरी और गलत जानकारी। ये सब जो बातें आपने सुनी है ना, ये सच नहीं है बल्कि अफवाहें।
1: मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है?
2: बिल्कुल नहीं, मैं आपको एक एक करके साफ कर देता हूँ। पहली बात, लोग कहते हैं कि टीका लगने से कमजोरी आ जाती है, जबकि सच्चाई यह है कि टीका लगने के बाद बस हल्का सा बुखार या हाथ में दर्द हो सकता है, जो एक दो दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं होती।
1: और जो लोग कहते हैं कि इससे आगे चलकर बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती है,
2: वो भी पूरी तरह गलत है। इस वैक्सीन का माँ बनने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक वायरस से बचाने के लिए होता है और कुछ नहीं।
1: और एक बात जो अक्सर लोग कहते हैं, अगर लड़की बिल्कुल ठीक है तो टीका लगवाने की क्या जरूरत?
2: यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखिए, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं बल्कि बीमारी होने से पहले काम करता है। अगर लड़की अभी स्वस्थ है तो वही सबसे सही समय है टीका लगवाने का। जैसे हम बारिश आने से पहले छाता रखते हैं, वैसे ही ये पहले से सुरक्षा देता है। जरा सोचिए आरजे खुशी, अगर एक छोटा सा टीका आपकी बेटी को एक बड़ी और जानलेवा बीमारी से बचा सकता है तो क्या हमें इंतजार करना चाहिए?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। जब बचाव इतना आसान है तो देर क्यों करें? सेहतिया जी, एक बात बताइए, क्या हमारे गांव में भी लोग इसे लगवा रहे हैं?
2: हाँ, धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं और आगे भी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लोग डर और अफवाहों के कारण पीछे हट जाते हैं। यही वजह है कि आज जैसे कैंप बहुत जरूरी है, ताकि सही जानकारी हर घर तक पहुँचे। जहाँ जानकारी नहीं पहुँचती वहाँ ऐसी कुछ रानी जैसा केस हो जाता है। उसी इलाके के पास एक और गाँव था, छोटा पूर्वा। यहाँ रहती थी कमला देवी और उनकी बेटी रानी। रानी भी गुड़िया की ही उम्र की थी, हसमुख, चंचल और पढ़ाई में अच्छी। जब गांव में HPV टीकाकरण की बात आई तो आशा दीदी यहाँ भी आई थी और लोगों को समझाने लगी। उन्होंने कमला देवी से भी कहा, बहन अपनी बेटी को टीका जरूर लगवा लेना। लेकिन कमला देवी के घर का माहौल थोड़ा अलग था, उनके पति महेंद्र इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया, ये सब नई नई बातें हैं, हमारे जमाने में कौन सा टीका लगता था, और हम तो ठीक हैं। कमला देवी भी डर गई। गांव में कुछ लोगों ने और बातें फैलाई, इससे लड़की कमजोर हो जाती है, आगे चलकर बच्चा नहीं होगा, वगैरह वगैरह। इन अफवाहों के बीच सच की आवाज दब गई। रानी ने एक दिन अपनी माँ से पूछा, अम्मा मेरी सहेली गुड़िया टीका लगवाने गई थी, मैं क्यों नहीं जा सकती? कमला देवी के पास जवाब नहीं था, उन्होंने बस इतना कहा, बेटा तुम्हारे बाबूजी मना कर रहे हैं। समय बीतता गया, बात वहीं रह गई। सालों बाद जब रानी बड़ी हुई, शादी हुई और एक दिन उसे बार बार कमजोरी और असहजता महसूस होने लगी। शुरू में सबने इसे सामान्य समझा, लेकिन जब हालात बिगड़ने लगी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद जो बताया उसने पूरे परिवार को हिला दिया। ये सर्वाइकल कैंसर का मामला है और अब ये काफी आगे बढ़ चुका है। कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें वही दिन याद आ गया जब आशा दीदी ने समझाया था, जब रानी ने खुद पूछा था। महेंद्र भी चुप हो गए, उनकी आंखों में पछतावा साफ साफ दिख रहा था। उन्होंने धीमे से कहा, अगर उस दिन हमने टीका लगवा लिया होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इलाज शुरू हुआ लेकिन अब रास्ता मुश्किल था। बार बार अस्पताल के चक्कर, बढ़ता खर्च, परिवार की चिंता और दर्द। रानी की बीमारी ने न सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं पूरे परिवार को झंकोर दिया था। आज कमला देवी हर घर जाकर एक ही बात कहती है, अफवाहों पर मत ध्यान देना, हमने अपनी गलती से बहुत बड़ा नुकसान देखा है, तुम ऐसा मत करना। उनकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन आवाज में एक विनती भी, अपनी बेटियों को बचा लो समय रहते।
1: तो जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए?
2: उन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए, आज ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं और आशा दीदी से बात करें। और अपनी बेटियों का नाम टीकाकरण के लिए दर्ज करवाएं। और सबसे जरूरी बात, जो सही जानकारी आपने आज सुनी उसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, अफवाहों को नहीं सच्चाई को फैलाएं।
1: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि HPV क्या है, ये कैसे एक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और एक छोटा सा टीका कैसे हमें बड़ी परेशानी से बचा सकता है।
2: और याद रखिए, महिलाओं की सेहत सिर्फ उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। और सही समय पर लिया एक छोटा सा फैसला जिंदगी भर का बड़ा बदलाव ला सकता है।
1: छोटी सी तैयारी, बड़ी बीमारी से बचाओ।
2: बेटी का टीका, परिवार का भविष्य सुरक्षित बनाओ।
1: तो चलिए, जाने से पहले लेते हैं सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
2: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
2: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
2: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
2: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कही।
1: तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए विषय और कुछ अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, सुनते रहिए आपके अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका सेहत से लाभ कई में एक नए एपिसोड के साथ। मैं आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई हूं और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजेरीना।
2: अरे पहले आराम से बैठ जाओ, थोड़ा पानी पी लो। मगर आरजेरीना, तुम्हारी तो दाद देनी पड़ेगी, इतनी बारिश और मुश्किल हालात में भी तुमने हमारे श्रोताओं से रूबरू होना नहीं छोड़ा।
1: यही तो हमारी सामुदायिक रेडियो की खासियत है, हम चाहे कैसे भी परिस्थिति में हो अपने श्रोताओं को कभी अकेले छोड़ते थोड़ी हैं। हम उन्हें जानकारी और सहारा देने के लिए तैयार रहते हैं।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइए आज किस मुद्दे पर चर्चा करेंगी?
1: भाभी, बस इतनी बारिश और बाढ़ का माहौल है तो क्यों ना आज बाढ़ और उससे होने वाली बीमारियों पर ही बात की जाए। बाढ़ सिर्फ पानी नहीं लाती, इसके साथ आती है कई तरह की फैलने वाली बीमारियां और साथ इन बीमारियों से बढ़ने वाले खर्चे, तो इसके लिए हमें सावधान रहना बहुत जरूरी है।
2: सही कहा अर्जरीना, बाढ़ तो खैर बाढ़ है पर बाढ़ का पानी साफ नहीं होता, इसमें नालियों का गंदा पानी, कीचड़ और तरह तरह के कीटाणु मिल जाते हैं। यही गंदा पानी जब खाने पीने की चीजों या पीने के पानी में मिल जाता है तो लोगों को बहुत सी बीमारियों की लपेट में ले लेता है। ऐसे में हैजा, टाइफाइड, पीलिया जैसी बीमारियां फैलती हैं।
1: और हाँ, जब पानी धीरे धीरे सूखता है तो जगह जगह गड्ढों में पानी जमा रहता है।
2: बिल्कुल सही कह रहे हो आप, और वहीं सबसे तेज मच्छर पनपते हैं, फिर मच्छरों से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलने लगती हैं।
1: भाभी आपने तो देखा ही होगा पिछले साल रामपुर गांव में क्या हुआ था।
2: अरे कैसे भूल सकती हूँ, वहाँ बाढ़ आई थी, नालियों का गंदा पानी, खेतों की कीचड़ सब मिलकर कुएं और हैंडपंप तक चला गया, लोग वहीं का पानी पीने लगे, बस वहीं से बीमारियां फैल गई। यही हैजा का सबसे बड़ा कारण होता है, कई लोग बीमार पड़ गए। रेशमा को गंदा पानी पीने से अचानक उल्टी, दस्त होने लगा, बच्चा इतना कमजोर हो गया कि चल भी नहीं पा रहा था। उसकी माँ बहुत घबरा गई, पहले तो सोचा कि घर पर ही इलाज कर लें, लेकिन हालात और बिगड़ गए।
1: फिर क्या किया गया भाभी?
2: रेशमा को हम तुरंत गांव के हेल्थ सेंटर ले गए, डॉक्टर साहब ने जांच की और बोले कि रेशमा को हैजा है। इस बीमारी से उसके शरीर का पानी बहुत कम हो गया था, डॉक्टर साहब ने उसे ORS का घोल पिलाया, दवा भी दी, अच्छा हुआ समय पर इलाज मिल गया, इसीलिए रेशमा जल्दी ठीक हो गई।
1: भाभी बाढ़ के समय बहुत लोगों को पेट से जुड़ी परेशानियां होने लगती हैं, जैसे दस्त, उल्टी और पेट दर्द, ऐसा क्यों होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है?
2: रीना जी, बाढ़ के दौरान पानी गंदा हो जाता है, लोग वही पानी पी लेते हैं या उसे खाना बना लेते हैं, इससे पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, दस्त, उल्टी, पेट में मरोड़, शरीर में गड़बड़ी के लक्षण हैं।
1: तो भाभी प्राथमिक सावधानी क्या होनी चाहिए?
2: बचाव के लिए साफ पानी

0: पानी पीना चाहिए, ताज़ा खाना खाएं, हाथ धोना भी बहुत जरूरी है, खासकर खाना खाने से पहले और टॉयलेट के बाद हाथ जरूर धोएं। अगर कोई ज्यादा बीमार लगे तो डॉक्टर से अवश्य दिखाएं।
1: बिल्कुल भाभी, हैजा से बचने का सबसे अच्छा तरीका है साफ पानी पीना और ताज़ा भोजन करना। वैसे आजकल गाँव में बहुत लोग बुखार से भी परेशान है। डॉक्टर साहब बोल रहे थे टाइफाइड फैल रहा है। टाइफाइड कैसे होता है?
0: टाइफाइड बुखार साल मोनिला नामक जीवाणु के कारण होता है। इसका मुख्य कारण है मल मुख मार्ग है, यानी ये संक्रमण तब फैलता है जब दूषित भोजन या पानी के माध्यम से ये जीवाणु शरीर में पहुंच जाता है। ये दूषित संक्रमण व्यक्ति या बिना लक्षण वाले वाहक के मल से होता है। गंदगी, साफ पानी की कमी, बिना धोए फल सब्जियां या सड़क का खाना खाने से ये संक्रमण आमतौर पर फैलता है, खासकर बरसात या बाढ़ के बाद ये बीमारी तेजी से है।
1: अच्छा, तो इसके लक्षण कैसे पहचाने?
0: लक्षण बड़े साफ होते हैं रीना। लगातार तेज बुखार आना, सर दर्द करना, पेट में दर्द रहना, कमजोरी लगना, भूख ना लगना और कई बार उल्टी भी हो जाती है। ये सब दिखें तो समझ लीजिए कि टाइफाइड हो सकता है।
1: और इससे बचने का क्या उपाय है?
0: इस बीमारी से बचना है तो अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। जैसे काम करके घर आने पर साबुन से हाथ धो लें, बच्चे खेल कर आए तो उनके हाथ पैर साफ करें, पानी चाहे कुएं का हो या हैंडपंप का उबाल कर ही पिएं। कई बार पानी साफ दिखता है लेकिन अंदर की गंदगी नजर नहीं आती। खाना हमेशा ढककर रखें। बाढ़ के बाद तो और ज्यादा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि हर तरफ कीटाणु फैले रहते हैं। अगर किसी को लगातार बुखार रहे, थकान लगे या पेट दर्द करे तो मरीज को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए।
1: सही कहा भाभी, दवा तो डॉक्टर देगा लेकिन समझदारी और सावधानी हमारे हाथ में है। तो सभी सुनने वाले श्रोताओं से मैं यही कहना चाहूँगी, साफ सफाई से रहने से हमारी पास भी नहीं भटकेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने रीना।
1: भाभी, बाढ़ के बाद पड़ोस के गांव में कई लोग बुखार, थकान और पेट की शिकायत लेकर अस्पताल जा रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये हेपेटाइटिस है, ये बीमारी कैसे होती है?
0: हेपेटाइटिस ए और कोई साधारण बीमारी नहीं है। ये सीधे हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाती है। गंदे पानी, दूषित भोजन में मौजूद कीटाणु शरीर में जाकर लीवर को खराब कर देते हैं। यही है हेपेटाइटिस का असली कारण।
1: तो भाभी, इसके लक्षण कैसे पहचाने?
0: अगर किसी को लगातार थकान लगे, हल्का बुखार बना रहे, पेट भारी लगे और खासकर आंखें व पेशाब पीले रंग की दिखने लगे तो समझ लीजिएगा लीवर पर असर हो रहा है। हेपेटाइटिस के साफ संकेत हैं। अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो हालात बहुत गंभीर हो सकते हैं।
1: क्या हमारे गांव में भी ऐसा कोई मामला हुआ है?
0: पास के मोहल्ले में हन्नु काका के बेटे को बाढ़ के बाद यही दिक्कत हुई। उसे बार बार बुखार आ रहा था, शरीर में कमजोरी थी, धीरे धीरे उसकी आंखें पीली पड़ गई। पहले वो मामूली बुखार समझ घर के पास इलाज कराना शुरू किया लेकिन हालात बिगड़ते गए। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तब डॉक्टर साहब ने बताया कि हन्नु को हेपेटाइटिस ए है। समय पर इलाज मिला तो बच्चा बच गया, वरना मुश्किल हो सकती थी।
1: भाभी, फिर इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए?
0: सबसे पहले तो साफ पानी पीजिए। अगर किसी में ये लक्षण दिखे तो खुद इलाज करने की गलती मत कीजिए, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। याद रखिए, देर करना जानलेवा हो सकता है।
1: भाभी, बाढ़ के बाद गांव में कई लोग बुखार और बदन दर्द की शिकायत कर रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं ये तो लेप्टोस्पायरोसिस हो सकता है। लोग इसे आसान भाषा में जंगली बुखार भी कहते हैं। ये बीमारी कैसे होती है?
0: देखिए श्रोताओं, ये बीमारी बाढ़ के गंदे पानी से फैलती है। उस पानी में जानवरों का मलमूत्र मिला होता है। अगर कोई गंदे पानी में जाता है और उसके शरीर पर कहीं भी चोट, खरोच या कटाफटा हिस्सा है तो वहीं से बीमारी अंदर चली जाती है। फिर बुखार, बदन दर्द जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं।
1: अच्छा भाभी, तो इसके लक्षण कैसे पहचाने?
0: शुरुआत में तेज बुखार आता है, सर में और मांसपेशियों में दर्द होता है, कई बार आंखें लाल हो जाती हैं। अगर समय पर इलाज ना हो तो जंगली बुखार लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचाता है।
1: इससे बचने का उपाय क्या है?
0: सबसे जरूरी है सावधानी। बाढ़ के पानी में नंगे पांव मत चलिए। अगर जाना ही पड़े तो रबड़ की चप्पल या बूट पहनकर जाएं। शरीर पर कहीं भी कटा या चोट हो तो उसे अच्छी तरह ढककर रखिए। जंगली बुखार के लक्षण दिखे तो घर पर इलाज करने की जगह डॉक्टर के पास जाइए।
1: भाभी, बाढ़ के बाद गांव में जगह जगह पानी जमा हो गया है, मच्छर बहुत बढ़ गए हैं, डर है कि कहीं डेंगू मलेरिया ना फैल जाए।
0: देखिए, जब बाढ़ का पानी गड्ढों, पुराने डिब्बों, कूलर या टंकी में जमा रह जाता है तो वहीं मच्छर अंडे दे देते हैं। ऐसे पानी में मच्छर बहुत ज्यादा पनपते हैं। डेंगू और मलेरिया दोनों बीमारियां मच्छर के काटने से ही फैलती हैं। डेंगू वाला मच्छर ज्यादातर दिन में काटता है, जबकि मलेरिया वाला मच्छर रात में काटता है। ये बीमारियां बहुत तकलीफदायक होती हैं और अगर समय पर इलाज ना मिले तो जानलेवा भी साबित हो सकती हैं।
1: ओहो, तो भाभी इसके लक्षण कैसे पहचाने?
0: डेंगू में तेज बुखार आता है, शरीर बहुत टूटता है, आँखों में दर्द होता है और कई बार खून की कमी भी हो जाती है। मलेरिया में अचानक जोर की कपकपी लगती है, फिर तेज बुखार आ जाता है, इसके बाद खूब पसीना छूटता है और मरीज बिल्कुल निडाल हो जाता है और समय पर इलाज ना मिले तो हालात और भी खराब हो सकते हैं।
1: भाभी, बचाव का सही तरीका क्या है?
0: बचाव आसान है, थोड़ी सावधानी रखनी है। घर के आसपास पानी जमा मत होने दीजिए। टंकी, गमले, कूलर सब हफ्ते में एक बार साफ कीजिए। सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए और हाँ, ढीले ढाले पूरे कपड़े पहनिए ताकि मच्छर काट ही ना पाए।
1: भाभी, बाढ़ के बाद गांव में कई लोग कहते हैं उनके शरीर पर लाल लाल चकत्ते निकल रहे हैं, खुजली हो रही है, कुछ लोगों को तो फफोले भी पड़ जाते हैं, क्या ये सब त्वचा की बीमारी है?
0: बिल्कुल ठीक, बाढ़ आती है तो कई लोग गंदे पानी में चलते हैं, उस पानी में कीचड़, नालियों का गंदा पानी और जानवरों का मलमूत्र तक मिला होता है। अब जरा सोचिए रीना जी, अगर किसी के हाथ या पैर कटा या घाव है और वो गंदे पानी में चला जाए तो कीटाणु सीधा अंदर घुस जाते हैं, वहीं से इन्फेक्शन शुरू होता है और फिर त्वचा पर तरह तरह के रोग हो जाते हैं।
1: ओहो, तो इसके लक्षण क्या क्या है भाभी?
0: शुरुआत में तो हल्की सी खुजली होती है, फिर धीरे धीरे लाल लाल दाने निकल आते हैं, अगर इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है फफोले पड़ जाते हैं, उससे पानी भी निकलने लगता है, कई बार जलन और दर्द इतना बढ़ जाता है कि आदमी चैन से बैठ ही नहीं पाता। अगर ध्यान ना दिया जाए तो इस शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल जाता है, इसीलिए लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिए।
1: तो लोग इससे कैसे बचे?
0: सबसे पहले तो जितना हो सके गंदे पानी से बचिए। अगर बाहर जाना ही पड़े तो नंगे पांव मत जाइए, रबड़ की चप्पल या बूट पहन लीजिए। अगर गलती से भीग जाए तो घर आकर साबुन से पैर धो लीजिए। यदि खुजली, लाल चकत्ते या फफोले दिखें तो घरेलू नुस्खे में वक्त मत गवाइए, डॉक्टर को दिखाइए, तभी सही इलाज होगा।
1: भाभी, बाढ़ के समय कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, क्या ये किसी बीमारी के संकेत हैं?
0: जी बिल्कुल रीना जी, बाढ़ के दौरान जब लोग एक जगह जैसे स्कूल या पंचायत भवन में इकट्ठा हो जाते हैं तो भीड़ बहुत बढ़ जाती है। अगर किसी को खांसी, जुकाम या बुखार है तो बीमारी दूसरों तक पहुंच जाती है। ऊपर से गीले कपड़े, लगातार नमी और चारों तरफ गंदगी, ये सब फेफड़ों पर बुरा असर डालती है, इसी वजह से सांस की दिक्कतें बढ़ जाती हैं और श्वसन संक्रमण फैलने लगता है।
1: इसके लक्षण क्या होते हैं भाभी?
0: देखिए, इसके लक्षण साफ होते हैं। अगर किसी को बार बार खांसी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ है, सीने में भारीपन लग रहा है या बुखार भी आ रहा है तो समझ लीजिएगा कि मामला हल्का नहीं है।
1: इसके बचने का सही तरीका क्या है?
0: सबसे पहले तो साफ सफाई रखिए, गंदे और गीले कपड़े तुरंत बदल लीजिए। जहाँ रह रहे हों वहाँ खिड़कियाँ, दरवाजे खोलकर हवा का रास्ता बनाइए। अगर भीड़ में हो तो मास्क जरूर पहने, खासकर जिनको खांसी जुखाम है। बच्चों और बुजुर्गों को गर्म कपड़ा पहनाइए। किसी को सांस लेने में जरा भी दिक्कत लगे तो तुरंत डॉक्टर को दिखा दीजिएगा।
1: भाभी, बाढ़ के समय लोग सिर्फ पानी से नहीं कई और खतरों से भी जूझते हैं। कई बार लोग जाते हैं, फिसल जाते हैं या फिर किसी जहरीले जीव के काटने से बीमार पड़ जाते हैं, ऐसे हालात में क्या करना चाहिए?
0: देखिए, बाढ़ का पानी बाहर से चाहे जितना भी शांत दिखे, अंदर से उतना ही खतरनाक होता है। इसमें गड्ढे होते हैं, टूटी हुई तारे हो सकती हैं, फिसलन होती है और तेज बहाव से आदमी गिर भी सकता है। सबसे बड़ा डर होता है कि जहरीली जीव का, जैसे सांप, बिच्छू या कीड़े मकोड़ों का, ये सब पानी के साथ बहकर घरों तक आ जाते हैं।
1: अच्छा भाभी, अगर किसी को सांप या बिच्छू काट ले तो कैसे पहचाने?
0: सांप या बिच्छू काटने की साफ साफ लक्षण दिखते हैं, जैसे काटे गए हिस्से में तेज जलन, सूजन, चक्कर आना, सांस लेने में तकलीफ होना और कई बार तो बेहोश भी हो जाती हैं। अगर सांप जहरीला है तो काटी हुई जगह नीली या काली पड़ जाती है। ऐसे हालात में एक एक मिनट बहुत कीमती होता है।
1: तो फिर भाभी ऐसे वक्त में सबसे पहले क्या करना चाहिए?
0: सबसे पहले तो घबराइए मत। घबराहट में ही लोग गलती कर बैठते हैं। काटे गए हिस्से को हिलाइए मत। हिलाने से जहर पूरे शरीर में फैल सकता है। मरीज को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया जाए। देसी इलाज, झाड़ फूंक या नीम हकीम पर समय बिल्कुल मत गवाइए। जितनी जल्दी डॉक्टर तक पहुंचेंगे उतनी ही जल्दी इलाज होगा। और हाँ, बचाव के लिए आप कुछ बातें जरूर कीजिए। जैसे बाढ़ के पानी में नंगे पांव बिल्कुल भी मत चलिए। रबड़ की चप्पल या बूट पहन लीजिए। रात को सोते वक्त दरवाजे खिड़कियां बंद रखिए। घर के कोनों और बिस्तरों के नीचे साफ सफाई कर लीजिए ताकि सांप बिच्छू ना सके।
1: दोस्तों, आपने सुना, बाढ़ सिर्फ पानी नहीं कई खतरनाक बीमारियां भी ले आती है। लेकिन अगर हम सतर्क रहे, साफ सफाई का ध्यान रखे और समय पर इलाज करवाए तो इसके खतरों से बचा जा सकता है। पर आने से पहले हम लेंगे शपथ,
0: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जाँच और टीकाकरण कराएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई। श्रोताओं, आज का हमारा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई यहीं पर समाप्त होता है। अब हमें दीजिएगा जाने की अनुमति। अगली बार फिर मिलेंगे सेहत संबंधित किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।

0: करो।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ गई और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी। दोस्तों, पिछले दो कार्यक्रमों में हमने गर्भावस्था के दौरान खून की कमी यानी अनीमिया, उसकी पहचान, जांच, IFA, MMS, पोषण और माध्यम तथा गंभीर अनीमिया में IBFCM जैसे उपचार विकल्पों के बारे में बात की थी। लेकिन आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिस पर अक्सर कम ध्यान दिया जाता है। बच्चे के जन्म के बाद माँ, क्या माँ का प्रसव के बाद कमजोर होना सामान्य है? क्या खून की कमी प्रसव के बाद भी बनी रह सकती है और इसका असर माँ और नवजात शिशु दोनों पर कैसे पड़ सकता है? इन सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं हतिया सिंह जी और साथ में टीकन देवी जी। सिहतिया सिंह जी, अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद कमजोर होना तो सामान्य बात है, क्या ये बात सही है?
1: देखिए, प्रसव के बाद शरीर को आराम और रिकवरी की जरूरत होती है, इसलिए कुछ थकान महसूस।
2: बिल्कुल, हमारे ही इलाके की शबाना की कहानी सुनिए। शबाना ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, घर में सब बहुत खुश थे, लेकिन कुछ हफ्तों बाद भी शबाना को लगातार कमजोरी रहती थी। वह जल्द ही थक जाती थी, बच्चे को गोद में लेकर ज्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती थी। घर वालों ने कहा, अभी अभी बच्चा हुआ है, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जब स्वास्थ्य कर्मी ने घर आकर हालचाल पूछा और आगे जांच की सलाह दी, तब पता चला कि उसे अनीमिया है। उसे स्वास्थ्य केंद्र से उचित सलाह मिली, परिवार ने भी उसका सहयोग किया। धीरे धीरे उसकी स्थिति बेहतर हुई और वह अपने बच्चे की देखभाल अधिक आराम से कर पाई।
0: यानी प्रसव के बाद की कमजोरी को भी गंभीरता से लेना चाहिए?
2: बिल्कुल।
0: सिहतिया जी, प्रसव के बाद अनीमिया का असर केवल माँ पर पड़ता है या बच्चे पर भी?
1: माँ और बच्चे दोनों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। अगर माँ लगातार कमजोर रहेगी तो उसकी रिकवरी प्रभावित हो सकती है।
0: और बच्चे के संदर्भ में?
1: जब माँ स्वस्थ रहती है तो वह अपने नवजात शिशु की देखभाल बेहतर तरीके से कर पाती है, इसलिए माँ का स्वास्थ्य और बच्चे का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
0: यानी स्वस्थ माँ स्वस्थ परिवार की नींव है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या प्रसव के बाद भी जांच करवानी चाहिए?
1: हाँ, अगर स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर सलाह दे या महिला में कमजोरी और अन्य लक्षण बने रहें तो जांच करवाना जरूरी है।
0: यानी प्रसव के बाद भी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क खत्म नहीं होना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं, गर्भावस्था के दौरान मिली सलाह और प्रसव के बाद की देखभाल दोनों मिलकर अच्छे स्वास्थ्य परिणाम देते हैं।
0: टीकन देवी जी, शबाना की कहानी सुनकर एक बात समझ आती है कि कई बार महिलाएं खुद भी अपनी परेशानियों को नजरअंदाज कर देती हैं।
2: बिल्कुल, प्रसव के बाद अक्सर महिला का पूरा ध्यान बच्चे पर चला जाता है। वह सोचती है कि पहले बच्चे की जरूरतें पूरी हो, अपनी तकलीफ बाद में देखेंगे, लेकिन यही सोच कई बार परेशानी बढ़ा देती है।
0: यानी माँ खुद को सबसे आखिर में रखती है?
2: जी हाँ, हमारे समाज में यह बहुत आम बात है। अगर बच्चा रो रहा हो, घर का काम हो, मेहमान आ रहे हो, तो महिला अपनी कमजोरी, चक्कर या थकान के बारे में बताने से भी हिचकिचाती है। कई बार उसे लगता है कि लोग कहेंगे कि वह शिकायत ज्यादा कर रही है।
0: लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।
2: बिल्कुल नहीं, बच्चे की देखभाल जितनी जरूरी है, माँ की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है।
0: सिहतिया सिंह जी, प्रसव के बाद महिलाओं के जीवन में बहुत बदलाव आते हैं, क्या यह भी उसकी सेहत को प्रभावित कर सकता है?
1: बिल्कुल, बच्चे के जन्म के बाद महिला की दिनचर्या पूरी तरह बदल जाती है। रात में कई बार उठना पड़ता है, आराम कम हो जाता है, शरीर प्रसव से उबर रहा होता है और साथ ही नवजात शिशु की देखभाल की जिम्मेदारी भी होती है।
0: यानी ये समय केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
1: बिल्कुल, इसलिए इस समय परिवार का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर महिलाओं को आराम का समय मिले, उनकी बात सुनी जाए और उसकी जरूरतों का ध्यान रखा जाए तो उसकी रिकवरी बेहतर हो सकती है।
0: टीकन देवी जी, क्या परिवार कभी अनजाने में ऐसी बातें कह देता है जिसे महिलाएं अपनी परेशानी बताने से बचने लगती हैं?
2: ऐसा अक्सर होता है, जैसे कोई कहता है हमारे समय में भी ऐसा ही होता था, थोड़ी कमजोरी तो सामान्य है, इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। सुनने में ये बातें सामान्य लगती है, लेकिन इससे महिला अपनी समस्या बताना बंद कर सकती है।
0: यानी उसकी बातें सुनना भी देखभाल हिस्सा है?
2: बिल्कुल, अगर महिला बार बार कह रही है कि उसे कमजोरी महसूस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, या वह पहले जैसा महसूस नहीं कर पा रही है, तो उसकी बात को गंभीरता से सुनना चाहिए।
0: सिहतिया सिंह जी, क्या प्रसव के बाद स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क बनाए रखना जरूरी है?
1: बिल्कुल, कई लोग सोचते हैं कि बच्चे का जन्म हो गया, अब स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतें खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रसव के बाद भी स्वास्थ्य कर्मी की सलाह, घर पे मुलाकात और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क बहुत महत्वपूर्ण है।
0: यानी माँ की देखभाल की कहानी प्रसव पर खत्म नहीं होती?
1: बिल्कुल नहीं, वास्तव में प्रसव के बाद का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना गर्भावस्था का समय।
2: और मैं सभी परिवारों से कहना चाहूंगी कि जब घर में नया बच्चा आता है तो केवल बच्चों की खुशियां मत मनाइए, उस माँ का भी ध्यान रखिए जिसने उसे जन्म दिया। उसकी सेहत, उसका आराम और उसकी जरूरतें भी परिवार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
0: सचमुच स्वस्थ माँ ही नवजात शिशु को सबसे अच्छा सहारा दे सकती है। टिकन देवी जी, इस समय परिवार की भूमिका क्या होती है?
2: बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार पूरा ध्यान बच्चे पर चला जाता है और माँ की जरूरतें पीछे छूट जाती हैं। लेकिन परिवार को याद रखना चाहिए कि माँ की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है।
0: परिवार क्या कर सकता है?
2: सबसे पहले तो माँ को पर्याप्त आराम मिले, इनका ध्यान रखे। दूसरा, उसे समय पर पौष्टिक भोजन मिले। तीसरा, अगर स्वास्थ्य केंद्र जाने की जरूरत हो तो परिवार उसका साथ दे। चौथा, अगर कोई दवा या पूरक खुराक दी गई हो तो उसे नियमित रूप से लेने में मदद करे। और सबसे जरूरी बात, उसकी कमजोरी या परेशानी को नजरअंदाज ना करे।
0: बहुत महत्वपूर्ण बात। सिहतिया सिंह जी, पिछले कार्यक्रम में हमने IFA, MMS और IBFCM के बारे में बात की थी। क्या प्रसव के बाद भी डॉक्टर की सलाह का पालन करना जरूरी है?
1: बिल्कुल, हर महिला की स्थिति अलग होती है, इसलिए आगे देखभाल, दवाओं या पूरक खुराक के बारे में वही सलाह माननी चाहिए जो स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर दे।
0: यानी अपने मन से दवा बंद या शुरू नहीं करनी चाहिए।
1: बिल्कुल सही, स्वास्थ्य केंद्र की सलाह सबसे महत्वपूर्ण है।
0: दोस्तों, आज की चर्चा से एक बात तो साफ हुई कि बच्चे के जन्म के बाद माँ की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके स्वास्थ्य को पीछे छोड़ दिया जाए।
2: अगर प्रसव के बाद भी कमजोरी बनी हुई है, चक्कर आते हैं या शरीर पहले जैसा नहीं लग रहा हो तो इसे सामान्य मानकर टालिए मत।
1: समय पर जांच, सही सलाह और उचित देखभाल से माँ की रिकवरी बेहतर हो सकती है, और जब माँ स्वस्थ होगी तो बच्चे की देख भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे।
0: तो चलते चलते कार्यक्रम की चार महत्वपूर्ण बातें याद रखिए दोस्तों। पहली बात, प्रसव के बाद भी खून की कमी बनी रह सकती है। दूसरी बात, लगातार कमजोरी या चक्कर को नजरअंदाज ना करें। तीसरी बात, जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच जरूर करवाएं। चौथी बात, माँ को पौष्टिक भोजन, आराम और परिवार का पूरा सहयोग दें।
2: माँ की सेहत पर ध्यान देना, बच्चे के भविष्य पर ध्यान देना
1: और समय पर पहचान तथा उचित देखभाल माँ और बच्चे दोनों के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणाम ला सकती है।
0: इस संदेश के साथ आज के कार्यक्रम में मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम से मुझे दीजिए अनुमति। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए और जागरूक रहिए।
3: यार, सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे, सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार्क मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
5: एक बार फिर से दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे RJ आनंद को, और मेरे साथ इस प्रोग्राम में है हमारी प्यारी दोस्त RJ रीना। श्रोताओं, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ, ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, अलग अलग विषयों पर हम बात करते हैं, ताकि हमारे समाज में और हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है वो अपनी सोच बदल सके। क्योंकि देखिए, जब उनकी सोच बदलेगी तो अपने आप ही समाज और देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा और हमारा देश और भी खूबसूरत बनेगा। क्यों आरजे रीना, स्वागत है आपका प्रोग्राम में।
6: बढ़िया,
2: मैं तो बहुत बढ़िया हूँ आनंद, तुम बताओ तुम कैसे हो इस गर्मी में? इतनी ज्यादा गर्मी है यार कि पूछो मत।
5: ऊपर से लाइट जो है बार बार भागे जा रही है, तो यही कहने वाली थी।
2: हाँ यही कहने वाली थी मैं।
5: इसकी और मेरे विचार इसलिए मैच कर रहे हैं क्योंकि रात को मच्छर और पसीना दोनों ही परेशान कर रहे हैं। ये ऊपर से एसी में चली आती है और मैं ऊपर से नीचे खुले चौड़े में चला सड़कों पे, रातों रात परेशान हो रहे हैं ना।
2: बिल्कुल सही।
5: और दोपहर में भी बहुत तेज गर्मी है श्रोताओं, इस वक्त देखिए दोपहर हो रही है और चिलचिलाती तगड़ी धूप है। हम कोशिश यही करेंगे कि हम तो स्टूडियो के अंदर ही रहें, लेकिन आपसे भी गुजारिश करेंगे कि इस धूप में बाहर ना ही निकलो तो अच्छा है।
2: और स्टूडियो में है ना तभी राहत मिल रही है, सच बताओ। बाहर जाके तो ऐसा लग रहा है कि भाई क्यों ही आ गए बाहर, इतनी गर्मी मिर्ची वाली धूप लग रही है।
5: करेक्ट। और इस गर्मी में अपना ख्याल रखिए, अपने बार का ख्याल रखिए। खैर दोस्तों, आज सोच बदलो में हम एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही प्यारा है। आज का हमारा विषय है पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी, जो कि बहुत जरूरी और बहुत ही अहम मुद्दा है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत जरूरी है आज, और इसीलिए मैं और रीना ये टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। कभी सोचा है गर्मी हर साल सालों साल क्यों बढ़ती जा रही है, बारिश का मौसम क्यों बदल रहा है और पेड़ क्यों कम होते जा रहे हैं? दोस्तों आज का हमारा विषय ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी है और आज की

0: तो आज की कहानी की जो शुरुआत है वो रीना करेगी, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम सोच बदलो में। एक गीत आपने सुना, उसके बाद अब कहानी सुनेंगे आप रीना के साथ और आनंद के साथ। जी रीना।
1: हाँ, तो मैं बताना चाहती हूँ, एक छोटा सा गांव था
0: जी,
1: नाम था हरियापुर। पहले यहाँ गांव बहुत खूबसूरत था, चारों तरफ पेड़, साफ नदी और ठंडी हवा। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने पेड़ काटने शुरू कर दिए, प्लास्टिक हर जगह फेंकी जाने लगी और नदियां सूख गई। कुछ साल बाद हालत ऐसी हो गई, गर्मी में पानी भी कम पड़ने लगा। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। सो आगे की कहानी अब आरजे आनंद आपको बताएंगे।
0: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम आनंद के साथ। श्रोताओं, यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। दोस्तों, उसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था, उसका नाम आरव था। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी पहले इस गांव में कितनी ठंडक थी और बहुत ही हरा भरा था, लेकिन अब इतना गर्म क्यों हो गया है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा क्योंकि पहले लोग प्रकृति को माँ मानते थे, जो हमारी प्रकृति थी उसे लोग पूछते थे, उसे माँ मानते थे, लेकिन अब लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं। आरव को यह बात दिल से लग गई। दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्या हम भी कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या हम पानी बेवजह बहाते हैं? क्या हम प्लास्टिक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो सोच बदलने का समय आ गया है।
1: अगले दिन आरव ने अपने स्कूल में एक छोटा सा अभियान शुरू किया। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम सब मिलकर हर साल सिर्फ एक पेड़ भी लगाए तो हमारा गांव फिर से हरा भरा हो सकता है। धीरे धीरे बच्चे जुड़ने लगे, फिर शिक्षक भी जुड़ने लगे, फिर पूरा गांव एक साथ देने लगा।
0: क्या बात है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही करके जो है ये गांव ने पूरा एक दूसरे का साथ दिया। और दोस्तों, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम सब कर सकते हैं। इस कहानी का मतलब सोच बदलो में सिर्फ इतना सही है कि आजकल जो हमारी प्रकृति से हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो तभी बंद होगी, तभी रुकेगी, तभी थमेगी जब हम लोग अपनी सोच को बदलेंगे। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और हर में एक जिम्मेदारी ले कि हम मतलब हर दिन एक पेड़ लगाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और पेड़ लगाने के साथ साथ उसको अच्छे से पानी भी दें, उसकी देखरेख भी करें, उसका ख्याल भी रखें। श्रोताओं, कुछ चीजें हैं जो हम और आप मिलकर कर सकते हैं तो शायद हम हमारी प्रकृति को हम अच्छे से बचा सकें। जैसे साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। हालांकि रीना ने तो रोज ही बोला है, अगर ये पॉसिबल हो तो बहुत अच्छी बात है। पानी की बर्बादी कम कीजिए, जितना हो सकता है उतना ही पानी का इस्तेमाल करें। अक्सर खाना बनाते समय घर की लेडीज की टंकी खुली छोड़ देती है, ब्रश करते टाइम हम भी पानी की टंकी को खुला छोड़ देते हैं, वो बेहतर रहता है। कई बार हम वॉशरूम नहाने जाते हैं, पानी भर चुका होता है, उसके बाद भी पानी बहता रहता है। तो ये चीजें अगर हम कम कर देंगे तो शायद हमारी प्रकृति पहले की जैसी खूबसूरत और सुंदर हो जाए। अपना कंट्रीब्यूशन देना बहुत जरूरी है। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कीजिए, जितना हो सकता है आप कम से कम इस्तेमाल कीजिए। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप सब्जियां लेने जा रहे हैं, आप बाजार जा रहे हैं, तो घर के बने थैलों का इस्तेमाल कीजिए। प्लास्टिक का जितना आप कम इस्तेमाल करेंगे, जितना कम यूज में लाएंगे,

0: उतना ही हमारी प्रकृति को हम सुंदर बना पाएंगे। कचरे को सही जगह डाली, आजकल तो खैर वो हरा गीला और सूखा डब्बा चल गया है ना रीना। हाँ, तो उसमें आप जो है कचरा डालिए, ब्लू एंड ग्रीन कलर के बॉक्स होते हैं लगे हुए नगर निगम की तरफ से, बहुत ही खूबसूरत पहल है।
1: एक कचड़े में मतलब जो गीला डालते हैं और एक दूसरा सूखा कचरा डालते हैं,
0: तो बस सूखे में सूखा डालें, गीले में गीला डालें। और ये डस्टबिन का जो इस्तेमाल बताया गया है वो मेरे आपके हम सभी के लिए है। अगर हम इनका सही से इस्तेमाल करेंगे तो ऑफकोर्स हमारी प्रकृति को और भी खूबसूरत और सुंदर लगेगी। यकीन मानिए दोस्तों, छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। जरूरत है सही समय पर सही सोच बदलने की। आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, 2 साल के बाद हरियापुर गांव में फिर से वो गांव हरा भरा लगने लगा, नदियां साफ होने लगी, हवा ठंडी लगने लगी और गांव के लोगों को समझ भी आ गया कि अब हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो प्रकृति भी हमारा ध्यान रखेगी। और बहुत जरूरी है श्रोताओं, ये कहानी नहीं है, एक्चुअली एक जेन्युइन थॉट है। और मुझे भी लगता है रीना, जब हम अपने आसपास प्रकृति का, अपने नेचर का ध्यान रखते हैं तो वो भी ध्यान रखता है। शुद्ध हवा हमें मिलती है, समय समय पे हमें फल, ताजे सब्जियां, दालें, सब कुछ हमें मिलता है, प्रकृति से तो मिलता है।
1: लेकिन वो तभी मिलेगी ना जब हम उसकी रक्षा करेंगे।
0: हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। तो उसकी रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है रीना?
1: वो हमारी जिम्मेदारी
0: है, बिल्कुल। जैसे रीना ने कहा, आप डेली एक पेड़ लगा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है तो आप हफ्ते में एक बार पेड़ लगाइए।
1: हाँ, बिल्कुल लगाइए, लेकिन जरूर लगाइए।
0: अगर आप नहीं लगा पा रहे तो जो लगे हुए हैं आपके आसपास पार्क में, किसी खुले एरिया में, आप उनको पानी दीजिए, आप उनका ध्यान रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। वो जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा वो आपको ब्लेसिंग्स भी देगा, वो मुस्कुराएगा भी और आप भी बहुत खुश होंगे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा। क्यों?
1: पहले के टाइम में तुम्हें देखा है कि हर घर के पास में एक पेड़ जरूर होता था,
0: बिल्कुल।
1: वरना फिर आप बाहर चले जाओ, सड़कों पर चले जाओ, पेड़ आपको मतलब पहले दिखते ही थे। लेकिन अब क्या है कि हम पेड़ों को काट रहे हैं, घर बना रहे हैं, वहां पर अच्छी अच्छी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, जिसके वजह से पेड़ तो कम हो गए लेकिन जनसंख्या यानी कि घर की तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज्यादा है। तो आपसे यही गुजारिश करना चाहेंगे, इस शो का मकसद यही है कि हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रखें, पेड़ लगाएं ज्यादा से ज्यादा, पानी के जो वेस्टेज है वो कम करें। पहले के टाइम में होता था कि लोग कुएं से पानी भरते थे, नल से पानी भरते थे और उसी उतना ही पानी यूज करते थे जितना उनको नीड होती थी, लेकिन अब हम उससे ज्यादा बहाते रहते हैं पानी।
0: बिल्कुल सही कहा, तो पानी वेस्ट मत कीजिए। फिलहाल अभी एक काम करते हैं, छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद में और रीना मिलेंगे। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम सोच बदलो रीना और आनंद के साथ, और ये प्रसारित होता है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ से। तो श्रोताओं, मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल गीत के बाद।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से श्रोताओं, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं आप। और इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना फेवरेट सोच बदलो, जिसमें मैं और रीना आज एक कहानी के जरिए आपको समझा रहे हैं कि हमारी प्रकृति का ध्यान रखना कितना जरूरी है। आजकल तुम देखते हो रीना, बिना मौसम के बरसात हो जाती है। इवन अभी भी आप यकीन मानना, थोड़े टाइम पहले हमें लग रहा था कि गर्मियां आ गई, लेकिन उसमें ठंड आ रही थी। लोगों ने गर्म कपड़े बाहर निकाल लिए थे बारिश की वजह से भी, और थोड़ी ठंड भी, मतलब बेमौसम की ठंड हो रही थी। तो जिससे हमें लग रहा था कि हाँ भाई, जो प्रकृति है वो कहीं ना कहीं हमसे नाराज है। वो हमें दिखा रही है, बता रही है, जता रही है कि भैया जागो, नहीं तो फिर आगे आपको ऐसी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो।
1: वो इसीलिए ना कि हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं,
0: बिल्कुल बेवजह पेड़ काट देते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता, लगाने की कम और काटने की ज्यादा कोशिश की जाती है।
1: जबकि पेड़ तो कुछ भी नहीं मांगता है, बल्कि आपको वो फल देता है, सब्जियां देता है, ताजी हवा। बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे आनंद, गर्मी के टाइम में अगर पहले की बात करूं तो पहले क्या होता था कि पेड़ इतने ज्यादा होते थे ना कि जिनको भी अगर गर्मी लगती तो वो पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाते थे। पूरा गांव मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था वहां पर, एक दूसरे से बातें भी करते रहते थे और दिन यूं ही गुजर जाता था। लेकिन अब क्या है, हम पेड़ काट रहे तो उसके नीचे बैठ भी नहीं पाते हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही है ये। और श्रोताओं, हम तो सिर्फ इतना से कहना चाहते हैं सोच बदलो के माध्यम से कि आप भी प्लीज अपनी सोच बदलिए, निरंतर प्रयास कीजिए कि अपने प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ न करके उसका ख्याल रखें। अगर आप किसी पार्क में जा रहे हैं, किसी खुले एरिया में जा रहे हैं जहां पर खूबसूरत ग्रीनरी है, तो उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है। उसे गंदगी से ना भर के उसकी साफ सफाई का ख्याल रखें। अक्सर हम अपनी परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो हम वहीं पे कुछ भी खा रहे होते हैं, प्लास्टिक की चीजें वहीं छोड़ के आ जाते हैं, चिप्स खाया बच्चे ने पैकेट वहीं फेंक दिया, तो उससे आसपास की गंदगी जो है ना वो बढ़ रही है, कम हो रही है। और उसका जो जिम्मेदार है वो कौन है? आम इंसान ही उसका जिम्मेदार है, यानी कि मैं और आप ही। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ताकि वो साफ और स्वच्छ बना रहे? मैं और आप ही तो लेंगे। तो बस इन बातों का जरा ख्याल रखिए और बच्चों को डिसिप्लिन में रहें। कहीं बाहर जा रहे हैं जहां पर आपको और उनको पता है कि यहां गंदगी नहीं करनी है तो वहां नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, इनका ख्याल अगर आप रखेंगे, आपका परिवार के लोग रखेंगे, हम रखेंगे, तो सोच भी बदलेगी, समाज भी बदलेगा और खूबसूरती जो प्रकृति की वो और बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल क्या होता है ना कि हम कचरा भी अपने बगल में ही सरका देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप कचरा वहां पर देखेंगे कि कचरे के ढेर लग जाती है, फिर वो सड़ने लग जाता है और जो उसे दूषित हवाएं आती है उसे हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। इसीलिए कचरे को भी एक अच्छी जगह रखिए ताकि वहां पर जो जहां सब कचरे डालते हो।
0: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा है। इसीलिए जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था श्रोताओं की, जो डस्टबिन है उसी में आप कचरा डालें। चलिए श्रोताओं, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: म्यूजिकल ब्रेक के बाद वेलकम बैक है। मैं और रीना आपके साथ बने हुए हैं प्रोग्राम सोच बदलो में। कहानी के जरिए बता रहे थे कि कितना जरूरी है अपने पर्यावरण का ख्याल रखना, अपने प्रकृति का ख्याल रखना। और श्रोताओं कहते हैं कि हम अक्सर यही सोचते हैं और हमारी सोच भी बन गई है कि दुनिया बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच तो यह है रीना, दुनिया बदलने के लिए ना बस एक छोटी सी सोच बदलनी पड़ती है।
1: करेक्ट, सही कहा तुमने कि सोच बदलते हैं तभी दुनिया अपने आप बदल जाएगी।
0: करेक्ट, तो अपनी दुनिया को बदलना है अगर आपने तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी लेकर आइए और एक कंटिन्यूटी में एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए। और दोस्तों, यह धरती हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, यह हमारे बच्चों से उधार मिली है। श्रोताओं, अगर आज हम इसका ध्यान रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी साफ हवा और साफ पानी पा सकेगी। तो आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ आज के दिन, आज के इस खास टॉपिक पे, इस खास फुल सेशन में, कि देखिए आप जो है ना अपनी प्रकृति का अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो अपना कंट्रीब्यूट देना शुरू कीजिए। जब आप अपना कंट्रीब्यूट देंगे, छोटी छोटी चीजों को अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे तो हमारा पर्यावरण और हमारी प्रकृति दोनों ही खूबसूरत बनेंगे। और जब ये खूबसूरत होंगी तो हमारा समाज भी स्वस्थ होगा, खूबसूरत होगा और मस्त होगा। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने।
0: और मुझे लगता है कि दोस्तों अपनी सोच को बदलने के साथ साथ ना, मेरा सिर्फ एक छोटा सा और आपके लिए सजेशन रहेगा कि आजकल ना गर्मियां हो रही है, गर्मियों में हम क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं हम दो बार नहाएं, हम चार बार नहाएं। नहाना कंपलसरी है, लेकिन आप बार बार अगर नहाएंगे तो उससे हमारा पानी भी वेस्ट होगा। पानी वेस्ट मतलब हम प्रकृति के साथ फिर से छेड़छाड़ पर आ गए, क्योंकि हमें लगता है यार हमें खुद को ठंडक प्रदान करनी है तो हम नहा लेते हैं। तो तुम्हारा क्या मानना है रीना, क्या हम दो बार नहा के पानी वेस्ट नहीं कर रहे हैं? चलो दो बार नहाना तो छोड़ो, नहाना जरूरी है, लेकिन हम बड़ी बड़ी गाड़ियां धोने लग जाते हैं अपनी पानी के से।
1: हाँ,
0: उसमें कितना पानी वेस्ट करते हैं।
1: और ऊपर से एक बात की जाए, हम घर को ऐसे धोने लग जाते भैया जैसे नदी बहा देते हैं।
0: हाँ, ये
1: घर को साफ कर, आई नो कि आप देखिए घर में झाड़ू पोछा लगा सकते हैं, वो ठीक है, उसमें कम पानी वेस्ट होता है पोछा लगाते तो, लेकिन हम धोने लग जाते ऊपर से सड़कों को उतना रगड़ रगड़ के धोने लग जाते, पानी ऐसे बहा देते जैसे भैया पता नहीं क्या, कितने टाइम से गंदा है सड़क। तो ऐसा नहीं करना है हमें, पानी को अगर आप सेफ रखेंगे तभी आप भी सेफ रहेंगे। और वही कहते हैं ना, जल बचाओ तो कल काम आएगा ये।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। देखिए सड़कों को धोना, मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे आसपास में जो हम कई बार क्या करते हैं ना कि बहुत ज्यादा वेस्टेज कर देते हैं। शर्मा जी सामने सुबह सुबह टंकी खोल के खड़े हैं, बतिया रहे हैं वर्मा जी के साथ, पानी बर्बाद हो रहा है, तो वो नहीं करना है आपने, है ना शर्मा जी? अगर आप सुबह सुबह साफ सफाई कर रहे हैं तो जरा वर्मा जी थोड़ी देर के बाद बतिया लीजिएगा, पहले सफाइयां कर लो, उससे पानी वेस्ट नहीं होगा, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी सही जगह पर लगेगा और आप सही जगह पर काम कर रहे होंगे। क्योंकि कई बार हम बातूनी के चक्कर में अपना पानी की बर्बादी कर देते हैं, है ना? और अगर आप कहीं आसपास निकल रहे हैं अभी गर्मियों के इस टाइम में और आपको कहीं पानी की टंकी खुली नजर आए तो प्रयास करें कि वो बंद कर दें।
1: बंद करें बिल्कुल, है ना? ये ना सोचे कि कोई और आके बंद करेगा, बल्कि आप ही करिए।
0: या मुझे बहुत जल्दी है, एक मिनट एक सेकंड भी नहीं लगेगा, आप अगर वहां जाओगे पानी का बंद कर दोगे टंकी तो शायद वो पानी कल आपके और मेरे फ्यूचर के लिए काम आ सकता है। क्यों?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल आपको भी पता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी में हम कूलर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते भी हैं ताकि गर्मी से हमें राहत मिले,
0: उसके अंदर पानी डालते हैं।
1: हाँ। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो आप कूलर में पानी डालते हैं उसको फेंके ना, उस पानी को बल्कि गमले में डालिए ताकि गमलों को भी पानी मिलता रहे, वो भी स्वस्थ रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और पेड़ पौधों को, और ये बड़ा अच्छा बोला रीना ने, पानी को यूटिलाइज कीजिए। बेसिकली क्या होता है ना, जब हम अपने छतों पे यानी कि टेरेस पे हम पक्षियों के लिए पानी भर के रखते हैं ना छोटे छोटे बॉल्स में, उनको चेंज करना जरूरी है, पानी जमा मत होने दीजिए। और अगर कूलर में आपका पानी है आप उसको चेंज करो बट उसको फेंको मत, उसी पानी को अगर आप किसी अच्छे से बर्तन में निकाल के उसी पानी को आप अपने गमलों में प्लांट्स में यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके इन दिनों में क्या होता है ना, हमारी छत की टैंक भी बड़ी गर्म हो जाती है और हम जो पानी चलाते हैं तो गर्म निकलता है एकदम आग की तरह, फिर हम उस पानी को थोड़ी देर बाहर रहते हैं ताकि ठंडा आए, है ना, इस चक्कर में ही पानी
1: वेस्ट होता
0: है। तो वो वाला पानी को आप बहाना नहीं है, उस पानी को भी आप सेव करें और सेव करने के बाद जो है उसे अपने प्लांट में यूज करें या उसको दो घंटे बाद आप इस्तेमाल करेंगे तो वही पानी आपको ठंडा
1: हो जाता है। बिल्कुल सही,
0: बहुत ज्यादा चिल तो नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा।
1: बिल्कुल सही।
0: तो श्रोताओं, छोटी छोटी चीजें करके आप अपनी सोच को भी बदल सकते हैं और अपने आसपास की प्रकृति को और पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। फिलहाल बचाना पड़ेगा हमें, अभी हमें और रीना को एक छोटा सा क्या म्यूजिकल वाला ब्रेक आ रहा है, तो हमें बचानी पड़ेगी अपनी एनर्जी ताकि हम दोबारा आके आपसे फिर से बातचीत कर सकें। तो चलो एक छोटा सा गीत, उसके बाद आते हैं।

वेलकम बैक एक बार फिर से। यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। रीना और आनंद आपका साथ दे रहे हैं और आज हमने ढेर सारी बात करी। साफ पानी कितना जरूरी है, साफ हवा, शुद्ध हवा का होना कितना जरूरी है, पेड़ों को बचाना कितना जरूरी है। अगर हम इन सबका ख्याल रखेंगे तो हमारी प्रकृति और भी सुंदर और खूबसूरत लगेगी। कहानी भी हमने सुनाई इस प्रोग्राम के जरिए और अब हमारा जाने का भी समय हो गया है। पता नहीं चल रहा है ना रीना कितनी तेजी से समय निकला, लेकिन जाते जाते हमारी प्रकृति हमें क्या क्या देती है एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। शुद्ध हवा, साफ पानी और हरियाली। लेकिन जरा सोचिए अगर हमारी हवा ही गंदी हो जाए, अगर हमें ताजी हवा मिलना ही बंद हो जाए तो क्या होगा।

0: लेना भी मुश्किल हो जाएगा श्रोताओं, बीमारियां बढ़ने लगेंगी और जिंदगी का सुकून कहीं जैसे खो सा जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी प्रकृति की रक्षा करें, पेड़ लगाएं, प्रदूषण कम करें और पर्यावरण को साफ रखें। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, अगर प्रकृति सुरक्षित है तो हमारी जिंदगी भी सुरक्षित है। तो आइए मिलकर आज हम सब एक छोटा सा कदम उठाएं और अपनी सोच को बदलें और अपने आसपास की चीजों का जरा खास तौर पर ख्याल रखें। स्पेशली पेड़ को लगाने के साथ साथ उसका देख रेख भी उसकी रखनी बहुत जरूरी है, उसका सही ख्याल रखना भी जरूरी है। बाकी पॉल्यूशन कम करने के लिए अपनी गाड़ियों को जरा कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपकी गाड़ी से जो धुआं निकलता है ना, वो भी प्रदूषण फैलाता है और हमारे आसपास की प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्यों?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी की वजह से जो पर्यावरण में ये जो दिक्कतें आ रही है, हवा की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो सिर्फ गाड़ियों की वजह से ही तो हो रही है।
0: ये तो आपने सही कहा। तो दोस्तों, आज का सोच बदलो कार्यक्रम हमने पर्यावरण बचाने की इसमें बात करी और अब हमें जाना पड़ेगा, हमारा जाने का समय हो गया है। और आज हमने जाना इस प्रोग्राम में पेड़, पानी और हवा से हमने जुड़ी हुई तमाम सारी बातें करी। तो बस जाते जाते इतना ही कहेंगे, पानी की बर्बादी को रोकिए, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल कीजिए और हर साल कम से कम कुछ पेड़ तो आप जरूर लगाइए। तुम क्या कहोगी रीना जाते जाते?
1: मैं तो यही कहूंगी, आप मतलब हफ्ते में एक पेड़ नहीं लगा सकते तो महीने में कम से कम एटलीस्ट दो पेड़ जरूर लगाइए।
0: करेक्ट, सही कहा आपने। और अब तो पेड़ों का सीजन भी आने वाला है और इस भीषण गर्मी से जरा अपना ख्याल रखिए, खुद को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, जितना हो सकता है तरल पदार्थों का सेवन कीजिए।
1: पानी तो देखिए हमेशा पीते रहिए अपने पास, अब बाहर भी जा रहे हैं ना तो जैसे हम फोन को नहीं भूलते वैसे पानी की बोतल भी आपने नहीं भूलना है, अपने साथ लेकर जाना है।
0: एग्जैक्टली, डिहाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि आप पानी के भी अलग अलग फ्लेवर बना के रखें। आप पानी के अंदर कुछ लेमन्स के स्लाइस डाल सकते हैं, आप उसमें खीरे के कुछ स्लाइस डाल सकते हैं, वो एक वाटर आप तैयार कर सकते हैं। कुछ पुदीने की पत्तियां आप डालेंगे तो वो पानी और भी ज्यादा फ्रेश हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने फ्लेवर को चेंज कीजिए और पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि नारियल पानी का इंटेक भी आप ज्यादा से ज्यादा अपनी रूटीन में शामिल करें। अभी के लिए मैं और रीना लेंगे आपसे इजाजत, छोड़ के जाएंगे कुछ और खूबसूरत गीत के साथ, फिर आपकी और मेरी मुलाकात होगी जल्दी और रीना के साथ इसी प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है सोच बदलो। याद रखिए श्रोताओं, अगर आपकी सोच बदलेगी तो चीजें हमारी और आपकी अपने आप ही बदल जाएंगी। ऐसे ही बातों के लिए प्लीज सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6,
1: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
0: बिल्कुल जी, बाय बाय, टेक केयर,
1: बाय।

मुरादाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

0: विजिट करो।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: पूर्वोत्तर को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस क्षेत्र में पर्यटन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। इसरो ने श्रीहरिकोटा से नई पीढ़ी के नौवहन उपग्रह NVS-1 का प्रक्षेपण किया। गृहमंत्री अमित शाह आज से चार दिन की मणिपुर यात्रा पर। कंबोडिया नरेश नोरोडोम सिहामोनी तीन दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। भारत का सतलुज जल विद्युत निगम नेपाल में दूसरी जल विद्युत परियोजना अरुण 4 शुरू करेगा। आकाशवाणी देहरादून आज शाम से गढ़वाली में और 1 जून से कुमाऊनी भाषा में समाचार प्रसारित करेगा। और IPL क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला। दोपहर समाचार के साथ मैं रवि कपूर।
1: नमी और सीलन से परेशान, बर्जर XP के साथ सुरक्षा भी सुधार भी। दरारों को जड़ से सील करे, रखे उन्हें सूखी और सुरक्षित, न दाग न नुकसान, बस साफ दीवारें, हर मौसम में बेदाग दीवारें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली ट्रेन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने असम और पश्चिम बंगाल के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए है, जिससे रोजगार सशक्तिकरण, जीवन की गुणवत्ता में सुधार सहित विभिन्न प्रकार के अवसर पैदा होंगे। श्री मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचे का विकास सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की सच्ची अभिव्यक्ति है।
2: यही इंफ्रास्ट्रक्चर तो रोजगार के अवसर बनाता है, यही इंफ्रास्ट्रक्चर तेज विकास का आधार है, यही इंफ्रास्ट्रक्चर गरीब दलित पिछड़े आदिवासी ऐसे हर वंचित को सशक्त करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सबके लिए है, समान रूप से है, बिना भेदभाव के है, और इसलिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण भी एक तरह से सच्चा सामाजिक न्याय है, सच्चा सेक्युलरिज्म है।
0: श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि संपर्क सुविधा के नए माध्यम से असम और पश्चिम बंगाल के बीच सदियों पुराने संबंधों को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे न केवल असम और पश्चिम बंगाल बल्कि मेघालय और अरुणाचल प्रदेश को भी इसका लाभ मिलेगा।
2: पहला, आज नॉर्थ ईस्ट को अपनी पहली मेड इन इंडिया वंदे भारत एक्सप्रेस मिल रही है। दूसरा, ये पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है। दूसरा, असम और मेघालय के लगभग 425 किलोमीटर ट्रैक पर बिजलीकरण का काम पूरा हो गया है। तीसरा, लामडिंग में नवनिर्मित डेमू मेमू शेड का भी आज लोकार्पण हुआ है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने असम के लुमडिंग में नवनिर्मित डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट और मेन लाइन मल्टीपल यूनिट शेड का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने 182 रूट किलोमीटर के नए विद्युतीकृत रेल खंडों को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इनसे ट्रेनों को तेज गति से चलाने और ट्रेनों की यात्रा अवधि में कमी लाने के साथ प्रदूषण मुक्त परिवहन की सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी। इनसे इलेक्ट्रिक लाइन पर चलने वाली ट्रेनें भी मेघालय में प्रवेश करने में सक्षम होंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में सरकार ने देश के पूर्वोत्तर हिस्से में जटिल भौगोलिक स्थिति के बावजूद 1,618 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क का निर्माण किया है। उन्होंने आज गुवाहाटी में वंदे भारत रेलगाड़ी के उद्घाटन से अलग मीडिया से बातचीत में कहा कि पूर्वोत्तर के 59 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जापानी मॉडल के अनुसार तैयार किया जाएगा। उन्होंने वर्ष 2014 से पहले पूर्वोत्तर के लिए रेल बजट 2,000 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़ाकर 10,200 करोड़ रुपए करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से नई पीढ़ी के पहले नेविगेशन उपग्रह NVS-1 का सफल प्रक्षेपण किया। GSLV-F-12 ने नेविगेशन उपग्रह NVS-1 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: इस प्रक्षेपण से भारत 3 अन्य राष्ट्रों में न केवल एक तारामंडल श्रृंखला के रूप में शामिल होगा बल्कि स्वदेशी रूप से रूबिडियम घड़ी का संचालन भी करेगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने आज सफलतापूर्वक एक और कठिन मिशन को अंजाम दिया है। वैज्ञानिकों ने उपग्रह की अब तक की कार्य प्रणालियों पर संतोष व्यक्त किया। इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ ने इस वर्ष जुलाई में चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण की घोषणा पर प्रसन्नता व्यक्त की। इसरो नासा के साथ कुछ और GSLV-PSLV मिशनों को भेजने के लिए उत्सुक है। इसरो के अध्यक्ष ने कहा कि GSLV मिशनों को शुरुआत में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा लेकिन सरकार ने GSLV मिशनों को आगे बढ़ाने के लिए पूरा सहयोग दिया है। चेन्नई से ज्वाइंट रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं राजमंगल पांडे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह आज से मणिपुर के 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे शाम को इम्फाल पहुंचेंगे। श्री अमित शाह राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने और आगे की योजना बनाने के लिए कई दौर की सुरक्षा बैठकें करेंगे। कंबोडिया के नरेश नोरोडोम सयामोनी भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने कंबोडिया नरेश की अगवानी की। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठकें होंगी। कल सुबह उनका राष्ट्रपति भवन में रस्मी स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वे राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कंबोडिया नरेश से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणमान्य अतिथियों के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन करेंगी। भारत और कंबोडिया के बीच राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में ये यात्रा हो रही है। नेपाल ने भारत के सतलुज जल विद्युत निगम को नेपाल में दूसरी जल विद्युत परियोजना अरुण 4 शुरू करने की अनुमति दे दी है। निगम इस समय पूर्वी नेपाल में अरुण नदी पर 900 मेगावाट 3 जल विद्युत परियोजना अरुण 3 विकसित कर रहा है। इसके वर्ष 2024 में पूरा होने की संभावना है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की अध्यक्षता में नेपाल निवेश बोर्ड की बैठक में परियोजना विकास समझौते के मसौदे को मंजूरी दी गई। इस समझौते पर पूर्वी नेपाल में 669 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए भारत के सतलुज जल विद्युत निगम के साथ हस्ताक्षर होंगे।
4: अगर इस वीडियो को स्किप करने से पहले बस एक बार अपनी आंखें बंद कर लें तो शायद आपको समझ आएगा कि ये बच्चियां पूरी जिंदगी कैसे जीती हैं। ना रोशनी, ना चेहरे, ना रंग, सिर्फ अंधेरा। और उस अंधेरे से भी ज्यादा दर्दनाक है ये एहसास कि दुनिया आपको बोझ समझती है। इस अधिक मास में अगर सच में भगवान विष्णु का आशीर्वाद चाहते हैं तो किसी मंदिर में सिर्फ दीप मत जलाइए, किसी अंधेरी जिंदगी में रोशनी बन जाइए। ये वो बेटियां हैं जिन्होंने कभी अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा, कभी सूरज नहीं देखा, कभी इस दुनिया की खूबसूरती नहीं देखी, लेकिन उन्होंने लोगों की बेरुखी महसूस की है, ठुकराया जाना महसूस किया। कई बच्चियों को घरों में छुपा कर रखा गया, कईयों से कहा गया कि इनकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर एक इंसान उनकी उम्मीद बना, दत्तू अग्रवाल, जो खुद भी देख नहीं सकते। उन्होंने अपने दर्द को इन बच्चियों की ताकत बना लिया। मातोश्री अंबुबाई स्कूल फॉर ब्लाइंड गर्ल्स में आज ये बच्चियां पढ़ना सीख रही हैं, सपने देखना सीख रही हैं और पहली बार खुद को बोझ नहीं काबिल समझना सीख रही हैं। लेकिन आज ये स्कूल मुश्किल में है, भोजन की कमी है, ब्रेल किताबों की कमी है, जरूरी संसाधनों की कमी है और बिना मदद के कई बच्चियों का भविष्य फिर उसी अंधेरे में खो सकता है जहां से वो बाहर निकल रही थी। आपका एक दान इन बच्चियों को शिक्षा देगा, सुरक्षा देगा और वो भविष्य देगा जो दुनिया उनसे छीन चुकी थी। आज दान कीजिए क्योंकि किसी अंधेरे जीवन में उम्मीद बन जाना ही सबसे बड़ा पुण्य है।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार्क मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
2: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
3: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
2: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
3: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
2: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी, लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट शो महिला मंच। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, कहते हैं ना कि कुछ लोग जिंदगी जीते हैं और कुछ लोग अपनी जिंदगी से इतिहास लिख जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिन्हें पूरा करने का साहस, और आसमान कभी किसी की मंजिल नहीं होता, वह तो बस उड़ान की शुरुआत होता है। ऐसे ही एक छोटी बेटी थी भारत की शान, जिन्होंने अपने सपनों को पंख दिए और पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो धरती से लेकर अंतरिक्ष तक कोई भी मंजिल दूर नहीं। आज की इस विशेष प्रस्तुति में जानते हैं भारत की पहली अंतरिक्ष यात्रा प्रेरणा की मिसाल कल्पना चावला जी की प्रेरणादायक कहानी।
4: और मैं आपके साथ आपकी आरजे रीना, और इस महिला मंच शो में खुशी ने बताई दिया कि हम आज बात करने वाले हैं कल्पना चावला जी के बारे में। अगर आपके सपनों में उड़ान है तो पूरी दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। यह बात जिस शख्सियत पर सबसे ज्यादा फिट बैठती है उनका ही नाम है कल्पना चावला। 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में एक साधारण परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ। पिता का नाम बनारसी लाल चावला और माता का नाम संज्योति देवी था। परिवार में चार भाई बहनों में सबसे छोटी होने के कारण सभी इन्हें प्यार से मोंटू कहकर बुलाते थे। बचपन से ही कल्पना का नाम आसमान में उड़ते हवाई जहाजों को देखकर रोमांचित हो जाता था। जब दूसरे बच्चे गुड़िया गुड्डे या खेलों में व्यस्त रहते थे तब कल्पना आसमान की ओर देखती और सोचती, एक दिन मैं भी इन बादलों के पार जाऊंगी। और 8वीं कक्षा में ही उन्होंने घर वालों से कह दिया था कि उन्हें इंजीनियर बनना है। पिता चाहते थे कि बेटी डॉक्टर या शिक्षिका बने, लेकिन माँ ने बेटी के सपनों को समझा और हर कदम पर उसका साथ दिया। और अब हम बात करने वाले हैं उनकी पढ़ाई और सपनों की उड़ान।
1: कल्पना जी ने करनाल के टैगोर बाल निकेतन स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एयर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री 1982 में हासिल की, लेकिन उनका सपना अभी पूरा नहीं हुआ था। उसी साल वे अमेरिका चली गईं, वहां यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्स आर्लिंगटन से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। इसके बाद एक और मास्टर्स तथा कोलोराडो विश्वविद्यालय से पीएचडी पूरी की। उन्होंने विमान उड़ाने का परीक्षण भी लिया। वे सिंगल इंजीनियर, मल्टी इंजीनियर, ग्लाइडर और कमर्शियल एयरक्राफ्ट उड़ान की लाइसेंस धारी पायलट थी। नासा तक का सफर 1988 में उन्होंने नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक के रूप में काम करना शुरू किया। उनकी मेहनत और प्रतिभा ने जल्द ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 1994 में उनका चयन नासा के अंतरिक्ष यात्रा

0: दल में हुआ,
1: ये किसी भी वैज्ञानिक के लिए सबसे बड़ा सपना होता है। कई वर्षों की कठिन ट्रेनिंग के बाद आखिर वह दिन भी आया जिसका इंतजार कल्पना बचपन से कर रही थी। दोस्तों, अंतरिक्ष यात्रा के बारे में तो हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन सुनते हैं उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: क्या बात है श्रोताओं, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महिला मंच शो में, जहां हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला जी के बारे में। कहते हैं अगर इरादे मजबूत हो तो हर काम आप आसानी से कर सकते हो। तो अब हम बात करने वाले हैं यानी कि पहली अंतरिक्ष यात्रा उनकी 19 नवंबर 1997 को स्पेस शटल कोलम्बिया STS-87 उड़ान भरी और इसके साथ इतिहास भी बन गया। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी पहली महिला बन गई। उन्होंने इस मिशन में लगभग 365 घंटे अंतरिक्ष में बिताए, 252 बार पृथ्वी की परिक्रमा की और लगभग 1,04,00,000 किलोमीटर की यात्रा की। पूरे भारत में खुशहाली की लहर दौड़ आई। हर बेटी के लिए कल्पना एक प्रेरणादायक लड़की बन गई। दूसरी और अंतिम उड़ान, पहले मिशन की सफलता के बाद उन्होंने दूसरी बार STS-107 मिशन के लिए चुना गया। 16 जनवरी 2003 को फिर स्पेन शटल कोलंबिया अंतरिक्ष की ओर रवाना हुआ। इस मिशन में वैज्ञानिकों की टीम ने लगभग 80 वैज्ञानिक प्रयोग किए गए। इसमें अंतरिक्ष विज्ञान, पृथ्वी, चिकित्सा, नई तकनीक और मानव स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण शोध शामिल थे। कल्पना पूरे उत्साह के साथ अपने काम में लगी रही। उन्हें क्या पता था कि यह उनकी आखिरी यात्रा होगी।
1: दर्दनाक दिन 1 फरवरी 2003। 16 दिन का मिशन पूरा हो चुका था। पूरी दुनिया को कोलंबिया की सुरक्षित वापसी का इंतजार, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय स्पेस शटल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। कुछ ही मिनटों में पूरा यान टूटकर बिखर गया। उसमें सवार सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई। ये खबर सुनकर पूरी दुनिया शॉक में रह गई। भारत ने अपनी बहादुरी बेटी को खो दिया, लेकिन उसके सपने, उसकी मुस्कान और उसकी प्रेरणा आज भी जीवंत है। उनका परिवार कल्पना चावला ने 1983 में उड़ान प्रतीक्षण जीन पीरिए हैरिसन से मुलाकात की और बाद में दोनों ने विवाह कर लिया। 1990 में वे अमेरिका की नागरिक बनी, लेकिन भारत और अपने जन्म स्थान करनाल से उनका जुड़ाव हमेशा बना रहा। उनके प्रसिद्ध शब्द, कल्पना चावला अक्सर कहा करती थी, मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ। मैंने अपना हर पल अंतरिक्ष के लिए जिया है और अगर जरूरत पड़ी तो उसके लिए मरूंगी। उनके ये शब्द आज भी हर युवा को बड़े सपने देखने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब हम बात करेंगे इनके सम्मान और पुरस्कार के बारे में। उनके निधन के बाद उन्हीं के कई प्रतिष्ठित सम्मान दिए गए, जिनमें शामिल है नासा स्पेन फ्लाइट मेडल, कांग्रेशनल स्पेन मेडल ऑफ ऑनर और अब हम बात करेंगे उनके नाम पर बने स्मारक। आज भी दुनिया में कई संस्थान और स्थान उनका नाम गर्व से धारण किए हुए हैं। भारत के मौसम उपग्रह कल्पना एक का नाम उनके सम्मान में रखा गया। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रवास के नाम पर है। हरियाणा सरकार ने कल्पना चावला तारा मंडल की स्थापना की। नासा ने उनके नाम पर सुपर कंप्यूटर सम्मानित किया। अमेरिका की कई सड़कों, भवनों और छात्रवृत्तियों का नाम भी उनके नाम पर ही रखा गया।
1: उनकी कहानी क्या सिखाती है? कल्पना चावला जी की कहानी केवल एक अंतरिक्ष यात्रा की कहानी नहीं है साथियों, ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने छोटे शहर से निकलकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, उन्होंने केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। इसलिए आज भी जब कोई बच्ची आसमान की ओर देखकर बड़े सपने देखती है तो लोग कहते हैं एक और कल्पना चावला तैयार हो रही है। कल्पना चावला भले ही आज हम बीच नहीं है, लेकिन श्रोताओं, उनका जीवन हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को सच करना चाहती है। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हो, मेहनत ईमानदारी से हो और सपनों पर विश्वास हो तो करनाल की एक साधारण लड़की भी सितारों तक पहुँच सकती है। कल्पना चावला केवल एक नाम नहीं बल्कि साहस, मेहनत, जुनून और सपनों की उड़ान का दूसरा नाम है। सपने देखिए, क्योंकि सपने ही आपको आसमान से भी आगे ले जाते हैं। तो दोस्तों, अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आएंगे। फिर बात करने वाले हैं हम कल्पना चावला जी के प्रसिद्ध विचार और उनसे मिली प्रेरणा के बारे में। तो बने रहिए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6।

0: हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है महिला मंच में, आपकी दोस्त आरजे खुशी। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला जी के बारे में। और अभी मैंने आपसे कहा भी था कि कल्पना चावला जी के प्रसिद्ध विचार और उनसे मिलने वाली प्रेरणा के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस बीती की, जिसने सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। एक ऐसी बेटी जिसने बचपन में आसमान को देखा और फिर एक दिन उसी आसमान के पार चली गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला जी की। फ्रेंड्स, किसी इंसान की असली पहचान सिर्फ उसके काम से नहीं होती बल्कि उसके विचारों से होती है। उसके सोचने का तरीका ही उसे भीड़ से अलग बनाता है। कल्पना चावला भी ऐसी ही शख्सियत थी। उनके विचार आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करते हैं। उनके विचारों और उनसे मिलने वाली सीख को विस्तार से समझते हैं। पहला विचार, सपनों से सफलता तक का रास्ता हमेशा मौजूद होता है, बस उसे देखने की नजर, उस पर चलने का साहस और अंत तक चले रहने का धैर्य होना चाहिए। दोस्तों, ये केवल एक वाक्य नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का मंत्र है। आज हम में से बहुत से लोग सपने तो देखते हैं, लेकिन मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं। कल्पना चावला जी कहती हैं कि रास्ता हमेशा होता है, जरूरत है तो सिर्फ उसे खोजने की। अगर रास्ता नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता है ही नहीं। कई बार मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें खुद रास्ता बनाना पड़ता है। कल्पना चावला जी ने भी यही किया। करनाल जैसे छोटे शहर से निकलकर नासा तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ा। अगर आपका सपना बड़ा है तो आपकी मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए।
1: तो श्रोताओं, हमने कल्पना चावला जी के बारे में जाना, लेकिन उन्हीं के लिए उनकी जो कहानी है आजकल की पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन चुका है। समय बदलता है, तकनीकी बदलती है, दुनिया बदलती है, लेकिन कुछ लोगों की कहानियां कभी पुरानी नहीं होती। कल्पना चावला की कहानी भी ऐसी ही है। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जीवन आज की पीढ़ी के लिए एक ऐसी किताब है जिसकी हर पंक्ति हमें कुछ नया सिखाती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर आज के युवाओं, बच्चों और हम सभी को कल्पना चावला जी के जीवन से क्या सीख मिलती है। बड़ा सपना देखने से कभी मत डरिए। कल्पना चावला जी एक छोटे से शहर करनाल में पैदा हुई थी। उस समय बहुत कम लोग सोचते थे कि भारत की कोई लड़की अंतरिक्ष तक पहुंच सकती है, लेकिन उन्होंने अपने सपनों की ऊंचाई और कभी छोटी नहीं होने दी। आज कई युवा सोचते हैं कि हम छोटे शहर से हैं, हमारे पास ज्यादा सुविधाएं नहीं है, इसीलिए हम बड़े सपने नहीं देख सकते। लेकिन कल्पना चावला की कहानी बताती है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। हर सपना बड़ा होता है तो मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी सफलता चाहता है। सोशल मीडिया पर किसी की सफलता देखकर लोग सोचते हैं कि सब कुछ बहुत आसान है, लेकिन सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत, संघर्ष और धैर्य छिपा होता है। कल्पना चावला जी ने भी दिन रात पढ़ाई की, रिसर्च की, कठिन ट्रेनिंग पूरी की और हर चुनौती का सामना किया। उनकी सफलता किस्मत से नहीं बल्कि मेहनत से मिलती है। और ये बात सही है, सपना सिर्फ आप देखते रहेंगे तो वो पूरा कभी नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हर इंसान के जिंदगी में मुश्किलें आती हैं। कई बार मेहनत के बाद भी मन चाहा परिणाम नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम रुक जाए। कल्पना चावला जी ने हर चुनौती का सामना मुस्कुरा कर किया। उन्होंने कभी हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। यही सोच हमें भी अपनानी चाहिए। सीखना कभी बंद मत कीजिए। डिग्री लेने के बाद भी उन्हें पढ़ाई नहीं छोड़ी, नई तकनीकी सीखी, रिसर्च की, खुद को लगातार बेहतर बनाया। आज के युवाओं के लिए ये बहुत ही बड़ी सीख है। अगर हम रोज कुछ नया सीखते रहेंगे तो समय के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। जो सीखना छोड़ देता है वह आगे बढ़ना भी छोड़ देता है। आज मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया हमारे जिंदगी का हिस्सा है। इनका सही उपयोग बहुत जरूरी है, लेकिन अगर पूरा समय सिर्फ मोबाइल पर ही निकल जाए तो सपने पूरे नहीं होते। कल्पना चावला जी ने अपना समय सीखने, पढ़ने और अपने लक्ष्य पर काम करने में लगाया। यही कारण है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी तक पहुंची। समय सबसे कीमती संपत्ति है, जो इसका सम्मान करता है वही आगे बढ़ता है। और कहते हैं न श्रोताओं, आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है। जब लोग कहते थे कि यह मुश्किल है, तब भी कल्पना चावला जी कहती थी, मैं कोशिश करूंगी। उन्हें खुद पर भरोसा था। आज के युवाओं को भी अपनी क्षमता पर विश्वास रखना चाहिए। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। और इस समाज में लड़का और लड़की बराबर है। कल्पना चावला जी ने साबित किया कि सपनों का कोई लिंग नहीं होता। उन्होंने उन सभी धारणाओं को तोड़ा जिनमें कहा जाता था कि कुछ क्षेत्र सिर्फ पुरुषों के लिए हैं। आज हर बेटी को यह विश्वास होना चाहिए कि अगर वह मेहनत करेगी तो किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकती है। और हर बेटे को यह सीखना चाहिए कि बेटियों को बराबर का सम्मान और अवसर देना हमारी जिम्मेदारी है। अपने देश और अपनी पहचान पर गर्व कीजिए। अमेरिका में रहने के बावजूद कल्पना चावला जी ने कभी अपनी भारतीय पहचान नहीं छोड़ा। वे हमेशा अपने स्कूल, अपने देश को याद करती थी। आज की पीढ़ी को भी अपनी भाषा, संस्कृति और देश पर गर्व होना चाहिए। दुनिया में कहीं भी जाए पर अपनी जड़ों को कभी मत भूलिए और मुश्किलों से कभी भागिए मत। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सब कुछ कठिन लगने लगता है, लेकिन वही लोग इतिहास बनाते हैं जो मुश्किल समय में भी हिम्मत रखते हैं। कल्पना चावला ने हर चुनौती का डटकर सामना किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि समय से भागने के बजाय उनका समाधान खोजिए। सफलता केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। कल्पना चावला की उपलब्धियां सिर्फ उनकी अपनी नहीं थी। उनकी सफलता ने लाखों बच्चों, खासकर बेटियों को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी। सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में भी उम्मीद जगाए। और इसी शो में युवाओं के लिए विशेष संदेश, अगर आपके पास कोई सपना है तो आज से ही उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। डेली थोड़ा थोड़ा सीखिए, अपनी गलतियों से सीखिए, समय का सम्मान कीजिए, माता पिता और शिक्षकों का आदर्श कीजिए, अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखिए। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, कभी यह मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों ने लिखा है जिन्होंने कहा मैं कोशिश जरूर करूंगा। कल्पना चावला ने हमें सिर्फ अंतरिक्ष की कहानी नहीं दी, बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाया। उन्होंने सिखाया कि सपने देखो, मेहनत करो, सीखते रहो, डरो मत और कभी हार मत मानो। तो याद रखिए, कल्पना चावला का शरीर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सोच, उनका साहस और उनकी प्रेरणा आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जीवित है। तो श्रोताओं, बस बने रहिए आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ इस महिला मंच शो में। एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम फिर से कनेक्ट होंगे आप सभी के साथ और करेंगे ढेर सारी बातें और लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत।

0: तो दोस्तों, एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक अभी हमने लिया था और हम फिर से हाजिर हो गए हैं आप सभी का फेवरेट शो लेकर महिला मंच, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला जी के बारे में और उनका तीसरा विचार बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही खूबसूरत है, तो मैं आप सभी तक साझा करना चाहती हूं। मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूं, मैंने अपना हर पल अंतरिक्ष के लिए जिया है। दोस्तों, सोचिए कितना बड़ा जुनून होगा जब कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी एक सपने के नाम कर देता है। आज हम छोटी छोटी परेशानियों में अपना लक्ष्य बदल देते हैं, लेकिन कल्पना जी ने कभी अपना सपना नहीं बदला। उनकी मंजिल सिर्फ एक थी, अंतरिक्ष। लक्ष्य बदलते रहेंगे तो सफलता भी दूर होती जाएगी। साथियों, आपने कभी सोचा है आपका सपना क्या है? क्या आपने उसके लिए मेहनत करनी शुरू की थी या सिर्फ सोच रहे हैं? एक दिन करेंगे। याद रखिए, सपने इंतजार नहीं करते। जो काम आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है, उसी में अपना भविष्य खोजिए। कल्पना चावला जी को बचपन से ही हवाई जहाज पसंद थे। लोगों ने कहा लड़कियां पायलट नहीं बनती, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। दुनिया क्या कहती है, इससे ज्यादा जरूरी है आपका दिल क्या कहता है। अगर कल्पना चावला जी दूसरों की बातें सुन लेती तो शायद आज इतिहास में उनका नाम नहीं होता। और उनका पांचवा विचार, डर होना गलत नहीं, डर के कारण रुक जाना गलत है। अंतरिक्ष मिशन आसान नहीं होते, हर उड़ान में खतरा होता है, लेकिन कल्पना चावला जी ने कभी डर को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने खतरों को समझा, लेकिन अपने सपनों को उससे बड़ा रखा। और उनकी सीख, साहस का मतलब डर का खत्म होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना। तो दोस्तों, इसी प्रेरणादायक कहानी के साथ अब हम लेते हैं आपसे जाने की अनुमति। मिलेंगे आपको एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त भावना। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। दोस्तों, आज का शो बहुत ही खास है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उस चीज की जिसके बिना हमारा जीवन ही अधूरा है, हमारा पर्यावरण, हमारी संस्कृति। दोस्तों, आज हम अपनी धरती की आवाज सुनेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास के पेड़, नदियाँ और हवा लगातार हमसे कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमसे। तो चलिए, आज इस यात्रा में हम अपनी धरती को बेहतर बनाने की बात करेंगे। दोस्तों, पर्यावरण सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं है, बल्कि हम सब हैं। हमारी हवा, हमारा पानी, मिट्टी, जीव जंतु, ये सब कुछ। लेकिन आज स्थिति कुछ अलग है। क्या आपको गर्मी के दिनों में असहनीय गर्मी महसूस होती है? क्या आपको सांस लेते हुए प्रदूषण महसूस होता है? जरूर होता होगा, क्योंकि आज का हवा पानी सब कुछ बदल चुका है। भारत में वायु प्रदूषण, पानी की कमी और कचरा प्रबंधन सबसे बड़े मुद्दे हैं। नदियाँ गंदी हो रही हैं, जंगल कट रहे हैं, ये सब इंसान।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: गुड आफ्टरनून दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम है हेलो फरमाइश और यह है आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी और समय हुआ है अभी स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ 3:14। हमारे साथ हमारे लिसनर भी कनेक्ट हो गए हैं, तो बिना किसी देरी के उनसे बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार जी,
0: जी बताइएगा अपना शुभ नाम।
1: जी हतर सिंह सैनी बोल रहा हूँ, मैं जिला मुरादाबाद सम्मल रोड बस्तौर से।
0: जी बताइएगा कैसे हैं सर आप।
1: जी सब बढ़िया है, मौज आ रही है
0: जी।
1: मेरा कॉल लग गई तो और बढ़िया होगा।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, हमेशा अच्छा ही रहना चाहिए सर। बताइएगा आज आपने कॉल किया है, क्या सुनना चाहते हैं आप।
1: आज मैं राखी बंधन का गाना सुनना चाहता हूँ, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना।
0: अच्छा, रक्षा बंधन स्पेशल ट्रैक सुनना चाहते हैं आप।
1: जी
0: ठीक है सर, सुनवा देते हैं आपको।
1: मैं कुछ नाम तो ले सकता हूँ।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बताइएगा
1: जी। जैसे मीना मुन्नी पवित्रा, अजय आटल आकांक्षा आकाश।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं प्यारा से गाना आपकी फैमिली के साथ। थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: ओके
0: तो चलिए एवरीवन सुन लेते हैं खूबसूरत सा गीत, लौट कर आते हैं। तब तक आप भी कॉल लगाइएगा, मोबाइल नंबर हमारा है 9837896896।

0: स्पेशल एंड रक्षाबंधन भी आने वाली है और भाई बहन का जो प्यार होता है ना बहुत ही खूबसूरत होता है, नोक झोंक भी होती है, केयर भी होती है एंड वर्ल्ड में सबसे ही खूबसूरत रिश्ता होता है बहन भाई का। तो अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं और क्या उनकी फरमाइश है वो हम उन्हीं से जानते हैं। हेलो फरमाइश। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: गुड आफ्टरनून मैम।
0: वेरी गुड आफ्टरनून, नाम बताइएगा अपना।
1: मेरा नाम मैम सोटेपी है, मैं नूर फर्नीचर हाउस से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
1: बहुत अच्छे हैं मैम, और जब आपका शो सुनते रहते हैं सुबह से शाम तक ऐसा मुरादाबाद चलता रहता है तो और भी अच्छे रहते हैं।
0: थैंक यू सो मच। आप क्या करते हैं सर?
1: मैम मेरा अपना फर्नीचर का काम है।
0: ओके, तो कैसा चल रहा है आपका वर्क?
1: मैम इस टाइम तो सावन है लगा हुआ, इसमें तो कम रहता है।
0: ओके, स्लो चल रहा है अभी,
1: शादियों का सीजन ज्यादा चलता है, शादियों के हिसाब से सीजन बनाते हैं।
0: हाँ जी हाँ जी, एग्जैक्टली राइट सर। तो बताइएगा आज आपने ये कॉल किया है, क्या फरमाइश है आपकी?
1: फरमाइश मैम मेरी है, कल की आवाज मूवी से आज रात चांदनी है।
0: आज रात चांदनी है। ओके, और ये ट्रैक इनको डेडिकेट करना चाहते हैं आप?
1: ये मैंने अपनी बेटी के लिए किया मैम, मेरी बेटी का नाम भी सगुफा रखा है मैंने, जो में नाम है ना लड़की का उसका बेटी का धर्मेंद्र जी की।
0: अच्छा,
1: तो इसमें जो लाइन आएंगी ना मैम बीच में बहुत अच्छी लगती है, वो जब लड़की गाएगी गाना वो पापा मेरा मेरी शान है।
0: अरे वाह,
1: तुझमें बसी मेरी जान है।
0: बहुत खूबसूरत गाना आपने चुना है अपनी डॉटर के लिए, तो सुनवा दें ये गाना आपको सर, ठीक है?
1: जी मैम बिल्कुल।
0: ओके, थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: वेलकम मैम,
0: एंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ ये ब्यूटीफुल ट्रैक। तो चलिए दोस्तों इस खूबसूरत गीत को सुनते हैं और एंजॉय करते हैं सब मिलकर। आप भी मुझे कॉल लगाएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 98 378 96 896। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा,

0: गुड आफ्टरनून एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपने प्यारे से शहर का प्यारा सा रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। एवरीवन, वक्त हुआ है अभी 3:28 और बहुत ही खूबसूरत सा आपने अभी गाना सुना फ्रॉम द मूवी कल की आवाज, जो 1992 में आई थी और इस खूबसूरत गीत को गाया था कुमार सानू साथ में साधना सरगम जी ने। म्यूजिक डायरेक्टर थे नदीम शर्मन जी एंड लिरिक्स थे समीर जी की। और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से बिना किसी देरी के, क्योंकि वो भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्ते।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्ते। क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम चंदन है, आपसे बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल एकदम बढ़िया।
0: अच्छा ही रहना चाहिए। बताइएगा सर, कैसा मौसम है रामपुर का?
1: रामपुर में सुबह बारिश पड़ी है।
0: अच्छा
1: जी।
0: और अभी कैसा है करंटली वहाँ का वेदर?
1: अभी थोड़ी धूप निकल रही है।
0: अच्छा, अभी धूप निकल रही है। बताइएगा सर, क्या फरमाइश है आपकी?
1: शादी की सॉन्ग फरमाइश है, बेटी घर चली, बाबुल की घर चली वाला सॉन्ग है ना?
0: हाँ जी हाँ जी,
1: वही फरमा दीजिए।
0: अच्छा, ये ट्रैक आप किन के लिए सुनना चाहते हैं?
1: मन मन में ख्याल आ गया सुबह, तो शादी का दौर आने वाला है, तो शादी का सॉन्ग सुन।
0: जी बिल्कुल, सुनवा देते हैं प्यारा सा गीत आपको। शुक्रिया आपने हमें कॉल किया सर।
1: राधे राधे।
0: जी राधे राधे। तो चलिए एवरीवन, सुन लेते हैं सर की पसंद का प्यारा सा ट्रैक। लौट कर आने वाली हूँ मैं बस वापस इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर। आप भी मुझे जल्दी से कॉल लगाइए बिना किसी देरी के, मैं इंतजार कर रही हूँ। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मुस्कुराते भी रहिए।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और श्रोताओं, अभी समय हुआ है 3:46 और ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है। आप भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और कोई भी ट्रैक जो आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का तो सुन सकते हैं। बस उसके लिए आपको छोटा सा काम करना है, जो आपके हाथों में मोबाइल है ना फोन, हाँ जी इसी पर नंबर लगाना है। हमारा ऑफिशियल मोबाइल नंबर है 9837896896। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश मैम, नमस्ते
0: जी। आपको भी नमस्ते। क्या नाम है आपका?
1: आंचल।
0: आंचल कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: हम
0: जी बताएगा आंचल, क्या सुनना है आपको आज?
1: आप अपनी पसंद का गाना सुनवा लेना कोई
0: भी। अच्छा, कोई भी ट्रैक अपनी पसंद का चलाएं आज हम आपके लिए। ठीक है आंचल, हम रक्षाबंधन स्पेशल ट्रैक आपको सुनवा देते हैं। ओके थैंक यू कॉल करने के लिए। तो चलिए फ्रीफन, आंचल कह रही है कि खुशी जी आप अपनी पसंद से रक्षाबंधन स्पेशल ट्रैक सुनवा दीजिएगा। तो एक प्यारा सा ट्रैक मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है जो कि अरिजीत सिंह एंड साथ में श्रेया घोषाल जी की आवाज़ में, बहुत ही प्यारा गाना है। तो सुन लेते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी है आपके साथ। और श्रोताओं, अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी रक्षाबंधन से। अक्षय कुमार जी ने कितने खूबसूरती से इस रोल को निभाया है ना, और ये फिल्म भी बहुत ही खूबसूरत थी। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: हम सलमान अख्तर बात कर रहे हैं।
0: सलमान अख्तर जी कहाँ से बात कर रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून
1: जी। हम इस समय तो शिवालिक कॉलेज देहरादून यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं
0: जी,
1: लेकिन इस समय हम रहने वाले जम्मू यहाँ के बिजनौर से, नजीबाबाद।
0: ओके, नजीबाबाद से आप हैं, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर
1: जी। मैम
0: जी, बताइएगा सर, क्या सुनना चाहते हैं आज आप?
1: जी हमें गीत सुनना है प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, और मेरे दोस्त थे
0: जी। बताइएगा।
1: अफरोज फातिमा जी मुरादाबाद से, लायबा जी मुरादाबाद से, मुकेश भाई और फरमान भाई मुरादाबाद से।
0: ओके, एक बार फिर से बताइएगा गाने की बोल।
1: प्यार करने वाले कभी डरते नहीं।
0: ओके ठीक है सर, सुनवाते हैं प्यारा से गाना आपको। थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: ओके
0: तो चलिए एवरीवन, सुन लेते हैं सर की पसंद के प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइए, मोबाइल नंबर हमारा है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मैं वापस आती हूँ इस प्यारे से गाने के उस पार।

Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM. सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: करो।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और मुरादाबाद का मौसम कभी तो धूप निकल जाती है, कभी रिमझिम बारिश हो जाती है, तो कभी बादल हो जाते हैं। समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। वैसे सावन का महीना चल रहा है नो डाउट, और इस मौसम में ना ऐसा होता है कि कभी धूप होती है, कभी बारिश तो कभी बादल। फिलहाल अभी बात करते हैं अपने कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं और जानते हैं उनकी क्या फरमाइश है आज यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: पल पल चेहरे पर मुस्कान रहे, पल पल चेहरे पर मुस्कान रहे, हर गम से आप अनजान रहे, जिसके साथ महक उठे जिंदगी आपकी, खुदा करे हमेशा आपके पास वो इंतजार रहे।
0: अरे वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, इतनी प्यारी प्यारी सी लाइनें बोलकर क्या करोगे आप। हाँ
1: मैम, मैं जिला अमरोहा ग्राम ढके चमन से नेहा बात कर रही हूँ। आप
0: जी बताइए नेहा, कैसी हैं आप।
1: मैम हम तो बहुत अच्छे हैं, आप कैसी।
0: मैं भी ठीक हूँ, आपकी मुस्कुराहट से पता चल रहा है कि आप अच्छी हैं।
1: मैम अच्छे तो बहुत हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ गई है कि अब बहुत ज्यादा परेशान है।
0: जिंदगी में चीजें होती हैं, परेशानियां भी आती हैं। और
1: मैम हमारे पड़ोस में ना 3 साल की बच्ची लापता हो गई,
0: ओके।
1: तो उसके चक्कर में पुलिस पूरे गांव में चक्कर लगा रही है, बार बार घर में आ रहे हैं।
0: अच्छा, वो सर मतलब सर्च कर रहे हैं ना, सभी के सभी से मालूम कर रहे हैं,
1: सर्च कर रहे हैं।
0: ओके, तो अभी पता नहीं चला है।
1: अभी पता नहीं लगा है, 3रा दिन है आज, अब भी हमारे सामने खड़े हैं पुलिस वाले।
0: ओके यार, ये बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है। बस हम तो दुआ करते हैं कि जल्दी से वो बच्ची मिल जाए, जहाँ भी हो सही सलामत हो।
1: जी मैम,
0: तो बताइएगा क्या सुनेंगे आज आप, क्या फरमाइश है आपकी।
1: मैम सॉन्ग है आगे बाराती पीछे बैंड बाजे आए दूल्हा राजा।
0: ओके, और ये गाना किनके लिए सुनना चाहती हैं आप।
1: मैम तेरे भाई की शादी है 30 तारीख में।
0: अच्छा ओके, 30 अगस्त को शादी है,
1: आपको भी आना है और सभी सुनने वाले लिसनरों को भी आना है।
2: पूरा गांव चला जाएगा ना, पता लग जाएगा तुम्हें।
0: पूरा गांव नहीं, पूरा सिटी,
2: पूरा
0: रीना जी कह रही है कि पूरा मुरादाबाद पहुंच जाएगा, तो आप कैसे मैनेज करेंगे सबको।
1: देखिए
0: नेहा जी कह रही है इस बात की टेंशन ना लो, हम सबको संभाल लेंगे, है ना नेहा।
2: मुरादाबाद ही नहीं है भैया, बहुत दूर तक सुनते
1: हैं मैम जी, हम दोनों को बुलाने के लिए आ जाएंगे।
0: अरे थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू नेहा जी।
2: बताओ हेलीकॉप्टर लेके आओगी या ट्रेन लेके आओगी।
1: मैम हेलीकॉप्टर तो नहीं, बाइक लेकर आएंगे।
0: बाइक पे तो हाँ, हम दोनों लड़कियां तो आ जाएंगे,
1: दोनों आ जाओगे आराम से।
0: हाँ जी चलाएंगी ना आप, आपको आ गया ना चलाना।
1: नहीं चलाना तो नहीं आता, आप चलो चला लेना, हम पीछे बैठ जाएंगे।
2: मैं चला लूंगी, आप दोनों पीछे लटक जाना।
0: नेहा जी
1: ओके,
0: चला
1: ओके।
0: रीना जी गाड़ी चलाती नहीं है, सीधा उड़ाती है।
1: अच्छा
0: मजाक कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे से यू नो ड्राइव कर लेती हैं, तो अगर आप लेने आएंगे तो हम जरूर आएंगे।
1: आना आप दोनों को।
0: शुक्रिया नेहा, सुनवाते हैं प्यारे से गाना आपके कजन ब्रदर के लिए।
1: ओके मैम,
0: थैंक यू कॉल करने के लिए, बाय। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आएंगे हम, तब तक आप भी कॉल लगाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। आरजी खुशी है आपके साथ। और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना उदित नारायण जी, साथ में अलका याग्निक जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज। फ्रॉम द मूवी हम किसी से कम नहीं, बहुत ही प्यारा सा गाना सुना इस फिल्म का। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुई है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। हाँ जी,
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: जी दी, मैं अक्का बीकनपुर जिला मुरादाबाद से आपकी दोस्त अफरोज फातिमा बोल रही हूँ।
0: जी बताइएगा अफरोज, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ दी, तुम बताओ तुम कैसी हो?
0: हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ, बताइएगा।
1: जी दी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ।
0: हाँ जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप?
1: मुझे कहना तो नहीं चाहिए था क्योंकि मेरी पहले बात हो चुकी है, लेकिन मुझे करना पड़ा मजबूरी में।
0: बताइएगा
1: जी दी। अभी मतलब कॉल आया था किसी भाई का।
0: हाँ।
1: और वो मेरा नाम ले रहे थे और मेरी वेस्टी का नाम ले रहे थे, जबकि नहीं लेना चाहिए था क्योंकि मैं उन्हें नहीं जानती हूँ, ना ही मेरी दोस्त लाइबा उनको जानती है।
0: ओके।
1: हाँ, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आगे से मेरा नाम या मेरी वेस्टी का नाम कभी ना लें, वरना अच्छा नहीं होगा।
0: ओके।
1: क्योंकि भी गलत है ना, मतलब मेरी फैमिली में सभी सुन रहे हैं और मैं ऐसे वैसे घराने से नहीं हूँ बिल्कुल भी।
0: आई एग्री विद यू। और मुझे लगता है कि जब कोई किसी को ऐसे अनॉन पर्सन एग्जैक्टली नाम ले रहा है ऐसे डायरेक्टली, तो सही नहीं है। जब आप किसी को नहीं जानते तो किसी का नाम लेने का क्या अधिकार है आपको? कोई राइट नहीं है ना।
1: मैंने अभी अभी सुना तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं क्योंकि मैं उनको नहीं जानती हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, भाई तुम जो भी हो मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। अगर तुम सुन तो रहे होगे, लेकिन मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे कि आगे से मेरा या मेरी फ्रेंड का नाम ना ले। बल्कि अगर तुम किसी लड़की को नहीं जानते हो तो किसी लड़की का नाम मत लेना, बहुत गलत बात है ये।
0: हाँ एग्जैक्टली। तो सुन रहे होंगे, वो आपकी बातों को एक्सेप्ट करेंगे। और ऐसे मुझे भी नहीं, सही नहीं लगा यू नो डायरेक्टली। अगर किसी को जानते हैं तो बात हाँ ठीक है कि हम जानते हैं, लेकिन बिना बेवजह ना जाने ऐसे अनजान व्यक्ति किसी का नाम ले रहे हैं तो ये गलत है।
1: जी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत परेशान हूँ इस टाइम पे मैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।
0: आप टेंशन मत लीजिए, चिंता वाली कोई बात नहीं है, ठीक है?
1: और क्योंकि इतने दिन हो गए हमें, आज दिन तक ऐसा कभी नहीं हुआ, आज पहली दफा ऐसा हुआ है मेरे साथ।
0: हाँ जी हाँ जी, हम समझ रहे हैं, आप हमारी रेगुलर लिसनर हैं और हमारे साथ आप कनेक्ट रहती हैं। तो अगर वो सुन रहे होंगे हमारे जो लिसनर हैं, तो आइंदा से वो आपका नाम नहीं लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है?
1: जी दी, मतलब अब मैं मतलब उम्मीद कर रही हूँ कि वो भाई मेरा नाम नहीं लेंगे अब।
0: हाँ बिल्कुल श्योर, वो सुन रहे होंगे आपको। और कभी कभी हो जाती हैं गलतियाँ, एक चांस सबको मिलना चाहिए।
1: हाँ दी,
0: थैंक यू।
1: थैंक यू दी, आपने मेरी कॉल रिसीव की और मेरी बात सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के।
0: मोस्ट वेलकम।
1: थैंक यू दी, बाय
0: बाय, टेक केयर, और परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। तो चलो दोस्तों, एक खूबसूरत सा गाना मैं अपनी तरफ से आपको सुनवाती हूँ। और आप भी मुझे कॉल लगाइए, मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। और एक गाना जो बहुत ही प्यारा है, फ्रॉम द मूवी, बता दें हम आपको? नहीं, चलो बता दें नहीं मूवी का नाम, हम डायरेक्टली ना आपको, हम आपको गाना सुनवा देते हैं, है ना? तो चलिए सुनते हैं एक बेहतरीन ट्रैक, उसके बाद करेंगे आपसे बातचीत।

0: देखिए दोस्तों, फैंस तो हम आपके हैं क्योंकि आप हमारे जो लिसनर्स हैं ना, सब बहुत ही प्यारे हैं। और जब आप हमें इतनी शिद्दत के साथ कॉल करते हैं, हर एक शो में पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिव रहते हैं आप इतना ज़्यादा, तो अच्छा लगता है। और इतने प्यारे प्यारे श्रोता कहाँ मिलेंगे हमें, बताओ हमें। हम बहुत लकी हैं कि आप जैसे इतने प्यारे लिसनर हमें मिले हैं। तो चलो अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट होने वाली हैं, क्या उनका नाम है, उनसे बात करते हैं। हेलो फरमाइश। हेलो
1: हेलो फरमाइश, गुड इवनिंग जी।
0: वेरी गुड इवनिंग। ये तो मेरा ही ना पहले आवाज़ मुझे सुनाई दी, मैंने कहा अरे ये मैं ही बात कर रही हूँ।
1: जी मैं जिला मुरादाबाद ग्राम गोदी से निकट फातिमा आपसे बात कर रही हूँ।
0: जी बताइएगा कैसी है निकट आप।
1: जी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हो और वहाँ पर सभी कैसे हैं।
0: हाँ जी यहाँ पर सब बहुत ही अच्छे हैं फिर मुरादाबाद में, मैं भी ठीक हूँ। आप बताइएगा आपके परिवार में सब ठीक है।
1: जी सभी लोग ठीक है यहाँ पे भी।
0: ओके बताइएगा क्या सुनेंगे आज निकट आप।
1: जी मूवी का नाम रहेगा दूल्हे राजा और उसमें बहुत ही प्यारा सॉन्ग है आई बन के रुतु मस्तानी।
0: ओके और ये ट्रैक किन के लिए सुनना चाहते हैं आप।
1: जी सभी के सुनने वालों के और मेरे कुछ दोस्त।
0: हाँ बताइए।
1: मेरे दोस्त शिजा और रामपुर से समा पर भी और सभी सुनने वाले। और भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ।
0: बिल्कुल कहिए।
1: हाँ। होठों पर हंसी के फूल खिलाए रखना, होठों पर हंसी के फूल खिलाए रखना, यादों को हमारे दिल में बसाए रखना, चाहे आपसे मुलाकात हो या ना हो पर हमसे दोस्ती हमेशा बनाए रखना।
0: आपसे हमारी दोस्ती हमेशा है, आप चिंता मत करो।
1: ओके जी थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, सुनवाते हैं प्यारे गाना। थैंक यू निखत, मोस्ट वेलकम। तो चलिए निखत के लिए सुनते हैं निखत की पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक। बस मैं लौट कर आती हूँ, आप यूं ही बने रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें कॉल लगाते रहिए। मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9833789689। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
2: मुरादाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। आज ही खुशी है आपके साथ और वक्त हुआ है दोस्तों घड़ी में, हमारी स्टूडियो की घड़ी में 4:30। और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश दीदी,
0: अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका?
1: दीदी मैं रामपुर से शबनम जी बात कर
0: रही हूँ। शबनम जी बात कर रही हैं, बताइए कैसी हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसी हो? रखा मुरादाबाद।
0: हाँ जी सब अच्छे हैं मैम। प्लीज अपने बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर कम करवा दीजिएगा क्योंकि बहुत आवाजें आ रही हैं। हेलो
1: जी दीदी मैम, अलग हो गई।
0: हाँ आप थोड़ा साइड में आ जाइएगा, बताइए मैम कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: दीदी मैं रामपुर से शबनम जी बात कर रही हूँ आपसे।
0: जी बताइएगा कैसी हैं शबनम जी आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए दीदी आप कैसी हो और अपने मुरादाबाद में सभी लोग कैसे हैं?
0: हाँ जी अपने मुरादाबाद में सब बहुत ही अच्छे हैं, मैं भी ठीक हूँ। आप बताइएगा आज आपने कॉल किया है, क्या सुनना चाहती हैं शबनम जी आप?
1: दीदी फिल्म का नाम है हमको तुमसे प्यार है।
0: वो तो है नो डाउट, आप हमसे बहुत प्यार करती हैं।
1: जी बिल्कुल, और गाने का बोल है तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना।
0: ओके, क्या
1: ये
0: सच बात है?
1: जी बिल्कुल सच बात है।
0: ओके
1: दीदी दो तीन नाम है।
0: हाँ बिल्कुल बताइएगा।
1: हमारे साथ में आई है लाइव अकाजी, अफरोज, फातिमा, नेहा दे, आप और हम।
0: ठीक है मैम सुनवाते हैं सभी के साथ ये प्यारा सा गाना, आपको एंजॉय कीजिएगा।
1: ओके बाय
0: बाय। तो चलिए दोस्तों सुन लेते हैं प्यारा सा ट्रैक एंड तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा है। वैसे तो गाना बहुत ही प्यारा है और फिल्म भी बहुत ही अच्छी है, बहुत सारे श्रोताओं ने देखी भी है और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं देखी है, तो ज़रूर देखना क्योंकि फिल्म की जो स्टोरी है ना वो बहुत ही खूबसूरत है। बाकी थोड़ा सस्पेंस हम बना कर रखते हैं, आप देखिएगा तो आपको मालूम हो जाएगा।

0: सभी का वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा गाना एंड अपने कॉलर से बात करेंगे, लेकिन बता देते हैं कि इस खूबसूरत गीत को गाया था उदित नारायण जी ने, अलका याग्निक जी ने, और साथ में सपना अवस्थी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ में प्यारा सा गाना। देव कोहले जी के लिरिक्स थे एंड म्यूजिक डायरेक्टर थे आनंद राज आनंद जी। और चलिए अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हेलो हेलो फरमाइश। नमस्ते। छोले खाओ सस्ते। मोस्ट वेलकम। मैं ठीक हूँ, आप बताइएगा कैसे हैं शबनम जी।
1: दीदी हम बहुत अच्छे हैं, आपसे बात करके और भी अच्छे हो गए।
0: जी बताइएगा कहाँ से बात कर रही हैं आप।
1: दीदी मैं जिला रामपुर ग्राम खुनिया एक मीनार वाली मस्जिद के पास आपके नियमित श्रोता शबनम अब्बासी आपसे मुखातिब हूँ।
0: अरे वाह शबनम जी, बहुत ही खूबसूरत सा आप बोलती हैं और जब हंसती हैं तो बड़ी अच्छी लगती हैं आप।
1: जी दीदी ऐसी कोई बात नहीं, आपकी हंसी बहुत प्यारी है।
0: थैंक यू। बताइए शबनम जी कैसे चल रहा है आपका पार्लर।
1: जी दीदी काम अच्छा चल रहा है, बस आपसे बात हो जाती है तो और भी अच्छा चलने लगता है।
0: ओह क्या हमारी बातों में जादू है।
1: दीदी कहते नहीं है क्या क्या तेरे नाम लिखूं, क्या क्या तेरे नाम लिखूं, दिल लिखूं या जान लिखूं, आंसू चुरा के तेरी प्यारी सी आंखों में अपनी हर खुशी खुशी जी आपके नाम लिखूं।
0: अरे वाह, आप दिल भी लिख दीजिए जान भी लिख दीजिए क्योंकि आप तो हमारी हैं।
1: वो तो दीदी लिख दिया।
0: हाँ जी तो बताइए आज क्या सुनेंगी शबनम जी आप।
1: दीदी फिल्म का नाम रहेगा वादा, उगाने के बोल रहेंगे वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, और सभी श्रोताओं के साथ सुनना चाहती
0: हूँ। हाँ बताइएगा। अच्छा सभी के साथ सुनना चाहती हैं।
1: हाँ जी दीदी
0: ओके,
1: मतलब मेरे लाइव सुन रहे हैं सभी को सुनवाना चाहती।
0: ठीक है सुनवाते हैं प्यारा से गाना। थैंक यू सो मच आपने हमें कॉल किया।
1: थैंक यू बाय
0: बाय टेक केयर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आते हैं इस प्यारे सी गाने के उस पार। आप कहीं मचाइए यूं ही मुस्कुराइए और बस मैं आती हूँ वापस। चारों तरफ मुझे खुशी खुशी सुनाई देता है, लगता है कि कभी मैं अपना नाम ना खुद ही पुकारने लगती हूँ। क्या करूँ इतनी प्यारी जो हूँ।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी और शो चल रहा है आप सभी का फेवरेट हेलो फरमाइश। बात कर लेते हैं अपने अगली कॉलर से। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी बताइएगा सर, क्या सुनना चाहते हैं आज आप? ओके, तो सुनवा देते हैं गीत आपको। धन्यवाद कॉल करने के लिए सर। तो चलिए श्रोताओं, सुन लेते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

0: तेज पवित्र और शक्ति की देवी गंगा की सौगंध।
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफ एम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफ एम मुरादाबाद।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा गीत, बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। जी सर, अपना नाम बताइएगा। जी मैं ठीक हूँ सर, आप बताइएगा कैसे हैं आप।
1: कौन सुन रहा है
0: जी, बताइएगा। ओके ठीक है सर, सुनवा देते हैं गीत आपको। कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका, मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए अयूब जी की पसंद पर सुन लेते हैं ये प्यारा सा ट्रैक। मैं बस वापस आती हूँ छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर। आप भी कॉल लगा सकते हैं श्रोताओं, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मुस्कुराते भी रहिए। लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है।

0: हेलो, गुड इवनिंग टू माय ऑल लवली लिसनर्स। वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी, और स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ वक्त हुआ है 5:01। मेरे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगी कि दोस्तों अपना ख्याल रखना और मुस्कुराते रहना है आपको। एंड लाइफ में देखिए परेशानियाँ आती हैं, हर किसी की लाइफ में आती हैं, ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उस प्रॉब्लम का ना पेशेंस के साथ हमें सामना करना है। माना कि सिचुएशंस ऐसी नहीं होती हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा हम टूट जाते हैं, लेकिन उस वक्त भी खुद को संभालना है, तभी उस मुश्किल से बाहर निकल पाएंगे और हमें रास्ता भी मिलेगा। खुद पर और ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए, वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। बाकी मुस्कुराते रहिएगा और अपने अपनों के साथ रहिए, खुश रहिए हमेशा ऑलवेज। मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपको टुमारो मॉर्निंग 10 से 12। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

0: जिद करो।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।

0: जहां विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी में दिखाई देता है।
1: बिल्कुल, और आज की हमारी यात्रा पहुंची है भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, एक ऐसा जिला जहां विकास की रफ्तार गांव से लेकर शहरों तक नई तस्वीर गढ़ रही है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याण योजनाएं समाज के हर वर्ग तक पहुंच रही हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर स्वरोजगार, बुनियादी सुविधाओं और आर्थिक आत्मनिर्भरता तक।
1: और जब योजनाओं का लाभ सीधे लोगों की जिंदगी बदलता है तो उसकी कहानी सबसे ज्यादा असरदार होती है। चलिए सुनते हैं कुशीनगर की श्वेता जायसवाल की कहानी।
2: जी सर नमस्कार, मैं ग्राम पंचायत म्यूनिसिपैलिटी से हूँ। मेरा नाम श्वेता जायसवाल है और मैं काजल स्वयं सहायता समूह में काम भी करती हूँ। और मुझे सरकार से बहुत सारी उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं, जैसे मेरे नाम से राशन कार्ड भी है। पहले राशन कार्ड हस्बैंड के नाम से होते थे, अब वो हमारे नाम से हैं। और इस समय हमारे नाम से शौचालय है, हमारे नाम से हमारे हस्बैंड जाने जा रहे हैं। पहले हम उनके नाम से जाने जाते हैं, अब उस सरकार की वजह से हम अपने नाम से वो हमारे नाम से वो जाने जाते हैं। और मैं गौशाला भी खोली हूँ, मेरे पास 6-7 गाय हैं। मैं उस गाय से अपना परिवार चलाती हूँ,

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और आज की कहानी है इस शहर की, जहां आस्था की गहराई भी है और विकास की नई रफ्तार भी। जी हां, बात हो रही है गोरखपुर की।
1: बिल्कुल, गोरखपुर जहां की मिट्टी में परंपरा की खुशबू है, तो वहीं आज के बदलते दौर में मेहनत, हुनर और उद्यमिता की नई पहचान भी दिखाई दे रही है। शहर की गलियों से लेकर छोटे छोटे कारोबार तक बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर यहां साफ नजर आती है।
0: और इस बदलाव के पीछे है विकास की ऐसी सोच जिसमें रोजगार के अवसर बढ़े हैं, स्थानीय प्रतिभा को मंच मिले और अपने पैरों पर खड़ी होने का सपना सच हो।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और दूरदर्शी सोच में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ऐसे प्रयास कर रही है जिससे युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं।
0: गोरखपुर में भी इस प्रयासों का असर उन चेहरों पर दिखता है जिन्होंने अवसर को अपनी मेहनत से सफलता में बदलना है।
1: तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं एक ऐसी महिला उद्यमी की कहानी जिनके लिए कारोबार सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का रास्ता है।
2: नमस्कार, मेरी यात्रा 2014 में एक साइकिल से शुरू हुई थी और आज मैं जिस जगह पर बैठी हूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आज मैं उद्यमी के रूप में आप लोगों के बीच आऊंगी। तो ये सब संभव हुआ हमारे प्रयास और सरकार की योजनाओं से।
3: आप अभी इस समय सिद्ध विनायक पैकेजर्स नामक जो आपका संस्थान है, इसके माध्यम से थोड़ा सा और विस्तार में हमको बताएं कि इसको यहाँ तक पहुँचाने के क्रम में आपको किन किन योजनाओं का लाभ मिला, आपके साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनको आपने किन किन योजनाओं का लाभ दिया, और जिससे आपके साथ जो भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनका जीवन स्तर जो सुधरा हुआ है, तो जो विकास की यात्रा है वो आप अपने मुंह से खुद बताएं कि आपके साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनको आप किन किन योजनाओं से लाभान्वित कराया है।
2: पहले तो जब मैं अकेले इस मुहिम में निकली थी तो मैं अकेली थी और साइकिल से मैंने यात्रा को तय किया, और उन दिनों कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि मुझे एक डूडा का जो लोन होता है वो भी नहीं मिल पाया। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, मुझे PNGP से 50 लाख का लोन मिला मुझे आगे काम बढ़ाने में, और मैंने अपने साथ साथ जो मेरी संस्था है वुमेन स्ट्रेंथ सोसाइटी, उसके माध्यम से मेरे साथ हजारों महिलाएं जुड़ी हैं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जुड़ी हैं। तो मैं जिस तरह से मैं यात्रा में अकेले निकली थी, तो मैं ये नहीं चाहती थी कि हमारी बहनों को भी संघर्षों का सामना करना पड़े, इसीलिए मैं अपनी बहनों को जोड़ के, और आज हमारे सरकार की तमाम योजनाएं हैं जो युवाओं के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, उन अपने तो मैं लाभान्वित हुई ही, और अपने साथ साथ मैं अपने संस्था से जुड़ी और भी जितनी बहनें मेरे पास आती हैं उनको सरकार की योजनाओं से मैंने स्वयं लाभान्वित किया, युवाओं को, महिलाओं को। तो सरकार की तमाम योजनाएं हैं जिससे हमारी बहनें जुड़ी हैं, CM युवा से जुड़ी हैं बहनें, ODOP के माध्यम से, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से महिलाएं सम्मानित हो रही हैं, और उन्होंने अपना स्वयं का व्यापार शुरू किया, तो मशीन सरकार से मिलती है और सिलाई का काम उन्हें मैं दे देती हूँ। ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिनसे हमारी बहनें आत्मनिर्भर बनी हैं, और इससे हमारी बहनें भी चाहती हैं, हम भी ये चाहते हैं कि UP गवर्नमेंट जब से उत्तर प्रदेश में आई है तब से महिलाओं का

0: नई सुबह की
1: व्यापार को बढ़ाया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमें एक 8 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारी संस्था को मिला जो ग्रामीण क्षेत्र में लगने वाला है, जिसमें करीबन 300 महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के मुख पर ये मुस्कान कि हम कहाँ जाते रोजगार के लिए शहर में। आज हमारे सरकार की ये देन है, ये उपलब्धि है कि ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने ऐसे अवसर दिए।
2: दिव्यवाली दीदी, आपसे एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, जो मैं जानता हूँ, जो मेरे सुनने में आया है कि आपसे जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो हम लोगों का ये लगता हुआ ब्लॉक चरगावा है, तो चरगावा ब्लॉक के अंतर्गत, उस विकास खंड के अंतर्गत जो वहाँ के BDO साहब हैं, उनसे लाइजनिंग करके, उनसे बातचीत करके तमाम बहनों को आपने जो सरकार द्वारा अन्य जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे आपका जो है आयुष्मान कार्ड हो गया,

महिलाओं को आवास मिला है इस सरकार में। तो वो सारी महिलाएं हमारे साथ इसीलिए जुड़ी है कि मैं सरकार की योजनाओं से उन्हें जोड़ पाती हूँ और उसका लाभ उनको सीधे अधिकारियों के संपर्क के द्वारा उनको हम लोग देते हैं। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, चूंकि मैं सभी अधिकारियों से मिलती जुलती हूँ जाती हूँ, आज हमारे सरकार की बहुत योजनाएं हैं, योजनाओं की बाढ़ है और इससे लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। लेकिन मेरा एक ये भी कहना है कि जितना हो रहा है उससे भी अधिक हो सकता है। तो इसके लिए जो हमारे अधिकारी गण हैं, वो युवा और महिलाओं को कहीं भी देखें तो उनको अपने बुलाएं और उनसे बात करें और उनकी समस्याओं का समाधान करें।

0: मी मांजे पक्का है।
1: कम चाहिए?
0: कम चाहिए।
1: पानी पिला दो सारे।
0: पानी

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओ। FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ श्रोताओ तो 5:40 हो चुके हैं। आर्चरीन आप सभी के बीच है, यानी कि 2 घंटे आप सभी के साथ रहने वाले हैं, ढेर सारी बातें करने वाले हैं। देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और यानी कि बॉलीवुड में कौन सी यानी कि मूवी रिलीज होने वाली है उसकी भी अपडेट देने वाले हैं। साथ ही साथ आज का स्पेशल डे क्या है, हर चीज़ के बारे में बताएंगे। और आप सभी से बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप ट्रैफिक में हैं तो हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक जिम्मेदारी नहीं है, हमारी सेफ्टी है। अगर आप ये पहनते हैं, चाहे 2 कदम पर भी जाए, चाहे दूर तक भी जाए, लेकिन हेलमेट सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। और यूं ही आर्जेरीना के साथ कनेक्ट रहिए, आते एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद, उसके बाद करेंगे ढेर सारी बातें।

दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरक अछार से हूँ। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ।
5: सम्मेलन में श्री वैष्णव ने कहा
6: 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025 से 27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्नपत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें जिससे ये बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन

0: कार्यान्वयन की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है, जबकि 4611 लोग घायल हुए हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय के अनुसार अब से कुछ देर में शुरू होगा। भारत ने अब तक 2 मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को भी बाय मिली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज़।

0: हाय आय हाय। हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं। इवनिंग मस्ती शो में आज जरीना के साथ कनेक्ट हैं आप। और समय की बात करूं तो यानी कि 6:08 हो चुके हैं, दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है। और आप सभी को पता है कि यानी कि सनी देओल की फिल्म यानी कि बंटवारा 1947 और साथ ही साथ इमरान हाशमी की फिल्म यानी कि आवारापन 2 एक ही साथ ये दोनों मूवी रिलीज हुई थी। यानी कि आपने ये दोनों मूवी देखी है तो वेलजन आप बता सकते हैं कि दोनों मूवी में सबसे ज्यादा झकास वाली मूवी कौन सी है। लेकिन साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि जो बंटवारा 1947 मूवी है यानी कि शुरू में तो ये मूवी बढ़ चढ़ के यानी कि पैसे कलेक्ट कर रही थी, लेकिन साथ ही साथ ये धीरे धीरे यानी कि इसकी नैया अब लुढ़क रही है। और वहीं आवारापन 2 यानी कि इमरान हाशमी की फिल्म यानी कि अब आगे बढ़ रही है। इमरान हाशमी के फिल्म की अगर बात करें तो 6 दिनों में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा उन्होंने पार कर लिया है। और वहीं बंटवारे की बात करूं तो करीब यानी कि 30 करोड़ रुपए पर है। तो अब भाई ये मूवी दोनों देखनी पड़ेगी, आखिरकार क्या बात है। जो यानी कि बंटवारा 1947 मूवी है उसकी जो उसकी नैया है वो डामाडोल हो रही है, और आवारापन 2 है यानी कि ब्लॉकबस्टर पर छाई जा रही है। यानी कि दिशा पटनानी इस मूवी के अंदर है इमरान हाशमी के साथ साथ। और यानी कि बंटवारा 1947 में सनी पाजी और प्रीति जेंटा इस फिल्म में दोनों एक साथ हैं। फिलहाल कुछ मैसेज भी हैं, उनको भी साथ ही साथ शामिल करते चलेंगे श्रोताओं और आगे बढ़ेंगे अपने शो में। रणवीर सिंह यानी कि जेठालाल जी कनेक्ट हो गए हैं मुरादाबाद से, हम आपके प्रोग्राम में शामिल हैं, थैंक यू सो मच। बबली अनजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी, रीना मैडम, आपको हमारी तरफ से प्यारी सी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी। दीपक जी गुड इवनिंग पहुंचाते हैं, वेरी गुड इवनिंग जी।
1: रोशनी भरता है।
0: चलिए जी फिलहाल एक गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
1: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
0: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
1: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
0: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओ। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 5:00 यानी कि 6:00

कभी कभी ना मिस्टेक हो जाते हैं श्रोता। यानी कि 6:19 हो चुके हैं और अगर आप राशन आपको मिलता है तो अब किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है तभी आपको राशन मिल सकते हैं, या फिर आपके पास गाड़ी है, लग्जरी कुछ चीज है तो क्या आपको राशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या आप सरकार की तरफ से दी गई राशन का लुफ्त उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे, अगर आप जानना चाहते तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा श्रोताओं। और साथ ही साथ कड़क सवाल भी लेकर आने वाली हूँ मैं आप सभी के लिए। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, तब बताएंगे अगर आपको राशन कार्ड राशन मिलता है तो आप और कौन कौन से, यानी कि 8 बड़े नियम हैं वो लागू कर दिए गए हैं तो इसको जानना बहुत जरूरी है अगर आप राशन आपको मिलता है तो। लेकिन

0: काको काको का हाय हाय हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। आरजे रीना के साथ आप कनेक्टेड श्रोताओं इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूँ तो 6:27 हो चुके हैं और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है। और अब हम बात करने वाले हैं, देखिए रोजमर्रा की जो चीजें हैं, यानी कि सुबह के ब्रेकफास्ट से लेकर शुरू करें तो डिनर तक, यानी कि हर चीज खाने की जितनी भी वस्तु है वो अब महंगी होती जा रही है। दूध की बात करूँ, पनीर की बात करूँ और साथ ही साथ ब्रेड की बात करूँ, यहाँ तक कि हर चीज़ महंगी होती जा रही है। और अब वहीं यानी कि तेल, चावल, आटा, दाल, यानी कि ग्रॉसरी की जितनी भी चीज़ें हैं ना, हर चीज़ यानी कि 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये महंगी होती जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि 2027 में यानी कि और भी डबल रेट बढ़ने की संभावना जताई जाती है। श्रोताओं अब सोचिए, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यानी कि आसमान छूने लग जाएंगे, फिर इनके भी भाव यानी कि चांदी सोने से कम नहीं होंगे। लेकिन फिर भी इंसान को अपनी ज़रूरत तो पूरी करनी है, क्योंकि देखिए इंसान कितने दिन तक भूखे रख सकता है, यानी कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसको खाना तो जरूर चाहिए, है ना। तो अब ये देखा जा रहा है कि भैया आखिरकार 2027 में आखिरकार कितनी ज़्यादा जो इनकी रेटें हैं वो बढ़ने वाली हैं। सोचिए पहले के टाइम में अगर आप दुकान पर जाते थे ना, तो 1 रुपये की भी सामान आपको मिल जाती थी। लेकिन अब 1 रुपये की तो छोड़िए, 100 रुपये भी लेकर चले जाएंगे ना, तब भी कुछ नहीं मिल पाता है, इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है। खैर इसके बाद मैं बात करने वाली हूँ, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया ही है कि राशन कार्ड यानी कि 8 नियम बदल दिए गए हैं, जिसका हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और वो 8 नियम कौन कौन से हैं और किनको ये राशन मिलने वाला है और कौन कौन रहेंगे जो राशन से अब वंचित होने वाले हैं, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120+ रूम्स, स्पा and much more.
3: Book now 92582-53081 and for more details WhatsApp 92582-53081.
4: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 20% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629, विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल रामपुर रोड मुरादाबाद।

हाय हाय हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और फाइनली अब हम बात करने वाले हैं, यानी कि आपके घर में राशन कार्ड है तो ये जो खबर है आपके लिए है सच्ची में। अगर आपको राशन मिलता है तो अब आपने क्या करना है, यानी कि राशन कार्ड को लेकर 8 जरूरी नियम बताए जा रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सभी लाभार्थियों का यानी कि EKYC कराना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, राशन कार्ड यानी कि जो भी है आपके पास यानी कि मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तीसरा, एक परिवार के लिए एक ही राशन कार्ड रखने की बात की जाएगी। यानी कि अब ये है कि पहले अभी बीच में क्या हुआ था कि राशन कार्ड यानी कि उनके माता पिता के नाम अलग, अगर बेटा है चाहे दो बेटे हैं उनके नाम पे भी अलग होते थे, बीच में ये शुरू हो गया था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सिर्फ फैमिली में एक का ही राशन कार्ड होएगा और पूरी फैमिली को मिलेगी उसमें। चौथा, आधार कार्ड का यानी कि सत्यापन जरूरी बताया जाए। पांचवा, अगर किसी को आय तय सीमा से ज्यादा हो गई है तो उसका नाम पात्रता से हटा दिया जा सकता है, यानी कि लग्जरी वाहन वालों को परिवार जो है उनको राशन कार्ड नहीं मिलेगा, उनके नाम से भी यानी कि राशन कार्ड है वो भी कट कर दिया जाए। ये मिलने चाहिए उनको जो जिनके पास सिर्फ लग्जरी घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगले नहीं है, सिर्फ उनके लिए बताया जाए। अगर मैं बात करूं सरकारी कर्मचारी और टैक्स देने वाले परिवार की पात्रता प्रभावित हो सकती है। और आठवां, यानी कि मृत व्यक्ति के जो मृत्यु हो चुकी है उनका नाम राशन कार्ड से हटाना जरूरी है।

0: मैं कॉम्प्लीमेंट।
1: तो अगर आपके घर में राशन कार्ड है, एक बार अपनी जानकारी चेक जरूर कीजिए, कहीं अपनी छोटी सी गलती की वजह से राशन कार्ड का लाभ ना उठा पाए तो इसके लिए आपको ही पछतावा होगा। इसीलिए जरूर चेक करिए और राशन कार्ड, जो भी राशन मिलता है उसका लुत्फ़ उठाइए श्रोताओं। और साथ ही साथ जो जिनके पास जमीन जायदाद, लग्जरी घर गाड़ियां हैं, उनको तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले राशन। और EKYC देखिए कराना बहुत ज़रूरी है। सिलेंडर के लिए भी मैंने आप सभी को बोला था, क्योंकि उसकी डेट बताई गई थी 16 अगस्त तक, लेकिन साथ ही साथ उसकी डेट बढ़ाकर 23 अगस्त कर दिया गया। तो आपके पास टाइम है, यानी कि आज 19 अगस्त, आपके पास आराम से 2 दिन हैं, KYC करा लीजिए। अदरवाइज सब्सिडी और सिलेंडर जब बुक करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। और साथ ही साथ जिनके घर में भैया पाइपलाइन है, उन्हें तो कोई भी परेशानी नहीं होने वाली, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन जिनके घर में पाइपलाइन नहीं है उनको परेशानी हो सकती है। इसीलिए अपना ध्यान रखिए और समय पर ज़रूरी चीज़ें, ज़रूरी दस्तावेज ठीक करवाना बहुत ज़रूरी है। और आज का कड़क सवाल भी मेरा आप सभी से ये है, क्योंकि आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है, तो इस पर मैं आप सभी से यही पूछना चाहूँगी कि आपकी फ़ोन की गैलरी में क्या मम्मी पापा के फ़ोटो हैं? अगर है तो आप मुझे मैसेज करके बताइए। नंबर है 9823789689। अक्सर क्या होता है कि हमारे फ़ोन में ना दोस्तों के, खुद के और बहुत सारे फोटोज़ वीडियोस होते हैं, लेकिन मम्मी पापा के साथ फ़ोटोज़ कम मिलते हैं आपके गैलरी में। तो अब मेरे को यही पूछना है कि लास्ट कब अपने मम्मी पापा के साथ आपने फ़ोटो खिंचवाई थी, और आपकी गैलरी में क्या मम्मी पापा के फ़ोटो हैं? है तो बिल्कुल मैसेज करके बता सकते हैं श्रोताओं। नंबर है 9837 8968। और साथ ही साथ अगर आप यूपी से हैं और बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी।

Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

हेलो जी, गर्ज वाली इवनिंग है श्रोताओं, आरजोरीना के साथ आप कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूँ तो 6:48 हो चुके हैं और अब हम यानी कि बात कर रहे थे आप सभी के बीच, यानी कि अगर आप यूपी से हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको सरकार की तरफ से मदद मिल सकती है। लेकिन बात यह है कि अगर आप यूपी से हैं तभी आपको उसका लाभ मिल सकता है। आप छोटा मोटा काम करना चाहते हैं, दुकान खोलना चाहते हैं, कारखाना खोलना चाहते हैं या सामान बनाने के लिए कोई छोटी मोटी शॉप खोलना चाहते हैं तो ये जो अपडेट है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सरकार की एक योजना है जिसमें बैंक से काम शुरू करने के लिए पैसा उधार यानी कि लोन मिल सकता है, यानी कि ODOP के तहत आपको ये पैसे मिल सकते हैं। इन लोन में सरकार कुछ पैसा खुद देगी जिससे आपका लोन का बोझ कम हो जाएगा। इसमें आपको 25% तक की मदद मिल सकती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 20,00,000 रुपए तय की मदद मिल सकती है आपको। और अब सवाल ये आता है कि इसका लाभ कौन उठा सकता है। इसका फायदा यानी कि 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग उठा सकते हैं। बस आपका पहले से बैंक का पुराना कर्ज बकाया नहीं होना चाहिए। अगर आपने पहले से ही बैंक से कोई लोन ले रखा हो आपने तो आप इसके लुप्त उठा नहीं सकते हैं, इसके लुप्त से आप वंचित रह पाएंगे। ये जरूर ध्यान रखिए, अगर आपने पहले कोई लोन ले रखा है तो आपको ये लोन नहीं मिल सकती। तो अगर आपके मन में भी आपका काम शुरू करने का सपना है तो इस योजना के तहत आप सरकार से यानी कि मदद ले सकते हैं और छोटा मोटा काम अपना शुरू कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप टाइम से पहले ही लोन अगर आप वापस कर देते हैं तो आपको और भी फायदा मिल सकता है, यानी कि बोला ना मैंने 25% की यानी कि मदद मिल सकती है आपको। सो इसी के साथ हमने आपसे ये भी पूछा था श्रोताओं कि आज वर्ल्ड यानी कि पूछा था ये कि आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है तो आपके फोन में क्या मम्मी पापा के फोटो है आपके फोन में या नहीं है, ये पूछा है मैंने आज। आज कोई ज़्यादा सवाल नहीं ताकि ज़्यादा कि आपको दिमाग लगाना पड़े, दिमाग से सोचना पड़े, बस ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे कि आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है तो क्या आपके फ़ोन के गैलरी में मम्मी पापा के फ़ोटो है या नहीं है, ये बताना है आपने। एक गाने के बाद लौट कर आती हूँ और आपके मैसेज शामिल करूँगी या लूँगी यहाँ से। फुर्र होने की इजाज़त।

हेलो जी, मसूरी कॉलोनी से मुरादाबाद इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं। रीना जी, गुड मॉर्निंग तो नहीं हो रहा है सर, गुड इवनिंग हो रहा है। आप कैसी हैं? बहुत अच्छे जी। बिंदास मॉर्निंग शो नहीं है सर, बिंदास यानी कि इवनिंग मस्ती शो है। और अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच जी, गाने अच्छे प्ले कर रहे हैं। लेकिन सर, मुझे लग रहा है कि आपने सुबह वाला मैसेज सीधा बस कॉपी किया और पेस्ट कर दिया है, बस आपने चेंज नहीं करा। ये गलत बात है आपकी, क्योंकि सुबह मैंने ही शो करा है तो मेरे को पता है सर। अंसार हुसैन जी कनेक्ट हो गए हैं दौलतबाग मुरादाबाद से, और इनका कहना है कि वाह रीना जी, क्या काम की जानकारी आपने बताई है राशन कार्ड के बारे में। आय हाय, मजा ही आ गया इस जानकारी को सुनकर। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, मजा आया। और बबली अंजान जी, गीता कश्यप जी कहती हैं कि आज कोई सवाल नहीं पूछा है, धत तेरी की। आज मैंने आप सभी से पूछा तो है कि आपके गैलरी में मम्मी पापा के फोटो है या नहीं है। विकी सागर जी कनेक्ट हो गए हैं गुड इवनिंग के साथ। मुरादाबाद यूपी से जेठालाल जी कनेक्ट होते हैं रणवीर सिंह, और इनकी ये कहते हैं कि मेरे फोन की गैलरी में मम्मी पापा के फोटो नहीं हैं, तो आज खींच लीजिए सर। ललिता कश्यप जी ने तो भैया पूरी फोटो फ्रेम ही शेयर कर दिए हैं अपनी मम्मी पापा के साथ। क्या बात है जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रीटी लग रहे हो आप सभी। और मुझे लगता है कि फ़ोन के गैलरी में ना, देखिए यार, मम्मी पापा के फ़ोटो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे गोल्डन रतन हैं। और रतन के फ़ोटो ना हो फ़ोन में तो क्या ही फ़ायदा, क्योंकि फ़ोन भी वही दिलाते हैं, रिचार्ज भी वही कराते हैं। आई नो कि जब आप कमाने लग जाते हो तो वो नहीं करवाते हैं, और ख़ुद के दम पर आप फ़ोन ले भी लेते हो, लेकिन जब तक आप नहीं कमाते हो पूरा खर्चा तो वही उठाते हैं, और उन्हीं के फोटो हमारे फोन में कम होते हैं। तो आज ही अगर आपने आपके फोन में गैलरी में फोटो नहीं है तो आप अपने

मम्मी पापा के साथ फोटो जरूर खिंचवाइए और अपने फोन में जरूर रखिए। अगले मैसेज की बात करूँ तो सरोज संजू जी हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। हाय दी,

0: मम्मी पापा के फोटो, लेकिन एक शादी में जब ये गए थे तब इन्होंने खिंचवाया था। चलिए जी, नहीं है तो कोई बात नहीं, दोबारा खिंचवा लीजिएगा। और मम्मी पापा के फोटोज है ना, फोन में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे अनमोल रत्न है। हम अपनी भी फोटो, कितनी फोटो खींचते हैं अपने फोटो से ही, फोन की जो गैलरी है उसको इतना स्टोर कर देते हैं। अगर खुद की फोटो की हम बात करें तो 400 प्लस में होंगे, लेकिन वही मम्मी पापा की फोटो देखेंगे कि हमारे फोन में है या नहीं है, तो आपको नहीं मिलेगी, मुश्किल से एक या दो, या वो भी नहीं। तो आज ही से खुद से वादा करिए कि अपने फोन की गैलरी में, चलिए वॉलपेपर नहीं लगाते कोई बात नहीं, लेकिन फ़ोन की गैलरी में मम्मी पापा की फ़ोटो होनी चाहिए। बहुत से रखते हैं, डीपी भी लगाते हैं, मम्मी पापा की डीपी रहती है उनके फ़ोन में, क्योंकि उनके वजह से हम हैं। और सोचिए उन्हीं के फ़ोटो ना होए फ़ोन में तो गलत बात है। चलिए श्रोता, इस बात को आई होप कि आप सभी ध्यान रखेंगे, और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाज़त। कल मिलेंगे, शायद मैं कल मॉर्निंग में भी मिल सकती हूँ या फिर नहीं भी मिल सकती, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकती अभी, लेकिन सेम टाइम सेम जगह नहीं बोल सकती, लेकिन मिलूंगी जरूर कल मैं आप सभी को। चलिए बाय बाय।
1: बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का, 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक, ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4-लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
2: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है, 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में, और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोक नीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। राष्ट्रपति ने अधिकारियों को सलाह दी कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नागरिकों को सूचित करने और उनसे जुड़ने के लिए करें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। इससे पहले उपराष्ट्रपति आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें, जिससे ये बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णनगर अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक पेश की जाए। गृहमंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है, जबकि 4611 लोग घायल हुए हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पाकिस्तान पर 2-0 की बढ़त बना ली है। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को भी बाई मिलने के कारण प्री क्वार्टर फाइनल में जगह मिल गई है। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और आज की कहानी है इस शहर की जहां आस्था की गहराई भी है और विकास की नई रफ्तार भी। जी हां, बात हो रही है गोरखपुर की।
1: बिल्कुल, गोरखपुर जहां की मिट्टी में परंपरा की खुशबू है, तो वहीं आज के बदलते दौर में मेहनत, हुनर और उद्यमिता की नई पहचान भी दिखाई दे रही है। शहर की गलियों से लेकर छोटे छोटे कारोबार तक बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर यहां साफ नजर आती है।
0: और इस बदलाव के पीछे है विकास की ऐसी सोच जिसमें रोजगार के अवसर बढ़े, स्थानीय प्रतिभा को मंच मिले और अपने पैरों पर खड़ी होने का सपना सच हो।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और दूरदर्शी सोच में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ऐसे प्रयास कर रही है जिससे युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं।
0: गोरखपुर में भी इस प्रयासों का असर उन चेहरों पर दिखता है जिन्होंने अवसर को अपनी मेहनत से सफलता में बदलना है।
1: तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं एक ऐसी महिला उद्यमी की कहानी जिनके लिए कारोबार सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का रास्ता है।
2: नमस्कार, मेरी यात्रा 2014 में एक साइकिल से शुरू हुई थी और आज मैं जिस जगह पर बैठी हूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आज मैं उद्यमी के रूप में आप लोगों के बीच आऊंगी। तो ये सब संभव हुआ हमारे प्रयास और सरकार की योजनाओं से।
3: आप अभी इस समय सिद्धिविनायक पैकेजर्स नामक जो आपका संस्थान है, इसके माध्यम से थोड़ा सा और विस्तार में हमको बताएं कि इसको यहाँ तक पहुँचाने के क्रम में आपको किन किन योजनाओं का लाभ मिला, आपके साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनको आपने किन किन योजनाओं का लाभ दिया, और जिससे आपके साथ जो भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनका जीवन स्तर जो सुधरा हुआ है, तो जो विकास की यात्रा है वो आप अपने मुंह से खुद बताना है कि आपके साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनको आप किन किन योजनाओं से लाभान्वित कराया है।
2: पहले तो जब मैं अकेले इस मुहिम में निकली थी तो मैं अकेली थी और साइकिल से मैंने यात्रा को तय किया, और उन दिनों कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि मुझे एक डूडा का जो लोन होता है वो भी नहीं मिल पाया। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, मुझे PNGP से 50 लाख का लोन मिला मुझे आगे काम बढ़ाने में, और मैंने अपने साथ साथ जो मेरी संस्था है वुमेन स्ट्रेंथ सोसाइटी, उसके माध्यम से मेरे साथ हजारों महिलाएं जुड़ी हैं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जुड़ी हैं। तो मैं जिस तरह से मैं यात्रा में अकेले निकली थी, तो मैं ये नहीं चाहती थी कि हमारी बहनों को भी संघर्षों का सामना करना पड़े, इसीलिए मैं अपनी बहनों को जोड़ के, और आज हमारे सरकार की तमाम योजनाएं हैं जो युवाओं के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, उन अपने तो मैं लाभान्वित हुई ही, और अपने साथ साथ मैं अपने संस्था से जुड़ी और भी जितनी बहनें मेरे पास आती हैं उनको सरकार की योजनाओं से मैंने स्वयं लाभान्वित किया, युवाओं को, महिलाओं को। तो सरकार की तमाम योजनाएं हैं जिससे हमारी बहनें जुड़ी हैं, CM युवा से जुड़ी हैं बहनें, ODOP के माध्यम से, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से महिलाएं सम्मानित हो रही हैं, और उन्होंने अपना स्वयं का व्यापार शुरू किया, तो मशीन सरकार से मिलती है और सिलाई का काम उन्हें मैं दे देती हूँ। ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिनसे हमारी बहनें आत्मनिर्भर बनी हैं, और इससे हमारी बहनें भी चाहती हैं, हम भी ये चाहते हैं कि यूपी गवर्नमेंट जब से उत्तर प्रदेश में आई है तब से महिलाओं का और युवाओं का बड़ा विकास हुआ है। जो कहीं नौकरी के लिए जाते थे, आज युवा और महिला स्वयं 10-20 लोगों को रख के समूह के ही माध्यम से अपना व्यापार चला रहे हैं और आत्मनिर्भर बने हैं। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ जिस तरह से मैंने अपने व्यापार को बढ़ाया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमें 1.8 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारी संस्था को मिला जो ग्रामीण क्षेत्र में लगने वाला है, जिसमें करीबन 300 महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के मुख पर ये मुस्कान कि हम कहाँ जाते रोजगार के लिए शहर में। आज हमारे सरकार की ये देन है, ये उपलब्धि है कि ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने ऐसे अवसर दिए।
3: दिव्यवाली दीदी, आपसे एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, जो मैं जानता हूँ, जो मेरे सुनने में आया है कि आपसे जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो हम लोगों का ये लगता हुआ ब्लॉक चरगावा है, तो चरगावा ब्लॉक के अंतर्गत, उस विकास खंड के अंतर्गत जो वहाँ के BDO साहब हैं, उनसे लाइजनिंग करके, उनसे बातचीत करके तमाम बहनों को आपने जो सरकार द्वारा अन्य जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जैसे आपका जो है आयुष्मान कार्ड हो गया, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इस प्रकार की जो अन्य जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इनसे भी आप से जुड़ी जो महिलाएं हैं, अन्य महिलाएं हैं, उनको भी आप वीडियो साहब से बातचीत करके जोड़ने का प्रयास करती हैं, तो थोड़ा सा उसको भी आप बताना।
2: बिल्कुल, वीडियो साहब से हमने प्रयास, क्योंकि महिलाएं कोई भी काम होता है तो मेरे पास आती हैं, तो वृद्धा पेंशन और आयुष्मान कार्ड जिन महिलाओं के नहीं बन पाते हैं, हम लोग जाती है, हमारी टीम, हम भी जाते हैं। तो आज महिलाएं आयुष्मान कार्ड के साथ साथ वृद्धा पेंशन, आवास योजना और आवास के लिए तो ऐसी महिलाएं जुड़ी हैं जो बिल्कुल ऋणी थी, उसकी जरूरत थी, वैसी वैसी महिलाओं को आवास मिला है इस सरकार में। तो वो सारी महिलाएं हमारे साथ इसीलिए जुड़ी हैं कि मैं सरकार की योजनाओं से उन्हें जोड़ पाती हूं और उसका लाभ उनको सीधे अधिकारियों के संपर्क के द्वारा उनको हम लोग देते हैं। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, चूंकि मैं सभी अधिकारियों से मिलती जुलती हूँ, जाती हूँ, आज हमारे सरकार की बहुत योजनाएं हैं, योजनाओं की बाढ़ है और इससे लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं, लेकिन मेरा एक ये भी कहना है कि जितना हो रहा है उससे भी अधिक हो सकता है। तो इसके लिए जो हमारे अधिकारी गण हैं, वो युवा और महिलाओं को कहीं भी देखें तो उनको अपने बुलाएं और उनसे बात करें और उनकी समस्याओं का समाधान करें।
3: बिल्कुल संगीता जी, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी महिलाओं को आपने जो है सरकार की अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा है और साथ ही साथ उद्योग जगत से भी उन लोगों को जोड़ा है, उनका रोजगार का सीजन हुआ है, उनका जीवन सुखमय हुआ है, तो क्यों न हम एक साथ बोले कि विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। धन्यवाद उत्तर प्रदेश सरकार, धन्यवाद पूज्य महाराज जी।
2: धन्यवाद तो उत्तर प्रदेश सरकार को है ही।

0: इसका लाभ उठाया है तो विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
1: सुना आपने, जब सरकारी सहयोग अपने हुनर और मेहनत का साथ मिलता है तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़ी मिसाल बन सकता है।
2: और यही कहानी गोरखपुर के एक और लाभार्थी की है, जहां विकास का मतलब सिर्फ रोजगार या कारोबार तक सीमित नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए जीवन में बेहतर सुविधाओं और सुरक्षा का विस्तार भी है।
3: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश अभियान के अंतर्गत हम आ पहुंचे हैं यहां से लगे हुए गांव घोसीपुरवा में, जहां पर तेजू प्रसाद जी का घर है। उनसे हम जानेंगे कि सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है। तो विकास की कहानी लाभार्थी की जुबानी। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे।
4: हमारा नाम तेजू प्रसाद है।
3: तेजू जी, सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ आपको प्राप्त हुआ है?
4: उनको घर का पैसा मिला, घर बन गया है, आयुष्मान कार्ड का हो गया, राशन कार्ड भी चलता है, माँ का रह गई वृद्धा पेंशन में, और बाकी जो सरकार की तरफ से वो ठीक ही चल रहा है।
3: आपका घर ठीक नहीं था, सरकार की तरफ से आपको आवास मिल गया है?
4: मिल गया, आवास मिल गया, घर बन गया।
3: आपकी माता जी को वृद्धा पेंशन भी मिल रही है, तो फिर भी आप संतुष्ट हैं सरकार की योजनाओं का लाभ पाकर?
4: हाँ, एकदम संतुष्ट हूँ।
3: अभी जिन योजनाओं से आप लाभान्वित हो रहे हैं उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे?
4: उनका धन्यवाद, हमारे लिए इतना कुछ किए, अब उससे अधिक कुछ करें तो और अच्छा ही लगेगा।
3: तो ये थे हमारे साथ तेजू प्रसाद जी, जो यहाँ से लगे हुए गांव घोसीपुरवा के निवासी हैं। हम देख रहे हैं, इनसे भी बात करके हमने जाना और आप भी सुन रहे हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है, संतुष्ट है। कुछ कमियां हैं वो भी पूरी होंगी, जैसे सरकार ने अभी तक विकास की इस कहानी को विस्तृत किया है। हम आशा करते हैं कि बाकी जनता भी जो लाभान्वित होने से अभी वंचित है उसको भी इन सभी योजनाओं का भरपूर लाभ मिलेगा, और तेजू प्रसाद जी की तरह बाकी जनता भी हमारी सरकार से ऐसी ही संतुष्ट होगी और उनके द्वारा संचालित योजनाओं का इसी तरह से लाभ प्राप्त करती रहेगी।
1: यानी एक और मेहनत से आगे बढ़ने का अवसर, तो दूसरी ओर परिवार के लिए सामाजिक सुरक्षा का सहारा, यही योजनाओं का असली असर है।
2: मुख्यमंत्री आवास योजना से परिवार को अपने घर का सहारा मिला, आयुष्मान कार्ड से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की उम्मीद मजबूत की, राशन कार्ड ने परिवार की रोजमर्रा की जरूरत में मदद की, वृद्ध पेंशन ने बुजुर्ग सदस्य के जीवन में आर्थिक संबल जोड़ा।
1: मतलब सरकारी योजनाएं जब जरूरतमंदों पर सीधे पहुंचती हैं, तो उनका असर सिर्फ कागजों पर नहीं रहता, वो घर की चौखट से लेकर फिर खुशियों तक दिखाई देता है।
2: और यही तो विकास की वह तस्वीर है, जहां एक परिवार अपने आज को संभालते हुए बेहतर कल की ओर कदम बढ़ाता है।
1: वाकई इन अनुभवों में सिर्फ सफलता की कहानी नहीं बल्कि बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी दिखाई देती है।
2: और इस बदलाव को जमीन पर किस तरह गति मिल रही है, योजना का लाभ लोगों तक कैसे पहुंच रहा है, इसे लेकर अब सुनते हैं संबंधित अधिकारी की बात।
5: मेरा नाम उज्जवल सिंह है और वर्तमान में मैं जनपद गोरखपुर में डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्री के रूप में कार्यरत हूँ।
3: सबसे पहले जानना चाहूंगी गोरखपुर जनपद में सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो प्रभावी रूप से संचालित हो रही हैं?
5: वर्तमान में प्रदेश सरकार के द्वारा कई सारी जो है योजनाएं एमएसएमई विभाग के द्वारा जो है संचालित है। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन कुसीन स्कीम अभी लॉन्च की है, जिसके अतिरिक्त जो है ODOP मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, CM युवा जिसे हम लोग मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान कहते हैं, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ODOP टूल किट योजना, इसके अतिरिक्त जो है MSME 2022 और टेक्निकल अपग्रेडेशन, ऐसी तमाम योजनाएं जो है संचालित हैं, जिनका जो है लाभ समाज के विभिन्न तबके के लोग जो है उठा रहे हैं।
3: जो संबंधित व्यक्ति हैं इस योजनाओं के, वो किस प्रकार से लाभान्वित हो रहे हैं?
5: जो विभाग के द्वारा योजनाएं संचालित हैं उसमें उनको जो है ट्रेनिंग देने से लेके, यानी कि उनको कौशल उन्नयन से लेके और उनको कैसे जो है स्वरोजगार तक ले जाने के जितने भी चरण होते हैं, हर एक चरण पे जो है हमारी जो विभागीय योजनाएं हैं सरकार के द्वारा जो संचालित हैं उसका लाभ लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे यदि कोई व्यक्ति प्रशिक्षित नहीं है किसी विधा में, तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत जो है दर्जी, लोहार, नाई, टोकरी बुनकर, ऐसे तमाम जो है जो विधाएं हैं उसमें उनको जो है प्रशिक्षण उनको प्राप्त होता है। ODOP के अंतर्गत जो है टेरा कोटा और रेडीमेड गारमेंट से संबंधित जो है प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ऐसे लोग जब प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं और साथ ही अन्य लोग जो इस काम में इच्छुक हैं, कोई अपना काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए जो है ऋण स्कीम है, लोन स्कीम है, उदाहरण के लिए ODOP मार्जिन मनी स्कीम है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, CM युवा

0: जिसे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान कहते हैं, इसके अतिरिक्त एक जनपद एक व्यंजन स्कीम जो भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लॉन्च की गई है, इनके माध्यम से वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो एमएसएमई की इकाइयां हैं उनके लिए एमएसएमई पॉलिसी 2022 है, उसके तहत उनको लाभ प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जो है बहुत सी इकाइयां जो अपने यहाँ टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रही हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की स्कीम है। कुछ लोग जो समूहों में काम करना चाहते हैं, क्लस्टर बेस काम करना चाहते हैं, उनके लिए क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। वो ओडीओपी सीएफसी की योजनाएं हैं, साथ ही गवर्नमेंट द्वारा जो है भारत सरकार द्वारा एमएससी सीटीपी योजना थी, राज्य सरकार द्वारा जो है वो भी लागू है। तो काफी बड़े कैनवास पे जो है कई स्कीमों के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि हर व्यक्ति जो है सरकार की विभिन्न विभागीय योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके।
1: हमारी आधी आबादी महिलाएं, युवाओं के लिए और जो जन समूह में जो लोन करते हैं, इन लोग के लिए क्या क्या योजनाएं हैं, किस तरह से ये लाभान्वित हो रहे हैं उसमें?
0: सभी स्कीमों में जो है विशेषकर महिलाओं के लिए विशेष जो है प्रावधान किया गया है
1: जी।
0: चाहे हमारी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हो, चाहे सीएम युवा हो, चाहे ओडीओपी हो, और चाहे एमएसएमई पॉलिसी 2022 हो, हर स्कीम में महिलाओं के लिए विशेष प्राविधान किए गए हैं। और जहां तक युवाओं की बात है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सीएम युवा स्कीम जो लॉन्च की गई है वो विशेषकर युवाओं को ही फोकस करते हुए लॉन्च की गई है, और जिसमें युवाओं के द्वारा बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया जा रहा है। इसमें 21 से 40 उम्र के जो भी युवा हैं वो अगर अपना कोई उद्यम स्थापित करना चाहते हैं तो विभागीय योजना के माध्यम से वो लाभान्वित हो सकते हैं। और युवाओं को ही दृष्टिगत रखते हुए भी एक जनपद एक व्यंजन जो स्कीम है, क्योंकि ये खान पान से संबंधित है और मुझे लगता है कि युवाओं के द्वारा जो है बढ़ चढ़ के इस तरह से जो व्यंजनों से संबंधित उसमें काफी उनकी रुचि भी होती है, तो उस क्षेत्र में भी वो कार्य कर सकते हैं।
1: कोई व्यक्ति जो इन योजनाओं का लाभ लेना चाह रहा है, किन्हीं कारणों से नहीं ले पा रहा है, क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए उसे?
0: सबसे पहले तो लाभ अगर उसको नहीं मिल पा रहा है तो सबसे पहले हमारे जो ऑफिस है, हमारे ऑफिस में किसी भी कार्य दिवस में वो आ सकता है। यहाँ पे उनको जो है जो भी स्कीम का वो लाभ लेना चाहते हैं उससे संबंधित उनको स्कीम के बारे में बताया जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो है विभाग के द्वारा जो भी योजनाएं हैं हमारी, वो सारी पोर्टल पे ऑन बोर्ड की गई है, तो पोर्टल के माध्यम से भी जाके वो स्कीम के बारे में समझ सकते हैं। तो दोनों ही तरीके हैं, अगर चाहे वो ऑनलाइन मोड में या फिर अगर वो अगर इतने अवेयर नहीं है, लगता है कि शायद चीजें हम पोर्टल के माध्यम से नहीं समझ पाएंगे, तो किसी भी कार्य दिवस में ऑफिस में आके स्कीम्स के बारे में जान सकते हैं।
1: योजनाएं सिर्फ टेबल तक ना रह जाए, कागजों तक ना रह जाए, आम जनमानस तक जाए, प्रभावी रूप से संचालित भी हो, इस पे क्या पैनी नजर है?
0: जितनी भी स्कीम्स हैं, सभी स्कीम्स का यही मकसद होता है कि अंतिम पायदान के व्यक्ति तक वो स्कीम पहुंचे। और हमारी जितनी भी स्कीम है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जितनी भी संचालित स्कीम है विभाग के द्वारा जिनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, बढ़ चढ़ के लोगों के द्वारा उसमें हिस्सा लिया जा रहा है, चाहे वो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना हो, चाहे ओडीओपी स्कीम हो, चाहे सीएम युवा हो, तो सभी में ही बहुत ही मतलब ग्रास रूट लेवल पे भी जो लोग हैं वहां तक वो स्कीम पहुंच रही
1: है। अंत में हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं दर्शकों से यही अनुरोध करूंगा और मेरा यही कहना है कि विभाग और सरकार के द्वारा बहुत सी अच्छी स्कीम्स आपके लिए लॉन्च की गई हैं और ये स्कीम आपकी ही है, और बढ़ चढ़ के जो है इन स्कीम्स का फायदा लेते हुए और उत्तर प्रदेश की आर्थिक तरक्की में आप लोग जो है सहभागी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्री उज्ज्वल सिंह जी। हमें पूरा विश्वास है कि सरकार के द्वारा आयोजित ये इन योजनाओं का संबंधित व्यक्ति अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
2: यानी गोरखपुर की ये कहानी बताती है कि विकास सिर्फ बड़ी इमारतों और बड़ी परियोजनाओं का नाम नहीं,
3: बल्कि विकास वो है जब किसी के हुनर को अवसर मिले, किसी के कारोबार को सहारा मिले और किसी परिवार को आवास, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाओं का संबल मिले।
2: यही है नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर, जहां परंपरा के साथ प्रगति है और अवसर के साथ आत्मनिर्भरता।
3: और गोरखपुर इस बदलती तस्वीर का एक जीवंत अध्याय है।
2: इसी के साथ विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश के आज के एपिसोड गोरखपुर की गाथा में हमें दीजिए इजाजत।
3: जुड़े रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में ऐसी कई कहानियां अभी बाकी हैं।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: 紹介。
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 20% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: की गई हैं जिनमें अभी 56 बसें चल रही हैं और जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ाई जाएंगी। यह नई पहल राजधानी दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन के आधारभूत संरचना को और अधिक मजबूत बनाने और शहर को साफ सुथरी और स्थायी गतिशीलता की तरफ ले जाने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
3: निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम की समय सारणी में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य अब इस महीने की 24 तारीख तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। साथ ही अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि जिन मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा किए हैं वे 31 अगस्त को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम जांच सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन की गिरफ्तारी पर कहा है कि सदन में CAG की 19 रिपोर्ट पेश की गई। उन्होंने कहा कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के समय हुए सभी घोटालों की जांच चल रही है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि CAG की सभी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।
4: 19 CAG रिपोर्ट सदन पटल पे प्रस्तुत की गई, जो कि एक एक घोटाला जो पिछली सरकार आम आदमी पार्टी सरकार केजरीवाल सरकार का था वो घोटाले को प्रस्तुत करता था। सब CAG रिपोर्टों पे कार्रवाई चल रही है, एजेंसीज अपना काम कर रहे हैं और जो बीज बोए हैं वो तो सामने आएंगे ही। तो सत्येंद्र जैन उस नाते से जो उन्होंने स्कैम किया था जल बोर्ड का, उसके नाते से जेल गए हैं और कार्रवाई चल रही है, एजेंसीज काम कर रही है।
3: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार 26 अगस्त को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया कि पेंशन की राशि 1 सितंबर से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना शुरू होने के मात्र 18 दिनों में ही लगभग 8 लाख महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर पंजीकरण कराया था, जबकि इसके बाद 5 लाख से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने आज JJ कॉलोनी और ओल्ड पंखा रोड में अटल कैंटीन का शुभारंभ किया। ये दिल्ली के जरूरतमंद नागरिकों तक सस्ती पौष्टिक भोजन की सुविधा पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पत्रकारों से बात करते हुए श्री सूद ने कहा कि जो लोग दिनभर काम करते हैं और उन्हें घर पर खाना बनाने का समय नहीं मिलता, उनके लिए ये एक उपयोगी सुविधा होगी।
5: जो लोग दिन में 2 बार एक ही बार बना खाना खाते हैं उनके लिए एक उपयोगी साधन होगा और ये हमारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास का जो हमारा नारा है, जिसमें हमने दिल्ली की गरीब बस्तियों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जीवन देने का वादा किया था, उनको वहीं पर पक्के मकान भी देने का काम चालू हो गया है, भोजन देने का काम शुरू हुआ है। ये नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री जी की सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया।
3: श्री आशीष सूद ने आज एक जनसुनवाई के दौरान जनता की समस्याओं और सुझावों को भी सुना। उन्होंने अधिकारियों के साथ संबंधित विषयों पर चर्चा कर समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि जनता की बात सुनना और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना ही जनसुनवाई का उद्देश्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यायालय ने कहा कि इसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र होना चाहिए। एक रिपोर्ट।
6: नीट यूजी 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें, जिससे ये बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश में एक मजबूत परीक्षा संस्थान हो जो विशेषज्ञता को बनाए रखने और तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होने में सक्षम हो। नीट यूजी 2024 प्रश्न पत्र लीक विवाद के बाद इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में के राधाकृष्णन समिति का गठन किया गया था। प्रादेशिक समाचार के लिए जागृति शर्मा।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। न्यायालय ने गृह मंत्रालय और आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका में केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बच्चों की डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान के लिए एक सुरक्षित केंद्रीकृत व्यवस्था बनाने की मांग की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन द्वारा आयोजित स्वास्थ्य और कल्याण शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने उन सभी डॉक्टरों का धन्यवाद किया जिन्होंने इस मेडिकल शिविर में अपनी सेवाएं दी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुनीरका इलाके में मणिपुर के दो लोगों पर कथित हमले की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दो व्यक्तियों ने मणिपुर के इन दो लोगों पर हमला किया था। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आयोग ने इस मामले में दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के मंडोली इलाके में एक इकाई पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान लगभग 250 कम गुणवत्ता वाली एल्यूमिनियम फॉयल पेपर रोल जब्त किए गए। ये कार्रवाई अधिनियम 2016 की धारा 28 के तहत कथित गैर अनुपालन की सूचना मिलने के बाद की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सूचना सेवा सरकार और नागरिकों के बीच संबंध मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। राष्ट्रपति ने अधिकारियों को सलाह दी कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग न केवल नागरिकों को सूचित करने और उनसे जुड़ने के लिए करें बल्कि उनकी चिंताओं को सुनने, समझने और उचित प्रतिक्रिया देने के लिए भी करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
7: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबर्ग साइड तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
3: दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत और अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दिल्ली अधीनस्थ सेवा डीएसएस कैडर के 111 अधिकारियों को पदोन्नत करते हुए उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व और अन्य विभागों में तैनात किया है। सर्विस विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार पदोन्नत अधिकारियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, व्यापार कर और अन्य महत्वपूर्ण विभागों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान श्री जोशी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ऑनलाइन कोचिंग का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और संरचित तैयारी रणनीतियों को देशभर के विद्यार्थियों तक पहुंचाकर एक सशक्त राष्ट्रीय मंच का निर्माण करना है। आगामी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ दूसरे चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी और दक्षिणी परिसरों में सीसीटीवी कैमरों के जरिए मुख्य मार्गों पर निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान आज ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव के लिए सबसे पहले छात्रों को एक एडवाइजरी जारी की गई है कि लिंगदोह कमेटी के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। नई दिल्ली के टिकरी कलां के एक सीएनजी पंप पर आज दोपहर एक ट्रक में धमाका हुआ। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि दोपहर 3:37 पर आग लगने की खबर मिली। अग्निशमन विभाग की 6 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। नई दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी और पीवी सिंधु ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की जोड़ी भी मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है, जबकि पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को बाई मिलने के कारण प्री क्वार्टर फाइनल में जगह मिली है। और अब बात मौसम की। राजधानी दिल्ली में आज कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि कल बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में

200 नई इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ, 56 लेडीज स्पेशल बसें विशेष रूटों पर चलाई जाएंगी। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय सारणी में संशोधन किया, प्रमुख तारीखें आगे बढ़ाई गई। दिल्ली सरकार 26 अगस्त को दिल्ली लक्ष्मी योजना की पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी और नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी और PV सिंधु ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।

0: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं फिल्म मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और आज की शाम और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद अजीम। अजीम भाई, वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। कैसे हो भाई?
1: बढ़िया, एक नंबर।
0: क्या बात है, एक नंबर तो आप हो ही, नो डाउट यार। और अजीम जब भी आता है कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आता है, आई एम श्योर आज की शाम भी कुछ खूबसूरत चीजें लेकर आएगा हमारे दोस्तों के लिए। तो अजीम, ये बताओ रेडियो पे आके कैसे लग रहे हैं अब जब आए?
1: मजा आ रहा है।
0: क्या बात है, बहुत
1: ही डर ही रहा हूँ लेकिन बढ़िया, मजा आ रहा है।
0: वेरी नाइस यार, लेकिन डरना मत भाई। देखो जो मेरे साथ बैठते हैं उन्हें डर नहीं लगता है क्योंकि मैं बहुत अच्छे से हॉस्पिटैलिटी देता हूँ। पता नहीं चलता है कि कब हमने इंटरव्यू करके एंड भी कर दिया,
1: ये तो
0: है ना। एंड आई होप आपको भी मजा आ रहा होगा
1: बहुत ज्यादा।
0: तो यार आज की शाम जो है हम कुछ बेहतरीन सा सुनना चाहेंगे अपने दोस्तों के नाम, अपने लिसनर्स के नाम। आप क्या सुनाना चाहोगे?
1: स्टार्टिंग में तारीफ की करना चाहूंगा क्योंकि पिछले वीक जो सुनाया था वो सूर्य स्टार्टिंग ही सैडनेस।
0: मुझे लगता है कि यार तारीफ अगर हो जाए तो फिर मजा आ जाए। हाँ, चार चांद बन जाए। हाँ, है ना, चार चांद तो लग जाएंगे।
1: करो ना अपने महबूब की किस तरीके से कहो।
0: हाँ, क्या बात है, महबूब की तारीफ, वाह।
1: पता है मुझे पहले कुछ था पर अब अहमक हूँ मैं,
0: वाह।
1: पर तू नहीं, तुम मेरे लिए क्या हो सुनना चाहती हो? तुम मेरे लिए क्या हो सुनना चाहती हो तो सुनो। तुम खूबरू हो, खुश अंदाम हो तुम। तुम खूबरू हो, खुश अंदाम हो तुम, सिफाते हुस्न से बहरावार हो तुम।
0: क्या बात है, वेरी नाइस है, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। गाइज ऐसी बहुत सारी कॉन्वर्सेशन अभी इसके साथ करनी है, आप कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून रहिए आरजी आनंद के साथ। एक से गाना, उसके बाद जल्दी से लौट कर आते हैं मोहम्मद अजीम के साथ। अजीम वेलकम बैक है वंस अगेन एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में मेरे भाई। अब बताओ अब क्या सुना रहे हो? अभी तो तुमने तारीफ कर दी, बहुत मजा आया तुम्हारी तारीफ सुन के, मुझे भी और मेरे लिसनर्स को भी, आई एम श्योर उनको भी अच्छा ही लगा होगा। तो अब जरा कुछ बेहतरीन सुना दो यार।
1: हाँ क्यों नहीं, उसके बाद आप एक पोएट्री अपनी महफिल में उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी महफिल में उसके अफसाने बयां करना चाहते हैं, तो उसके लिखी थी मुसलसल चलता रहेगा ये कादिम सफर।
0: वाह,
1: मुसलसल चलता रहेगा ये कादिम सफर, मुख्तलिफ रहेंगे हम तुमसे।
0: वाह जी,
1: मुख्तलिफ रहेंगे हम तुमसे, और एतबार करना हमारी महफिल में तुम्हारे ही अफसाने बयां होंगे।
0: उर्दू इतनी गजब की है तुम्हारी, इतनी धाकड़ आपने बोला है, मतलब मजा आ गया, बेहतरीन। कोई हिंदी वाली भी सुना दे यार।
1: हाँ हाँ बहुत हैं।
0: हाँ तो कुछ बढ़िया से सुना दे। आज अजीम जो है अपनी डायरियों के पन्नों की आवाज आपको सुना रहा है, तो छका छक पलट रहा है वो, और उसमें से कुछ बेहतरीन ताजा ताजा फ्रेश कॉन्टेंट आपको दे रहा है। हाँ अजीम,
1: एक शायरी है अब मोहब्बत से कह रहे हैं कि दगा उसने की थी तो उस पर लिखी थी, दगा उसने की थी तभी हम शायर हैं।
0: वाह,
1: मोहब्बत सच्ची हमने की थी तभी हम शायर हैं।
0: याद करो,
1: दगा करते हम भी तुम्हारी तरह तो क्या कह पाते तभी हम शायर हैं। मोहब्बत तुम भी करो किसी से और वो करे किसी और से, बैठो तुम भी किसी महफिल में हमारी तरह और सुनाओ अपनी शायरी और कहो, दगा उसने की थी तभी हम शायर हैं, मोहब्बत सच्ची हमने की थी तभी हम शायर।
0: क्या बात है यार, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। अच्छा अजीम एक बात बताओ, ये जो शेर व शायरी है ये कहाँ से निकलती है? कुछ लोग कहते हैं गजलों से शायरी बनी है, कुछ लोग कहते हैं टूटे दिल से शायरी बनी है, तुम्हारा क्या मानना है?
1: शायरी अपने आप आती है।
0: अच्छा गजलों से भी मैंने सुना है कुछ निकलती है
1: ये, जितने भी जैसा आपने उन्हें सुना होगा नुसरत फतेह अली खान को,
0: नुसरत साहब को, उनके गानों में
1: उनकी कुछ नहीं होता, मतलब जहां तक मुझे पता है, मैं माफी चाहता हूँ अगर कुछ बोल रहा हूँ गलत, तो वो भी एक पोएट से ही पोएट्री सारी लिखी जाती है, शायरी लिखी जाती है, वो भी उसे बस पढ़ते हैं,
0: उनका तरीका अलग होता है एक्सप्रेस करने का,
1: वो भी पोएट की ही कुछ लिखा हुआ होता है जो वो पढ़ते हैं।
0: ओके ओके, अच्छा एक बात बताओ, जो नज्म होती है उसमें और शेर व शायरी में कितना डिफरेंस होता है?
1: बहुत कम होता है, ज्यादा नहीं होता है कह सकते हैं, थोड़ा बहुत है।
0: ओके ओके ओके, तुम्हें कोई नज्म याद है?
1: नहीं फिलहाल तो मेरे को।
0: ओके ओके ओके, मतलब अभी तुम सिर्फ शायरों शायरी और पोइट्रीज में तुम ज्यादा रहते हो एक्टिव। कोई पोइट्री जो आपके दिल के बहुत करीब हो?
1: हाँ है, ये उस पे है जैसे कि मैंने लिखी थी, मुस्लिम हूँ फिर भी लोग पूछते हैं नशा शराब का करते हो क्या, मुस्लिम हूँ फिर भी लोग पूछते हैं नशा शराब का करते हो क्या, न बीड़ी न सिगरेट न नशा शराब का है, न बीड़ी न सिगरेट न नशा शराब का है, मुझे नशा है तो बस उसकी आंख का है, मुझे नशा है तो बस उसकी आंख का है, और वैसे भी उसकी आंखें किसी शराब से कम थोड़ी हैं, हमें शराबी कहो मगर शराब का नहीं, उसकी आंख का कहो ना।
0: क्या बात है, क्या बात है अजीम, वेरी वेरी वंडरफुल यार। ऐसी अजीम की शेरो शायरी आप तक पहुंचती रहेंगी, एक काम करेंगे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद जल्दी से लौट कर आए। यार अजीम बहुत अच्छी शेरो शायरी कर रहे हो, बहुत अच्छी पोइट्री कर रहे हो, लेकिन मेरे एक दिल की ख्वाहिश है उस पर कुछ सुना दो। तो जैसे आपको पता है ना आजकल लोग बड़ी धोखेबाजी करते हैं, है ना, दिल लगी बहुत करते हैं जैसे कहते हैं हम लोग, प्यार करते तो हैं लेकिन बाद में पता चलता है वो प्यार नहीं था, वो सिर्फ एक टाइम पास था, है ना, अट्रैक्शन था। तो उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे, सामने वाले ने आपसे दिल से मोहब्बत कर ली है लेकिन जब उसे पता चल रहा है कि नहीं ये तो टाइम पास था, ये तो उसके साथ में एक शातिर वाला गेम हो गया है ना, एक शतरंज वाली चाल हो गई, तो इसपे आप क्या कहना चाहोगे?
1: है एक शायरी उस पे है कि जैसा आपको टाइपिंग करते हुए भी होता है ना चैट पे धोखा देता होता है एक तरीके से, उस पे मैंने शायरी लिखी थी। तू पूछ तो सही हुआ क्या मैं बताता हूँ तुझे बेचैन हूँ मैं, तू पूछ तो सही हुआ क्या मैं बताता हूँ तुझे बेचैन हूँ मैं, तू पूछ तो सही बेचैन क्यों हो मैं बताता हूँ तुझे वजह तुम हो, तू पूछ तो सही मैं कैसे हूँ तुम्हारी बेचैनी की वजह, मैं बताता हूँ तुझे तेरा बात ना करना खंजर से ज्यादा जख्म।

0: मतलब जहाँ इंटरेस्ट होता है वहाँ आदमी पहुंच ही जाता है, मेन बात तो ये है। तो फैमिली वगैरह का क्या सपोर्ट रहता है, उनको पता है कि तुम्हारा ये अंदर से एक वाइब है, तुम्हें ये करना है, तुम्हारा पैशन है?
1: हाँ पता है उन्हें। फर्स्ट शो में तो मैंने भाई से ही पैसे लिए थे जाने के खर्चे के लिए, बट इतना वो नहीं है कि उन्हें लगता है कि पैसा ही आए तभी ज्यादा बेटर है, क्योंकि तो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं। मुझे 3 साल से कर रहा हूँ मैं भी, बट मुझे बीएससी भी करनी थी साथ साथ, क्योंकि उसमें बैक आती, उस चीज से कर रहा हूँ, बस ये भी पैशन है कर रहा हूँ।
0: तो अच्छा, इसमें फ्यूचर बनाने का प्लान कर रहे हो आगे?
1: हाँ सोच तो रहा हूँ कि इसमें निकल जाऊँ तो ज्यादा
0: क्या स्कोप है वैसे यार।
1: हाँ
0: क्या स्कोप है इसमें, फ्यूचर क्या रहता है
1: इसमें? एक तरीके से देखा जाए तो आदमी कामयाब मरने के बाद ही है, क्योंकि शायर की शायरी मरने के बाद ज्यादा फेमस होती है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। लेकिन ये चीज हम चाहेंगे कि तुम जो कामयाबी है ना वो ऐसी हासिल करो जैसे अखिल भैया ने एंट्री मार के करी है अभी, इसीलिए तो उनको हवा हवाई कहते हैं हम। वे आगे बढ़ेंगे, वो बीच में कभी भी आ जाते हैं, और जब जो बिन बुलाए नहीं आते हैं, जिनको रिस्पेक्ट के इज्जत के साथ बुलाए जाते हैं वो हवा हवाए होते हैं। और अभी आए हैं तो एक दो शायरी इनसे भी सुनेंगे, मगर इनको थोड़ा वक्त देंगे, अभी लैपटॉप निकालेंगे और अपने दिल के जज्बात उस पर सर्च करेंगे, फिर आपके सामने उनको पेश करेंगे। लेकिन हेलो हाय तो सुन लेते हैं। हाय अखिल भाई, हाउ आर यू?
2: आई एम गुड, कैसे हो आनंद?
0: बिल्कुल बढ़िया। आपने जो ये धक्का मार के गेट खोला है ना, इसकी बेइज्जती हुई आज, एक बार नोक नोक तो कर ही लेते यार।
2: आजकल ना बिना धक्का मारे कोई काम नहीं होते, ये सच्चाई है।
0: जो कपिल शर्मा बोलते हैं ना, 3 बार ताली ठोके, वही वाला मैंने इनके लिए कर दिया है। खैर अखिल भाई, ये अजीम जी हैं और ये अमरोहा से बिलोंग करते हैं, और इनके आसपास में कोई एरिया पड़ता है जहाँ से ये है पर्टिकुलर?
2: जोया।
0: हाँ, जोया के आसपास में ही है शायद, एक और उसके आगे भी कुछ है इनका एरिया। और ये बहुत अच्छा पोएट्री वगैरह करते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया लिखते हैं और बहुत अच्छा सुनाते भी हैं।
2: कब से आपको पोएट्री का शौक है?
1: ये तो मैं बहुत टाइम से लिख रहा हूँ,
0: मैं वही इससे पूछ रहा था
1: अभी। अभी हाँ पर्टिकुलर टाइम से लिखना चालू, बहुत टाइम से लिखना चालू करता, पढ़ता था चीजों को, देखता था, अपने आप आती थी, बट लिखना जो स्टार्ट करा वो लाइब्रेरी जाने वक्त से लिख रहा, मतलब लगभग 3 साल हो गए लिखना तब से स्टार्ट करा, जब दोस्तों को सुनाई चीजें, उन्होंने अच्छा कहा कि हाँ सही लिख रहा है तू जा, तो मुझे लगा कि जाना चाहिए, लिखना चाहिए और, तो मैंने और अच्छी चीजें लिखी, टाइम दिया इसे भी थोड़ा, तो मुझे पसंद आया।
0: अच्छा, आप अखिल भाई के सामने क्या सुनाना चाहोगे, कोई बढ़िया सी अपने दिल की, जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब हो, कोई शायरी या पोएट्री?
1: हाँ है ना, किसी की तस्वीर होती है ना कि उसकी तस्वीर, तो उस पे शायरी लिखी थी, कुछ बीते लम्हे कुछ बीते बातें याद करता हूँ, कुछ बीते लम्हे कुछ बीती बातें याद करता हूँ, तुमने तो कर ली किसी और से शादी, तुमने तो कर ली किसी और से शादी, पर मैं आज भी तेरी तस्वीर तकता हूँ और घुट घुट के मरता हूँ, और हाँ कहने को तो तेरी तस्वीर फोन में है, और हाँ कहने को तो तेरी तस्वीर फोन में है, मैं उसे आज भी अपने दिल में रखता हूँ।
0: वेरी नाइस है अखिल भाई, क्या कहना चाहोगे आप ये बताइए।
2: मैं अपने पर्स में एक तस्वीर ढूंढ रहा था।
0: हाँ, वो तस्वीर मेरे पर्स में गलती से आ गई, मैं आपको बाद में वापस कर दूंगा, आप चिंता ना करें। तो अभी अखिल भाई आप भी कुछ सुनाओगे ऐसी अच्छी सी चटपटी शायरी?
2: क्या क्या चाहते हैं आप, मेरे से कुछ सुनना चाहते
0: हैं? हाँ हाँ, बस ऐसा सुनना चाहते हैं जिसमें थोड़ी सी हंसी आ जाए आपसे, मुझे यही एक्सपेक्ट है। मतलब अच्छी बात है, एक माहौल बना हुआ है, मतलब पूरा शायराना माहौल बन रहा है, और अजीम बहुत अच्छी अच्छी शेर शायरी करता है, इतना बढ़िया लिखता है, इसकी राइटिंग देखो, मुझे लगता है इसे तो बॉलीवुड में चले जाना चाहिए। हमारे गौरव से नहीं बोला अभी इसको ये बात?
2: नहीं नहीं, बॉलीवुड में जाएंगे, जरूर जाएंगे, और मुरादाबाद का नाम भी जो है हमारा एक बार फिर से बॉलीवुड में फिर चमकेगा। और कमाल की बात यह है कि आप जहाँ से अमरोहा से हैं तो कमल अमरोही,
0: अरे हाँ, क्या बात है,
2: तो उनके उन्होंने वहाँ पे एक स्टूडियो बनाया था, तो बहुत ही, आज भी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो एकदम आपको पता चल जाएगा।
0: तो ऐसे बहुत सारे जाने माने नाम हैं जो अब इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, और हम मुरादाबाद की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो बात अलग है। और हमें ये इंडस्ट्री बहुत प्यारी है, क्योंकि मुझे लगा अपने शहर में भी बहुत कुछ किया जा सकता है,
2: क्यों नहीं,
0: है ना? क्यों नहीं ऐसा हो कि मुंबई की सेलिब्रिटीज को मुरादाबाद में इंटरव्यू क्यों बुलाया जाए,
2: क्यों नहीं, आपने तो बुलाया भी है, आपने तो इंस्टाग्राम पे करा भी है,
0: ये पॉसिबल हो सकता है अगर आपके इरादे मजबूत हो तो, क्यों,
2: बिल्कुल सही।
0: खैर, हमारा जो सेशन है वो इरादों और पॉजिटिविटी से भरा नहीं, आज दिल की शेर शायरी से भरा हुआ है, तो कुछ कहना चाहोगे?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी मैंने आपकी सुनी तो उसमें आप कह रहे थे कुछ फनी सा हो जाए, तो उस पे सुना दूं?
0: अरे बिल्कुल यार, बस इतना फनी हो कि हम लोगों को हंसी आए, बाहर वालों को ना आए। खैर,
1: उस पे तो रखा था मैंने भी फूल अपनी किताब में तुम्हारे नाम का, पहना था लॉकेट अपने गले में तुम्हारे नाम का, रखा था फूल मैंने भी अपनी किताब में तुम्हारे नाम का, पहना था लॉकेट अपने गले में तुम्हारे नाम का, तुम एक बार हाँ तो करो, तुम एक बार हाँ तो करो, अपनी महफिल में पौआ बटवा दूंगा मैं तुम्हारे नाम का।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मैं फिलहाल पानी बटवाना चाहता हूँ, गर्मियाँ बहुत ज्यादा हैं, तो आप पानी की तरफ ज्यादा ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं और एक गाना सुनते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक, वंस अगेन अखिल जी हैं साथ में, मोहम्मद अजीम हमारे साथ ढेर सारी बातें कर रहे हैं, और मैं हूँ आपके साथ आरजे आनंद। पिछली बार जब अजीम आए थे तो उसने बहुत अच्छी अच्छी आपको पोएट्री सुनाई।

0: कहानियां, कहानी तो नहीं सुनाता ये, आई थिंक इसका जोनर है या नहीं, आई डोंट नो, है भाई तेरा जोनर? हाँ, ये पोएट्रीज करता है, बहुत ही बढ़िया। तो अब जो है यार, हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, अभी हम बात कर रहे थे फनी वाली, अब थोड़ी सीरियस बातें कर लेते हैं, जिनके दिल टूट जाते हैं उनके बारे में बात करना जरूरी है। उस पर क्या कहना चाहोगे, टूटे आशिकों के लिए कहना चाहोगे? अखिल जैसे लोग बिल्कुल टूटे आशिक नहीं होते, ना ही मैं हूँ, तो आप हम दोनों को छोड़ के कुछ भी बोल सकते हैं।
1: हाँ, एक है लेकिन टूटे आशिक नहीं, लेकिन अपनी मोहब्बत को आप सबसे नायाब बताना चाहते हैं।
0: हाँ बिल्कुल,
1: आपकी मोहब्बत सबसे नायाब है, उस पर लिखी थी मैंने। किसी ने पूछा वही क्यों हमारे दिल से बस एक बात निकली, किसी ने पूछा वही क्यों हमारे दिल से बस एक बात निकली, किसी की जिंदगी तो किसी का ख्वाब है वो, किसी की जिंदगी तो किसी का ख्वाब है वो, यूं तो लाख हसी हैं जहां में यारो, यूं तो लाख हसी हैं जहां में यारो, पर वो सबसे हसी और सबसे नायाब है वो, सबसे नायाब है वो।
0: क्या बात है, वकील जी ने अपना जो है पिटारा तैयार कर लिया है कुछ सुनाने का, तो इनके पिटारे को ध्यान में रखते हुए माइक में इनकी ओर जो है लगाना
2: मैं
0: अभी,
2: मैं अपने सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा,
0: श्रोता मेरे भी हैं,
2: कि जो भी मेरी आवाज निकल रही है दिल से, जो भी शायरी निकल रही है
0: जी,
2: वो सब आनंद की दिल की भी है, जो आनंद अपने से कहना चाह रहा था,
0: कह नहीं पा रहा कि मैंने लिख के इनको फॉरवर्ड कर दिया कि भैया ये मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलिए, जूते पड़ेंगे तो सर आपका होगा, मेरा नहीं, मेन बात ये है।
2: आनंद जी भी जो है हर सीजन वेट करते हैं कि कब मेरा सीजन जो है होगा पूरा।
0: मतलब कहना क्या चाहते हो, सीजन का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, इट्स नॉट कपिल शर्मा शो, वो सीजन 5 सीजन 2 नहीं चल रहा है ये। हाँ, फिलहाल यहाँ पर शेरो
2: तुम्हारी, तुम्हारी मुस्कान का असर कुछ ऐसा होता है,
0: वाह,
2: दिल का हर कोना रोशन सा होता है,
0: गजब।
2: यू तो जी लेते हैं हम हर दिन अकेले, यू तो जी लेते हैं हम हर दिन अकेले, पर तुम्हारा साथ जिंदगी से भी प्यारा होता है।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, ये
2: इंस्टेंट शायरी कहते हैं ना इसे,
0: इंस्टेंट शायरी ये होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर। ऐसे सेंस ऑफ ह्यूमर में 5 किलो आलू ना बांट दूं फ्री में गली के मोहल्ले में,
2: 5 किलो तुम 5 गिलास नहीं पिला पा रहे हो पानी लोगों को।
0: क्या बात कर रहे हो, मैं 5 बॉटल पानी पिला चुका हूँ, 5 गेस्ट आए थे सुबह से मेरे ऑफिस में, कोई था नहीं आज।
2: बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो गर्मी में आनंद, बहुत अच्छा,
0: थैंक यू सो मच। बस आपको नहीं पिलाया, अभी थोड़ी देर बाद आपको भी सर्विस देंगे पानी की, आप चिंता ना करें। वेल आगे बढ़ते हैं गाइस, ये बहुत अच्छी बात है, पानी लाते रहिए और पानी पीते रहिए। क्यों अखिल भैया, अब ये माइक जो है उस लड़की की तरफ भी करते हैं जो एक बड़ी देर से हमारी तरफ बैठी है और हम लोगों को घूर रही है, हमारे बीच में प्राची भी है, आज की जो शाम है महफिलों से सजी हुई है। प्राची क्या करते हो तुम, अपने बारे बताओ।
3: मैं पोइट्री करती हूँ कभी कभी, और मैं एक पोइट्री है, एक शायरी है जो मैं आपको सुनाऊंगी। लगता है मुझे कि नहीं बस जिंदगी पे हमारा, लगता है मुझे कि नहीं बस जिंदगी पे हमारा, इसमें दस्तकें तो खुदा की भी होती हैं, इसमें दस्तकें तो खुदा की भी होती हैं, ऐसा कहता है अनुभव हमारा। वैसे तो नहीं देखी हमने दुनिया सारी, वैसे तो नहीं देखी हमने दुनिया सारी, पर फिर भी से सवाल हमारा, क्यों किसी की एक ही खूबी काफी है दिल में समा जाने के लिए, क्यों किसी की एक ही खूबी काफी है दिल में समा जाने के लिए, और किसी की 1000 खूबी भी दिखे वो फिर भी नहीं हमारा।
0: क्या बात है, वेरी नाइस प्राची, मजा आ गया तुम्हारी शायरी सुन के। और तुमने इसमें एक बात बोली थी, वैसे तो नहीं देखी हमने दुनिया सारी, वैसे तो नहीं,
3: खुद से सवाल हमारा,
0: क्या बात है। और
3: मतलब कड़ी, वी माइट बी रॉन्ग,
0: हाँ,
3: पर स्टिल मतलब एक हम कह रहे हैं कि हो सकता है हम गलत हो, पर अभी तक जितने एक्सपीरियंस है बेस्ड ऑन दैट कि खुद से एक सवाल हमारा, क्यों किसी की एक ही खूबी काफी है दिल में समा जाने के लिए, और किसी की 1000 खूबी भी दिखी वो फिर भी नहीं हमारा।
0: नहीं, वो क्या लाइन बोली थी, दुनिया देखी हमारी, स्टार्टिंग में कुछ बोला था
3: नहीं, एक बार मैं दोबारा से कहना चाहूंगी।
0: हाँ,
3: लगता है मुझे कि नहीं बस जिंदगी पे हमारा, इसमें दस्तकें तो खुदा की भी होती हैं, इसमें दस्तकें तो खुदा की भी होती हैं, ऐसा कहता है अनुभव हमारा। वैसे तो नहीं देखी हमने दुनिया सारी, वैसे तो नहीं देखी हमने दुनिया सारी, पर फिर भी खुद से एक सवाल हमारा, क्यों किसी की एक ही खूबी काफी है दिल में समा जाने के लिए, और किसी की 1000 खूबी भी दिखे वो फिर भी नहीं हमारा।
0: क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। और राजमा चावल है हम सभी का प्यारा, बहुत ही बढ़िया, क्या इसे भी बहुत अच्छा बोला
2: पूरी शायरी को गुड़गुमर कर डाला।
0: ये नहीं था यार, मेरा फेवरेट है तो मैंने बोल दिया, लेकिन प्राची टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छा बोला। और ये जो इन्होंने बीच में शब्दों का इस्तेमाल किया गुड़ और साथ में जो मिक्स किया है वो पता नहीं अच्छा क्यों पसंद आया, आई डोंट नो। खैर आगे बढ़ते हैं। अजीम भाई तुम्हें कैसा लगा इस माहौल में आके, मजा आया? अब यार जाने का समय हो गया है और कुछ खाने पीने का भी समय हो रहा है गाइज, क्योंकि रात हो रही है तो डिनर भी करना है समय से। अखिल भाई तो बैठे रहेंगे आपके साथ, अभी आपकी फरमाइशी गाने भी बजाएंगे।
2: नहीं नहीं, मेरा आनंद तुम्हारे दिल से एक और आवाज निकलने वाली।
0: हाँ हाँ प्लीज, मैं अपने दिल को थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ, आप अपने दिल का बटन ऑन कीजिए। बोलिए सर।
2: इश्क वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए।
0: वाह जी वाह।
2: इश्क वो है जो दिल से निभाया जाए।
0: वेरी नाइस।
2: अपना कहने को तो बहुत मिल जाते हैं।
0: हाँ।
2: अपना कहने को तो बहुत मिल जाते हैं, पर अपना वो है जो हर हाल में साथ निभाए।
0: क्या बात है, हम साथ निभाना साथिया निभाएंगे सर, टेंशन मतलब आज रात को 9 बजे मैं टीवी पे देखूंगा हम साथ निभाए। हम साथ साथ है, देखिए आपने?
2: हाँ देखिए।
0: हाँ तो बस वही है, हम साथ साथ ही है यार।
2: तो एक एक आनंद एक बात भी पूछनी चाह रहा था मैं।
0: जी जी,
2: मैं ये पूछना चाह रहा था कि असल में एक शायर को कब लगता है कि वो शायर बन गया?
0: इससे जोक से बात, अखिल भाई आपने जो बोला ना एक शायर को कब लगता
2: है शायर, हाँ।
0: एक शायर बन गया है मुझे
2: तो
0: लगता
2: ये बात हम पूछना चाहेंगे अजीम साहब से पूछेंगे।
0: वैसे आपको आपको क्या लगता है, मैं ये आपका जो सवाल है वो आपके ऊपर ही मैं रिपीट मारता हूँ, आप बताओ मुझे।
2: मेरे हिसाब से पहले अजीम साहब से बात करते हैं, फिर मैं भी अपना विचार रखूंगा, अपना विचार रख दूंगा तो फिर
0: आइडिया मिल जाएगा ना मोहम्मद अजीम जब। अजीम क्या लगता है भाई?
1: मुझे लगता है वो जब लिखना चालू कर दे, अपनी कलम उठा ले
0: और जो दिल से उसकी फीलिंग चाहे, जो दिल
1: लगे कि चार आदमी को सुनाने के बाद लग रहा है कि हाँ वो अच्छी तारीफ कर रहे हैं, तो वो शायर बन चुका है।
0: क्या बात,
1: बस उसे अपने आप।
0: मुझे ऐसा लगता है अखिल भाई कि जब जब आपकी इमोशन आपकी बातों में आने लग जाए, आपकी कलम में वो एक्चुअल में फीलिंग आने लगे जो जो सामने वाले को रिलेटेबल फील करा दे, तो फिर आप शायर बन गए। क्योंकि आपकी शायरी से किसी को अगर ऐसा फील हो रहा है कि नहीं यार ये तो मेरे लिए बात बोली जा रही है, मतलब ये मेरा जिक्र हो रहा है, तो आप शायर बन गए। प्राची कुछ कहना चाह रही है, ये भी शायर बनेगी आज, मुझे पक्का यकीन है। हाँ प्राची।
3: नहीं, जैसे अभी आपने पूछा कि कब एक शायर को लगता है कि वो शायर बन गया है, तो मुझे लगता है कि जब हम किसी से, मुझे तो अपने साथ ऐसे ही लगा था, पता नहीं मैं शायर हूँ या नहीं।
0: नहीं तू नहीं है, बोलती रह आगे।
3: ठीक है, जब हम मतलब जो भी हमने ऑब्जर्व किया है उसको हम देख, उसको हम फ्रेम कर पा रहे हैं, मतलब जो भी हमने देखा है, हाँ उसको फ्रेम कर पा रहे हैं, उसको मतलब लिख पा रहे हैं, तो तब हमें लग जाता है कि हाँ कुछ हमने अच्छा लिखा है।
0: क्या बात है, मैं भी आज से लिखना शुरू करूंगा, शायद सबको लग जाए मैं अच्छा आरजी हूँ। माइक भैया की तरफ करो, आप जरा भैया से पूछते हैं। हाँ जी भैया, आपका सवाल मुबारक हो आपको, आप बताओ आप।
2: मेरा जो थॉट है वो यही है कि जब आपके जो जहन में चल रहा है, जो आपके
0: जी
2: जो सपनों में चल रहा है, एक्चुअली क्या है शायरी में वो चीजें जो आप ना रियलाइज करते हैं, मतलब आपके पास होती नहीं है मगर आप उसे एक इमेजिन करते हैं।
0: एब्सोल्युटली।
2: तो जब वो इमेजिनेशन आपके साथ आपकी कलम पे उतरना चालू हो जाए और वो उस तरीके से उतरे कि सामने वाले को भी लगे कि हाँ ये तो मैंने भी इमेजिनेशन किया था, या ये ऐसा कुछ है कि इन्होंने, हाँ जो मेरे साथ भी हुआ है, या फिर कहते हैं ना कि कुछ चीजें हैं ऐसी जो आप सिर्फ सोच सकते हैं, ठीक है ख्यालों में आती है आपकी, मगर वो चीजें आपको भी पता है वो पूरी नहीं होती है। तो जब आपके हाथ में कलम है और आपने उन ख्यालों को अपने साथ उसमें लिखा है और जब दूसरों को दूसरों तक वो बात पहुंचाई है, तब जाके लगता है कि कहीं ना कहीं शायर ये बंदा
1: शायर है,
0: शायर है, इसीलिए तो कहते हैं बच्चा है तू मेरा, समझ रहा हूँ मैं। वो डायलॉग मेरे को अखिल भाई ने दिया था, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अखिल भाई, बहुत अच्छी बात है, और मुझे इस बात से यकीन हो गया कि शादी के बाद हर कोई शायर बन जाता है। मैं इस बात को मान सकता हूँ अजीम, एक घर का एक घर वाला शायर जो होता है, जैसे अखिल भाई एक घर के अच्छे शायर है, वो कुछ ना कुछ छोड़ते रहते हैं हमेशा जब हमारे स्टेशन में आते हैं। तो आप बताओ, आपने तो मतलब एक्सप्लेन कर दिया है, अब जाने का समय भी हो रहा है, तो जाते जाते अब आप क्या कहना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को, हमारे दोस्तों को, कोई अच्छी अपनी शायरी के माध्यम से कोई थॉट, कोई बात एक्सप्लेन करना चाह रहे हो आप?
1: मेरे पास फिलहाल तो कोई ऐसी शायरी है नहीं, बट
0: अपने दिल की फीलिंग्स कुछ अगर एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, कोई थॉट कहना चाह रहे हो?
1: बहरहाल मुझे सच बस बताऊं तो मुझे अच्छा बहुत लगा यहाँ,
0: अच्छा मजा आया,
1: आनंद भाई से मिला, टीम से मिला, बहुत अच्छा लगा, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। मैं चाहूंगा कि मेरी शायरी आप लोगों को इतनी पसंद आए कि आप मुझे बार बार बुलाएं, रिक्वेस्ट करें आनंद भाई के कमेंट बॉक्स में बार बार मुझे बुलाएं।
2: श्रोताओं को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहाँ पे आप मिल सकते हैं आसानी से?
0: ये इंस्टाग्राम पे इसका अकाउंट है, मैं इनका एक अच्छा सा फोटो शेयर करता हूँ, बढ़िया सा अच्छे से करली वालों वाला, तो इनको लोग तुरंत लाइक करेंगे और फॉलो भी करेंगे। वेल अब लेंगे आपसे जाने की इजाजत, जाते जाते बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास भी कोई अच्छा टैलेंट है तो उसे आप एफएम मुरादाबाद पे डेफिनेटली लेकर आ सकते हैं और हम आपका वेलकम करने के लिए तैयार हैं। और आप ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, गाइस बजाते रहिए
2: और गुनगुनाते
0: रहिए। बाय बाय।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर।

0: जहां विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी में दिखाई देता है।
1: बिल्कुल, और आज की हमारी यात्रा पहुंची है भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, एक ऐसा जिला जहां विकास की रफ्तार गांव से लेकर शहरों तक नई तस्वीर गढ़ रही है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याण योजनाएं समाज के हर वर्ग तक पहुंच रही हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर स्वरोजगार, बुनियादी सुविधाओं और आर्थिक आत्मनिर्भरता तक।
1: और जब योजनाओं का लाभ सीधे लोगों की जिंदगी बदलता है तो उसकी कहानी सबसे ज्यादा असरदार होती है। चलिए सुनते हैं कुशीनगर की श्वेता जायसवाल की कहानी।
2: जी सर नमस्कार, मैं ग्राम पंचायत मिसीपट्टी से हूँ। मेरा नाम श्वेता जायसवाल है और मैं काजल स्वयं सहायता समूह में काम भी करती हूँ और मुझे सरकार से बहुत सारी उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं। जैसे मेरे नाम से राशन कार्ड भी है। पहले राशन कार्ड हस्बैंड के नाम से होते थे, अब वो हमारे नाम से हैं। और इस समय हमारे नाम से शौचालय है, हमारे नाम से हमारे हस्बैंड जाने जा रहे हैं। पहले हम उनके नाम से जाने जाते हैं, अब वो सरकार की वजह से हम अपने नाम से वो हमारे नाम से वो जाने जाते हैं। और मैं गौशाला भी खोली हूँ, मेरे पास 6-7 गाय हैं। मैं उस गाय से अपना परिवार चलाती हूँ। दूध का उपदान होता है, उत्पादन करके और मैं डेयरी फार्म में उसको उपलब्ध कराती हूँ और उससे जो पैसा मिलता है हमारे घर का खर्चा और सब काम चलता है। इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: वाकई ये सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का कदम है।
1: और ऐसी एक प्रेरक कहानी है अनुपमा तिवारी की। बीसी सखी और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना जैसी योजनाओं ने उनके सपनों को पंख दिए और उन्होंने अपना पार्लर और कॉस्मेटिक की दुकान खोलने का सपना साकार किया।
3: मेरा नाम पहले तो सभी लोगों को रेडियो प्रज्ञा के तरफ मौका दिया गया बोलने के लिए, उसके लिए मैं नमस्कार प्रणाम करती हूँ उन लोगों को और बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ कि मुझे ऐसा मौका दिया गया बोलने के लिए। मेरा नाम अनुपमा तिवारी है, मैं ग्राम पंचायत सिद्धवा मिश्रौली से हूँ। मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ के मैं जो भी चीज़ें आज यहाँ तक भी पहुँची हूँ, मुझे बीडीओ साहब के पास बैठने तक का मौका मिला है तो मैं स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के बाद ही मिला है। और स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के बाद से मैं पहले तो मुझे परिचय की बात बताऊँ तो मुझे कोई जानता भी नहीं था और धीरे धीरे मुझे स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के बाद मुझे लोग जानना भी शुरू किए। पहले तो मुझे लोग स्वयं सहायता समूह में एक सदस्य के नाम से जानते थे, फिर मैंने धीरे धीरे अपने नाम को बढ़ाया तो बीसी सखी का नाम मेरा हुआ। फिर बीसी सखी से मैंने धीरे धीरे समूहों से पैसे जो भी लोन मुझे मिलते थे, जैसे स्टार्टअप हुआ, रिवाल्विक हुआ, सीआईएफ हुआ, सीसीएल हुआ, सीसीएल मुझे बहुत लंबे अमाउंट तक के प्रोसेस मिलते हैं तो मैंने उस पैसे को उठा के अपने समूह के सदस्यों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की है और अपने खुद को भी सीएम युवा उद्यमी के थ्रू अपने खुद को भी काम को बढ़ाने की कोशिश की, जिसमें मैंने कॉस्मेटिक और पार्लर का बिजनेस शुरू किया है, जिसमें मैं अभी तक बहुत अच्छे लेवल पे जा रही हूँ और बहुत अच्छे लेवल तक पहुँच भी चुकी हूँ। बाकी आप लोगों की अगर इच्छा रहेगी तो मैं बहुत आगे जाऊंगी भी। बाकी मेरे बेटे साहब के तरफ से मुझे बहुत उनके आशीर्वाद चाहिए कि मैं जब भी आऊँ मुझे एक नई सीख मिले और मुझे नए ज्ञान मिले जो कि मैं जाने बाद दूसरों को भी बताऊँ, खुद भी करूँ। थैंक यू।
0: कहते हैं विकास वही जो अवसर पैदा करे और कुशीनगर की ये कहानियाँ बताती हैं कि अवसर मिले तो हुनर अपने दम पर नई मंजिल बना सकता है।
1: और कुशीनगर में विकास की इस तस्वीर को और करीब से समझने के लिए अब सुनते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की बात।
4: रेडियो प्रज्ञा के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को आर के भट्ट का नमस्कार। आज हम खंड विकास अधिकारी कार्यालय पडरौना में उपस्थित हैं और हमारे सामने है श्री के राय जी, खंड विकास अधिकारी पडरौना, और कार्यक्रम है विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी। और इस कार्यक्रम में सर रेडियो प्रज्ञा की तरफ से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार।
5: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे वहाँ आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
4: सर, शासन की प्राथमिकताओं में है कि ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय क्षेत्र हो, हालांकि हम क्षेत्र पंचायत कार्यालय पे आए हैं, जो अंत्योदय का उत्थान हो ये उसकी प्रायोरिटी है। तो इस समय आपके विभाग के द्वारा ऐसी कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं चल रही हैं जो अंत्योदय के उत्थान के लिए चल रही है?
5: देखिए, हमारे वहाँ मुख्य रूप से वर्तमान में मुख्यमंत्री आवास योजना से हम लोग ग्रामीण परिवारों को जिनके पास कच्चे मकान है, मैंने पक्के मकान नहीं है, उनको हम लोग आवास मुहैया करा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा महिलाएं, दिव्यांग परिवार को मैं आवास मुहैया करा रहा हूं। उसमें 1,20,000 रुपया उनको नगद दिया जाता है और वो अपना घर बनवा लेते हैं। और दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो भारत सरकार की योजना है, उसमें भी हम 1,20,000 रुपया नकद देते हैं, बाकी मजदूरी का भुगतान करते हैं। स्वच्छ शौचालय का निर्माण कराते हैं, सहजन का पेड़ भी हम लोग उपलब्ध कराते हैं, उनको ये बिजली का कनेक्शन दिलवाते हैं, ये आपका गैस सिलेंडर दिलवाते हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, तमाम सुविधाएं हैं जो हम लोग देते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में जो अति गरीब परिवार हैं वो इसका लाभ उठाते हैं और उनको लाभान्वित होते हैं। फिर हमारे पास एक योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
4: जी,
5: जिसमें समूह बना करके, महिलाओं का एक समूह बना करके
4: जी,
5: 10 महिलाओं से लेकर के 20-20 महिलाओं तक का परिवार की महिलाओं का समूह बना करके और समूह का खाता बैंक में खुलवा करके, ये RFTD भेज करके, स्टार्टअप भेज करके, CIF धनराशि दे करके हम लोग ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के रूप में, मतलब वो अपने कमाने के लिए अपने परिवार का मतलब भरण पोषण कर सके, प्रेरित करके लाभान्वित कराते हैं।
4: सर, आपकी इन सारी बातों का कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि सरकार या शासन की मंशा ये है कि एक सामान्य व्यक्ति स्वस्थ और अच्छा जीवन कैसे जिए, चाहे उसके लिए आवास से लेकर के उसके स्वास्थ्य तक और उसके जो मूलभूत उसके अधिकार हैं वो सब उसे प्राप्त हो, ये सारी योजनाएं हैं। लेकिन इन योजनाओं को क्रियान्वित कराने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि योजनाएं धरातल पर ठीक ढंग से पहुंचे?
5: नहीं, देखिए, अब तो योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में जा रहा है, कोई बिचौलियापन नहीं है, कोई दलाली नहीं है। भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फंड सीधे लाभार्थी के खाते में जा रही है। हमारे ग्राम पंचायत स्तर पर हमारे ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, ये लोग फील्ड में जाते हैं, सर्वे करते हैं, ग्राम सभा की खुली बैठक करते हैं, लाभार्थियों का चयन करते हैं, चयन करने के बाद सूची को हम लोग जिला मुख्यालय पर हम लोग भेजते हैं, वहां से प्रबल हो जाता है और वहां से इन लोगों को लाभ मिलता है। जैसे वर्तमान में समझ लीजिए कि इस समय वृक्षारोपण का कार्य चल रहा है
4: जी,
5: ये BBG राम जी विकसित भारत गारंटी रोजगार ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण है
4: जी,
5: इसमें पहले मजदूरी 200 मनरेगा में मजदूरी 252 रुपया था
4: जी,
5: अब जो है 300 रुपया मजदूरी कर दी गई है
4: जी।
5: लाभार्थी खुश है, मजदूर खुश है, काम कर रहे हैं। पहले इस योजना में, मनरेगा योजना में हम 100 दिन का रोजगार देते थे एक परिवार को एक वर्ष में
4: जी,
5: अब हम 125 दिन दे रहे हैं, 25 दिन और बढ़ गया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी मजदूरा गरीब परिवार के लोग यदि काम करना चाह रहे हैं तो उनको सारी सुविधाएं मिल रही है, यहाँ तक कि उनके परिवार के बच्चों की शादी के लिए भी हम लोग मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अभी कराए हैं पड़ौना में
4: जी,
5: उसमें भी लोग लाभान्वित हुए हैं
4: जी।
5: ये पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान में भी 20,000 रुपए का सरकार अनुदान दे रही है, उसका भी लाभ लोग ले रहे हैं। तमाम योजनाएं हैं, जिस ग्रामीण परिवार में शौचालय नहीं है उनका भी हम सर्वे करवाते हैं, उनसे ऑनलाइन हम रिपोर्टिंग करवाते हैं और 12,000 रुपया शौचालय निर्माण के लिए भी दे रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग भी हमारे सचिव करते हैं
4: जी,
5: एरियो पंचायत करते हैं।
4: सर, खंड विकास अधिकारी पड़ौना के रूप में, विकासखंड पड़ौना के नागरिकों के लिए आपका कोई विशेष संदेश हो, कोई ऐसी बात हो जो आप कहना चाहें कि वो शासन के योजनाओं का लाभ कैसे उठा सकते हैं, और यदि किसी प्रकार की उनको दिक्कत आ रही है तो आपसे या आपके अधीनस्थ लोगों से कैसे संपर्क स्थापित कर योजनाओं का लाभ?
5: देखिए, ग्रामीण जनता जो भी, हम लोग 10 बजे से 12 बजे तक निश्चित रूप से अपने कार्यालय में बैठते हैं
4: जी,
5: उस बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी जनता मेरे सामने आती है तो उनकी समस्याओं का समाधान मैं करता हूँ, चाहे वह पंचायती राज से संबंधित हो, चाहे वह हमारे BBG राम जी मनरेगा से संबंधित हो, चाहे हमारा ये कृषि से संबंधित हो। अभी कई किसान लोग आए थे, सर हमको किसान सम्मान निधि नहीं मिल रहा है, तो हमने कहा आप ऑनलाइन करिए, मैं दिलवाता हूँ
4: जी।
5: कुछ लोग कहते हैं कि हमको पेंशन नहीं मिला है, हमने कहा था आप अपना सिर्फ आधार कार्ड की फोटो कापी दीजिए, मैं देखता हूँ क्यों नहीं मिलता है
4: जी।
5: तो पता चलता है कि उनका आधार जो है लिंक नहीं है या किसी ने कुछ त्रुटि हो जाती है, समस्या का समाधान होता है
4: जी।
5: BDO का कर्तव्य है कि वह 10 से 12 हमारा देखिए 10 से 12 तो खराफी ड्यूटी है जन समस्या सुनने के लिए, इसके बावजूद भी हम लोग फील्ड में जाते हैं
4: जी,
5: और जाकर के जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं।
4: श्री के राय,
6: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
7: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोन बरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
1: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर्स का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के चौथे संस्करण को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों के उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। श्री गडकरी ने बेहतर अवसंरचना सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए विस्तृत और मजबूत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि खराब गुणवत्ता वाली डीपीआर और अपर्याप्त भूवैज्ञानिक डेटा अक्सर लागत में वृद्धि, देरी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का कारण बनते हैं।
2: कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उसके लिए प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल बनाकर वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट। तो ये हमारे लिए अनप्रेडिक्टेबल जियोलॉजी एंड ग्राउंड कंडीशंस बहुत बड़ी समस्या है, इसका बहुत अध्ययन होना चाहिए। अब जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर कुछ किया तो उसका उपयोग ओवरऑल देश को होगा। बाद में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड नेचुरल हजार्ड्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, हेवी स्नोफॉल अभी बहुत कठिन है, ये जो जिला में काम कर रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है।
3: Social media has fundamentally transformed the way citizens receive, share and respond to information. You should use social media platforms not only to inform the engaged, but also to listen, understand and respond to concerns of the people.
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जब सूचना तेजी से फैलती है तो आधिकारिक संचार में सटीकता, विश्वसनीयता और जनहित का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में वन अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वन, वन्यजीव, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ विकास को आगे बढ़ाना होगा। उपराष्ट्रपति ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। झारखंड में 26 दिन से चल रहा विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने के बाद समाप्त कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: आंदोलनरत छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करने और 45 परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसमें जेपीएससी सिविल सर्विस और जेएसएससी सीजीएल भी शामिल हैं। छात्रों ने सरकार को जाँच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है और चेतावनी दी है कि जाँच निष्पक्ष या संतोषजनक नहीं होने पर वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। छात्रों ने आज शाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक आभार यात्रा भी रैली निकाली जिसमें प्रमुख छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भी शामिल हुए। देवेंद्रनाथ महतो ने 16 दिनों तक आमरण अनशन किया था। वहीं सरकार के फैसले से 2628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं। इसके विरोध में जेएसएससी सीजीएल से नियुक्त अभ्यर्थियों ने झारखंड सचिवालय और प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जताई। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास कर नियुक्ति हासिल की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने इस बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य अब 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुनिरका इलाके में मणिपुर के 2 लोगों पर कथित हमले की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2 व्यक्तियों ने मणिपुर के इन दोनों लोगों पर हमला किया। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
5: केंद्र और स्थानीय सरकार ने इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये एक बहुत सुंदर क्षेत्र है। मेरा मानना है कि बहुत से अमरीकी पर्यटक यहाँ आकर इसकी सुंदरता को देखना पसंद करेंगे।
0: श्री गोर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने देशों को अमरीका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमरीका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई वार्ता नहीं चल रही है और न ही निर्धारित है। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है। 4611 लोग घायल हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति अबिलाडो डे ला एस्प्रियला ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। भारत ने कोलंबिया को समर्थन देते हुए पिछले सप्ताह राहत सामग्री की पहली खेप के रूप में 20 मीट्रिक टन सामग्री भेजी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त को मजबूत किया। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए हैं। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट झटके, दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
6: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 326 अंक यानी 0.42% लुढ़क कर 76,910 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 77 अंक यानी 0.32% नीचे आकर 24,078 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 8 पैसे कमजोर हुआ और 95.76 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। नीदरलैंड्स में पुरुष एफआईएच हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के? पूरे मस्त वाले होंगे और थोड़े से सोचने वाले भी कि भाई साहब कैसे आए थे, कहाँ चले गए, कैसे खर्च हो गए पता नहीं चल रहा, और अभी भी जो है ना और पैसे चाहिए मेरे को, सैलरी आई और कम निपट गई पता ही नहीं चला। ये तो 20 दिन भी ऐसे निकल रहे हैं कि सोच रहे हैं भाई साहब जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, ये आने वाले 10 दिन ख़त्म हो फटाफट, फिर कुछ राशि हाथ में आए, होता है साहब होता है। तो आप सुन रहे हैं अपने अखिल को दिल से दिल तक अखिल संग में, और आज का शो थोड़ा और मस्ती वाला करेंगे, कोई सीरियस नहीं होगा ना कोई होगी टेंशन लाइफ स्टाइल की, क्योंकि जनाब जिंदगी जो है ना बदलने के लिए हमेशा बड़े फैसले लेने की जरूरत नहीं है, कभी कभी सुबह उठकर अलार्म बंद करने के बाद दोबारा सुबह उठ गए अलार्म बज गया, फिर से उसे आगे के लिए खिसका दिया, अलार्म तो खिसक नहीं रहा है, हम खिसके जा रहे हैं बार बार, सब लेट हो गए, 10 बजे निकलना था कब 11 बजे निकले हो, सोचते हैं यार क्या हो गया ये। तो पहले लोग सुबह उठकर कहते थे चाय बनी है क्या, अब लोग उठते ही कहते हैं वाईफाई चल रहा है क्या नहीं चल रहा है साहब। तो एक शायरी शुरुआत में ही, जिंदगी में रंग हजार होने चाहिए, चेहरे पर हमेशा मुस्कान की बहार होने चाहिए, चाहे दिल चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, दिल में थोड़े पल सिर्फ अपनों के नाम होने चाहिए। तो अपनों के नाम लेते रहें सुबह और शाम, और बताइए हमें कि डेली लाइफ में पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ा लाइफ स्टाइल चेंज क्या आया है। मैसेज करिए और 9837896896 पे कॉल भी करिए, और खूब सारी गुफ्तगू करेंगे दिल से दिल की, पता चलेगा साहब आपके लाइफ स्टाइल में कुछ तो चेंज आया होगा नहीं आया होगा। करते हैं खूब सारी बातें इस ब्रेक के बाद, गाने वाले ब्रेक के बाद।

दोस्तों, एरोप्लेन और बंगला गाड़ी तो मिलते रहेंगे। हमारे पास आई है नरेंद्र जी की फरमाइश। कहते हैं, मेरा एक गाना प्ले कर दीजिए, तेरी 2 टके की नौकरी, मेरा लाखों का सावन। तो चलिए गाना भी एंजॉय करते हैं और आप भी अपनी फरमाइश हमें बता सकते हैं और कॉल मिला सकते हैं।

एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 पे। और बिल्कुल बढ़िया गाना बजाए साहब, ये हाय हाय, ये मजबूरी और ये मौसम और ये दूरी। मौसम और मजबूरी दोनों ही एक दूसरे के साथ हमारे साथ खेल रही हैं। कभी बारिश हो जाती है, कभी ऐसी रह जाते हैं, तो खूब सारी मस्ती जो है ना चलती रहती है। एक ज़माना था जब घर में टीवी देखने के लिए पूरा परिवार साथ बैठता था। हाँ जी साहब, आप

आज छुट्टी का मतलब है पूरे दिन बेड पर रहना और कहना आज सेल्फ केयर डे। तो साहब ये भी चेंज होता है, ये भी थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज होने के तरीके हैं। आपका क्या तरीका है हमें ज़रूर कॉल करें या मैसेज करके बता दें 9837896896 पे। उस्मान जी हमसे कनेक्ट हुए थे, उस्मान जी ने बहुत बढ़िया गाने की फरमाइश करी, वो भी आपको भी सुनाई जाएगी। पहले और आज की अपनी लाइफस्टाइल में सबसे बड़ा बदलाव क्या है और क्या आप पहले से ज़्यादा बिजी हो गए? हाँ जी साहब, ऐसा हुआ है आपके साथ भी। क्या टेक्नोलॉजी ने ज़िंदगी आसान की है या ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड? क्या अब लोग कम मिलते हैं लेकिन ज़्यादातर चैट करते रहते हैं? तो ये बातें होती हैं, हम लोगों के साथ अक्सर घट रही हैं। और एक बात तो हमें माननी ही पड़ेगी, हमारी लाइफ स्टाइल स्मार्ट ज़रूर हुई है लेकिन कभी कभी हमें खुद को भी याद दिलाना पड़ता है, भाई इंसान है, स्मार्टफोन नहीं है। तो साहब अपनी मस्ती जारी रखें और हमें 9837896 पे अपनी फरमाइश बताते रहें, क्योंकि फरमाइश जब तक बताएंगे तब तक मस्ती चालू रहेगी।

0: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

रजनी जी की फरमाइश पे ये गाना हो रहा है दुल्हे का सहारा प्ले, एंजॉय कीजिए और मजे लीजिए। 9837896896 पे अपनी फरमाइश भी हमें

दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, क्या बात है साहब, अभी एंजॉय कर रहे होंगे। जिन जिन ने सेहरा पहन लिया है उन्हें तो पता ही है कि कैसा उनको सेहरा सुहाना लगता है, मगर जो पहनने वाले होंगे आने वाले टाइम में, वो पहले से ही इस गाने को याद कर लें, क्योंकि ये गाना बाद में बहुत प्ले होने वाला है उनके साथ। तो हमारे एक लिसनर है, उनका मैसेज आया कि मेरी लाइफ स्टाइल में सबसे बड़ा चेंज आया है कि अब मैं रात को देर तक मोबाइल चलाती हूँ। बात है प्रिया जी, आपने बहुत ही बढ़िया मैसेज करा, और ये मैसेज आपका नहीं, ये 70% हमारे लिसनर्स का है जो रात भर मोबाइल चला लेते हैं, कभी गाने के नाम पे या फिर अपनी चैटिंग के नाम पे। ये तो साहब पूरे देश की नेशनल प्रॉब्लम लग रही है। और कहते हैं ना, मोबाइल कहता है बस एक रील और एक रील और, हमारी नींद कहती है भाई मेरा क्या कसूर था, क्यों बाप के बाद रील पे रील देखे जा रहे हो। तो होता है साहब, लाइफ स्टाइल ऐसी ही चेंज होता है, और इसे भी चेंज ही कहेंगे। पहले से कहते थे कि लाइफ स्टाइल का जो मतलब है ना, सिर्फ एक्सपेंसिव क्लोथ्स या लग्जरी कार या फैंसी रेस्टोरेंट्स में जाना नहीं, असली लाइफ स्टाइल आप कितने खुश हैं, कितने हंसते हैं, और कितना आप लोगों के साथ वक्त बिताते हैं। एक छोटी सी शायरी इसी के ऊपर, महंगे सामान से नहीं महंगे रिश्तों से ज़िंदगी अमीर होती है, महंगे सामान से नहीं महंगे रिश्तों से ज़िंदगी अमीर होती है, थोड़ी हंसी थोड़ा प्यार और अपने लोगों का साथ, बस इतनी सी ज़िंदगी खूबसूरत होती है। तो साहब थोड़ा सा समय जो है ना लाइफ स्टाइल चेंज करने का तो आ ही गया, तो कहीं मत जाएं, आप हमें सिर्फ अपनी गुफ्तगू बताएं 9837896896 पे, मैसेज करके ही बता सकते हैं, जैसे अभी अभी किया है मैसेज। हमारे पास इशरत अली जी का मैसेज आया था, उन्होंने अपनी फरमाइश हमें बताई है, और वही फरमाइश हम आपको सुनाने वाले हैं, और आपकी भी फरमाइश अब अगले कॉल पे लेने वाले हैं। तो आप हमें कॉल करें 9837896896 पे, तब तक के लिए ये गाना एंजॉय कीजिए।

0: Royal.
1: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आप बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना है किसी भी चीज़ के बदलने का, चाहे वो लाइफस्टाइल हो चाहे आपका मोबाइल हो। लाइफस्टाइल बदलने के लिए भाई मंडे का इंतज़ार बिल्कुल मत करना, आज से ही छोटे चेंजेस शुरू कर दो। चाहे सुबह थोड़ी वॉक हो जाए, फिर थोड़ा सा स्क्रीन टाइम हो जाए, या फिर परिवार के साथ एक कप चाय हो जाए, खाने में थोड़ी सी डिसिप्लिन हो जाए, और सबसे ज़रूरी खुद के लिए भी साफ वक्त हो जाए। भले ही चाहे कोई कितना भी कहता रहे भैया कहाँ पर है, कहाँ रह गया, किधर रह गया, मगर दो मिनट के लिए अपने साथ बैठना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हैं, लेकिन खुद के लिए कब अवेलेबल होंगे साहब, तो आपको सोचना ज़रूरी है। सोने से पहले भी अगर दो मिनट अपने लिए सोचें, अपने लिए ही अपने से बात करें, देखिएगा कितना बदलाव लगेगा। शायरी थोड़ी सी इसी बात के ऊपर, थोड़ा खुद के लिए भी जिया, थोड़ा खुद के लिए भी जी लिया करो, हर वक्त दुनिया की नहीं सुना करो, जिंदगी छोटी सी है मेरे दोस्त, कभी बिना वजह भी मुस्कुरा लिया करो। हाँ साहब, मुस्कुरा लो, भले ही कैसे भी सामने वाला बोल रहा हो, चाहे दिल की बात पकड़ पा रहा हो या नहीं पकड़ पा रहा हो, हल्की सी मुस्कुराहट तो होनी चाहिए। व्यापार और प्यार में भाई साहब मुस्कुराहट की बहुत ज़रूरत होती है, अगर आप मन मुस्कुराहट से रहे तो आपने सामने वाले को जीत लिया था। तो इसी के साथ एक बढ़िया सा गाना अभी पेश करते हैं, हमारे पास फरमाइश आई है फिर से। नमस्ते अखिल जी, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं आप ठीक ही होंगे। बिल्कुल सही कहा साहब, और मुझे भी पूरी उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल चंगे होंगे। गाना है छुप गए सारे नज़ारे। ओए क्या बात, क्या बात है साहब, क्या बढ़िया गाना आपने चुना, छुप गए सारे नज़ारे, ओए क्या बात हो गई। ये है मूवी दो रास्ते से, मेरा भी एक फेवरेट गाना है, और स्टार कास्ट में राजेश खन्ना जी और मुमताज़ जी, मतलब ऐसी जोड़ी जो रेयर आपको देखने को मिलती थी, मगर ऐसी सुपरहिट जोड़ी बन गई थी उस समय में कि भाई साहब हर कोई इनका दीवाना था। तो आप भी इस गाने को एंजॉय करिए, अच्छे से इसके साथ दिन बनाएं। और ये गाना जो डेडिकेट किया है वो किया है सुनने वाले हैं दिलजीत कोहली, रीना कोहली, माधव कोहली, सरगम कोहली, कपूर कंपनी मुरादाबाद से। साहब ये पूरा कोहली परिवार है, बस एक विराट कोहली रह गए इसमें, कोई बात नहीं साहब, वो भी मिल जाएंगे इसे बहुत जल्द। तब तक करिए गाना को एंजॉय।

खींचने का टाइम आ गया है फोटो, तो सर सभी अपने लोग कैमरे निकालें और फोटो खींचना चालू करें, क्योंकि ये गाना ही ऐसा है, तू खींच मेरी फोटो। सुने, एंजॉय करें और फोटो खींचते रहें। 9837896896 पे जरूर मैसेज करें और कॉल करके बताएं।

एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। और पूरा पूरा मुझे लग रहा है कि भाई साहब अब आपका मूड हो गया है, जल्दी से बिस्तर पे जाएं, नींद लें और कल सुबह की तैयारी करें। होता है जी, होता है, मगर उससे पहले कुछ चैलेंज भी तो होने चाहिए। एक फैमिली मेम्बर को आज आपको हग करना पड़ेगा साहब, चाहे कुछ भी हो। एक पुराने दोस्त को कॉल कीजिए, चाहे कोई सा भी पुराना दोस्त क्यों ना हो। आजकल तो दो दिन पुराने लोगों से बात हो जाती है तो वो भी पुराने दोस्तों में आ जाते हैं। तो किसी भी एक पुराने दोस्त को कॉल कीजिए, किसी स्ट्रेंजर को जेन्युइनली एक स्माइल दीजिए। अब तो आप आराम से रास्ते में गाड़ी चलाते हुए हॉर्न बजाने के बजाय स्माइल दीजिए तो मज़ा आ जाएगा। 30 मिनट फ़ोन साइड में रखिए और खुद से कहिए, मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटे कदम हैं लेकिन ज़िंदगी इन्हीं छोटे कदमों से बदलती है साहब। एक आध चैलेंज तो एक्सेप्ट हो ही सकता है मुस्कुराते हुए भी। जाने से पहले एक फाइनल शायरी आपके साथ शेयर करेंगे। जिंदगी, इस जिंदगी में कहते हैं ना, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, मगर कुछ पल हंसी के रख लेना, कुछ पल अपनों के नाम, कुछ सपने दिल में रख लेना, कुछ पल खुद के नाम। जिंदगी रोज नया मौका देती है, बस उसी जीने का अंदाज चाहिए। तो साहब अभी हुए हैं 9:45 और अभी हमारे पास हैं और थोड़े से खुशी के पल, तो गाने एंजॉय करते हैं। और आपकी कोई कॉल है तो हमें ज़रूर 9837896896 पर अपने दिल की बात बताएं, मैसेज करें, हम उसमें भी साहब बहुत खुश हैं। तो चलिए इस गाने को एंजॉय करते हैं और आते हैं इस म्यूज़िकल ब्रेक के बाद।

बिल्कुल सही बात कही गोविंदा जी ने, चाहे आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, हमेशा मस्त रहो, खुश रहो और गुनगुनाते रहो या डांस करते रहो। बिल्कुल।

इसके बाद एक और धमाकेदार गाना आप ही के लिए साहब, आप ही के लिए। डांस करते रुकना नहीं है, सिर्फ डांस करते रहना है।

क्या बात है साहब, सेल्फी लीजिए मगर सेल्फिश ना बनिए। ये क्या कॉम्बिनेशन था इमरान हाशमी और अक्षय कुमार जी का एक साथ डांस करते हुए का। तो दोस्तों, आज की बात का सार बस इतना है, लाइफस्टाइल ये नहीं कि हम क्या पहनते हैं, कहाँ जाते हैं और क्या खाते हैं। लाइफस्टाइल ये भी है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे जीते हैं और अपने लोगों को कितना वक्त देते हैं। टेक्नोलॉजी रखिए लेकिन रिश्ते मत खोइए। बस बिजी रहिए लेकिन खुद को मत भूलिए। कमाइए लेकिन ज़िंदगी जीना मत भूलिए। और सबसे ज़रूरी बात है, हंसते रहिए। मैं हूँ आपका अखिल और आप सुन रहे थे दिल से दिल तक अखिल संग। तो अगली मुलाकात होगी कल आपके साथ ठीक 9 बजे। दिल खुश रखिए, चेहरे पर मुस्कान रखिए और ज़िंदगी को थोड़ा सा अपने अंदाज में जीते रहिए। मैं चलता हूँ लेकिन याद रखिएगा, जहाँ बात दिल की होती है ना, वहाँ मुलाकात दिल से दिल तक ही होती है। तो नमस्कार, शुभ रात्रि और ढेर सारा प्यार। बाय बाय, गुड नाइट। और इस ठनठनान के साथ खूब करें मस्ती और कल मिलेंगे फिर ठीक 9 बजे आपको। बाय बाय।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
3: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
2: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
3: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
2: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

अब पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।